0: వందే మాత్రం.
1: మలయజ శీతలా శస్య

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की पहली तिथि, तदनुसार 23 सितंबर सन 2026। इस समय सवेरे के 5:56 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्माकुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
1: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारत की फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केबल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहाँ या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल

0: सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है, जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है। संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया। जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
2: वंदनवार

सोच का चिंतन। विश्व को महान बनाने का एकमात्र मार्ग है अपने चरित्र को महान बनाना। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें आप सुनेंगे लंका कांड आज भाग 320। संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं आज भाग 8 प्रसारित होगा। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुबह 7:00 7:30 पर सुनिएगा हम है राही प्यार के। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा। आलेख एवं स्वर राजेश झा का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। और इस कार्यक्रम को आप पुनः सुन पाएंगे दोपहर 2:00। सुबह 8:30 पर नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर सुनिएगा आज के फनकार, जो कि केंद्रित रहेगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का। पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे, सुबह 10:00 आप सुनेंगे इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की बातचीत, प्रस्तुति शकुंतला पंडित। सुबह 11:00 सुनिएगा रंग तरंग, 12:00 हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम और 1:00 सुरीला सफर। दोपहर 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। सखी सहेली दिन में 3:00 आप सुनते हैं और आज सखी सहेली में आप सुनेंगे इन विषयों पे बातचीत, विलुप्त होती लोरियां, पारंपरिक गीत, शब्द हमारा, विचार आपके, आशा, साड़ियों का संसार, बाघ प्रिंट साड़ी जो कि मध्य प्रदेश की प्रचलित है, और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर बातचीत, व्यंजन लोकी के व्यंजनों के बारे में चर्चा की जाएगी। संवादक सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान में संगीतकार संगीत संयोजक अप्पा वड़ावकर से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। संपादन सहयोग काजल भदरगे का है, प्रस्तुति

জুবের খান কি। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत, 5:30 पर तरानी नए पुराने कार्यक्रम, 6 बजे हिंदी में समाचार और समाचारों के बाद 6:05 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने जारी रहेगा। 6:35 पर सुनिएगा संध्या रंजन। शाम 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा आज राग अनुराग और 8 बजे हवा महल के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटिका जमीन के लोग, लेखन V.M. आनंद और निर्देशन दीनानाथ का है। कार्यक्रम चित्रलोक 8:15 पर, 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए और 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेत्री तनुजा पर, आलेख एवं स्वर कमल शर्मा का। रात्रि 10 बजे छाया गीत सुनिएगा, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। ये था आज के कार्यक्रमों का झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का आज का अंक 320।

लंका में भीषण युद्ध छिड़ा है। वानर सेना ने रावण की प्रायः आधी सेना का संहार कर दिया है। रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय तथा रणनीतियों की समीक्षा करते हैं। आधा सैन्य बल खोकर रावण चिंतित है। मंत्रणा के समय माल्यवंत रावण को फिर सीख देता है कि वेद पुराणों ने जिन प्रभु का गुण गाया है उनसे विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सका। माल्यवंत उसे स्मरण दिलाता है कि जब से वो सीता को हर लाया है तब से ही भांति भांति के अपशकुन हो रहे हैं, किंतु रावण को अपने वृद्ध नाना की ये सीख नहीं सुहाती। अपमानित कर वो माल्यवंत को सभा से निकाल देता है। रावण पुत्र मेघनाथ ने पिता को अपनी दृढ़ता से उत्साहित किया। कल प्रातः देखना मैं क्या करता हूँ, अभी से क्या कहूँ। इस प्रकार पिता पुत्र में मंत्रणा होते रात बीत गई। सवेरा हुआ, वानर सेना ने एक बार फिर दुर्गम गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंड तथा अन्य अस्त्र बरसाने लगे। घोर गर्जन तर्जन और वज्र जैसे अस्त्रों से प्रलय मच गई। वानर सेना प्रहार से घायल होती है किंतु मैदान नहीं छोड़ती। मेघनाद ने जब वानर और रीछ सेना द्वारा दुर्ग के घेर लिए जाने का समाचार सुना तो युद्ध घोष करता, डंका बजाता, किले से उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। इस संबंध में सौदाहरण जानकारी पर आधारित श्रृंखला इन दिनों संगीत सरिता में प्रसारित की जा रही है। प्रस्तुत करता है जाने माने गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का बहुत बहुत प्यार। अब राग यमन कल्याण में अपनी ही बनाई बंदिश प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह बंदिश परमात्मा परक है, जिसमें गायकी के अहम अंगों का प्रयोग हुआ है, बल, पेंच, छूट, जरब, गमक की तानों के साथ अवरोही की गमक की तानों का। इसमें आप अंदाज देखिए तो सुनिए राग यमन में बंदिश।

राग यमन कल्याण की बंदिश के बाद मैं राग मालकौंस की विलंबित ख्याल की बंदिश जो उस्ताद आमिर खान साहब ने जुत ख्याल करके गाई है। यह बंदिश बहुत मुश्किल होने के साथ साथ बहुत ही मधुर और श्रवणीय है। इसमें भी उन सभी अंगों का प्रयोग हुआ है जैसे गमक तान, अवरोही की तान, मेरुखंड, मेरुखंड की सरगम और गमक के साथ कड़क तान। तो सुनिए मालकौंस की बंदिश जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

0: प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ख्याल और तराने की विशेषताएं आप संगीत सरिता में सुन रहे थे। हारमोनियम पर संगति पुरुषोत्तम वालावलकर की और तबले पर साथ ओमकार गुलवाड़ी का था। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समसामयिक घटनाक्रम व रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाले विषयों पर चर्चा करते हैं। इन्हीं विषयों में है पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति की रक्षा करना, साथ ही नदियों, झीलों व समुद्र किनारों को प्रदूषण मुक्त रखना। विषय नया नहीं है, लेकिन पर्यावरण के प्रति जागरूकता को कायम रखने के लिए समय समय पर इस विषय पर बात करना जरूरी है, ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ व शुद्ध रहे व हम इसका उपयोग भली भांति कर सकें व हम ताज़ा हवा में सांस ले सकें। इसी विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

श्रोताओं, मानव प्रकृति और नदी का संबंध अत्यंत गहरा और अटूट है। प्रकृति हमें जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन प्रदान करती है और नदियां प्रकृति की अमूल्य देन हैं। प्राचीन काल से ही मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। नदियां हमें पीने का जल, सिंचाई के लिए पानी, बिजली उत्पादन तथा अनेक प्रकार की आजीविकाएं प्रदान करती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि नदियां हमारे जीवन का आधार हैं।

प्रकृति और नदियां पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नदियों के कारण ही भूमि उपजाऊ बनती है, वनस्पतियां पनपती हैं और जीव जंतुओं को जीवन मिलता है। हमारा कर्तव्य है कि हम नदियों और प्रकृति की रक्षा करें तथा इन्हें प्रदूषण होने से बचाएं। यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो हमारे बाग बगीचे, उद्यान व पार्क ज़्यादा खूबसूरत व हरे भरे व प्रदूषण मुक्त होंगे।

आज बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण नदियां प्रदूषित हो रही हैं और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। यदि हम समय रहते सचेत नहीं हुए तो भविष्य में जल संकट और पर्यावरण समस्याएं और गंभीर रूप ले सकती हैं।

श्रोताओं, पर्यावरण संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जल की बचत करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें तथा स्वच्छता बनाए रखना पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण उपाय हैं। साथ ही हमें ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों को अपनाने और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है।

पूर्ण योगदान देना होगा, क्योंकि स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल सकेगा। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आज का नमस्कार अलवर कार्यक्रम समाप्त करने की हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

0: अभी आप किशोर कुमार को सुन रहे थे फिल्म पड़ोसन में। गीत राजेंद्र किशन का था, संगीत आरडी बर्मन का।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी को, गीत आनंद बख्शी का था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

राजा मेहंदी अली खान का लिखा गीत था, मदन मोहन का संगीत, और आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म नीला आकाश में।

नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफी को। बोल राजेंद्र किशन के थे, संगीत मदन मोहन का।

जी का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत के आखिर में सुनिए आशा भोसले और साथियों को फिल्म शिकार में। बोल हसरत जयपुरी के हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापार दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल्स का स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक चुनौतियों, जलवायु संबंधी आपदाओं और बहुपक्षीय व्यवस्था पर बढ़ते दबाव से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। श्री जयशंकर कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव, निवेश के बिखरे हुए प्रभाव, बढ़ते ऋण के जोखिम और विकास के लिए अपर्याप्त वित्त की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South. ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है। In determining the future of the international system.
0: श्री जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले बदलावों का सही ढंग से प्रबंधन करने के महत्व पर भी बल दिया, ताकि विभाजन को रोका जा सके और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तयानी से भी मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनकी बातचीत खाड़ी क्षेत्र की स्थिति, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे और यूक्रेन संघर्ष पर केंद्रित थी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति पर है और दोनों देशों का दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य है। श्री कार्नी ने कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी सटीक तारीख अभी तय नहीं हुई है। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मियामी में होगा। श्री कार्नी ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वे अगले दशक में अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ कनाडा का व्यापार दोगुना करना चाहते हैं। उन्होंने भारत को उस व्यापक प्रयास का हिस्सा बनाया है जिसका उद्देश्य कनाडा की अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान पश्चिम एशियाई देशों पर हो रहे कई हमलों को देखते हुए पश्चिम एशिया में ऊर्जा से जुड़े अवसंरचना को ईरानी सीमा क्षेत्रों से दूर ले जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद और अरब नेताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पड़ोसी देशों में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों ने इस क्षेत्र में ऊर्जा संबंधी अवसंरचना को बदलने की आवश्यकता को उजागर किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने आर्थिक कदमों के माध्यम से ईरान को वित्तीय रूप से अलग थलग कर दिया है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि एक समय ऐसा आ सकता है जब स्थिति को सुलझाने में बहुत देर हो जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि

0: बड़े शहरों में ऐसे एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाने की योजना है, जहां व्यवसायियों को विभिन्न सरकारी विभागों तथा एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सके। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात को सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी।
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। इसमें कॉमर्स फैकल्टी के 6,713 और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फैकल्टी के 1,102 विद्यार्थी शामिल हैं। समारोह के दौरान स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा।
0: इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने कल गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने बताया कि ये समारोह आयुर्वेद से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा और ज्ञान के आदान प्रदान तथा व्यापक जुड़ाव के लिए मंच प्रदान करेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: 11वें आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागार में आज सुबह 9 से 10 के बीच होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के कुलपति डॉक्टर संजीव शर्मा ने बताया कि इस वर्ष आयुर्वेद दिवस में प्रमाण, अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आयुर्वेद को सशक्त बनाने के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। जामनगर स्थित ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की यूनिट हेड डॉक्टर गीता कृष्णन पिल्लई शाश्वतम से विश्वास तक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद और 2047 की ओर मार्ग इस विषय पर मार्गदर्शन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक ज्ञान से वैश्विक नेतृत्व तक आयुष विजन 2030 रिपोर्ट, भारत में आयुष संबंधित आविष्कारों पर स्थिति रिपोर्ट CCRAS अग्नि इस आकलन स्केल वेब पोर्टल का भी शुभारंभ होगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: आयुष मंत्री प्रताप जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद बेहतर और स्वस्थ जीवन का आधार है।
5: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को, योगा को अपनाइए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है।

0: इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को भारत की सौर क्रांति में साकार किया गया है।
1: भारत की सौर क्रांति गुजरात के राज्य स्तरीय प्रयासों से शुरू होकर आज एक विशाल राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है, जो देश को स्वच्छ ऊर्जा, आर्थिक अवसर और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट की स्थापित सौर क्षमता से आगे बढ़ते हुए भारत वर्ष 2026 तक लगभग 165 गीगावाट की सौर क्षमता हासिल कर चुका है। सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 51 लाख से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं और 14.8 गीगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित हो चुके हैं। इसने जहां लाखों परिवारों को बिजली बिल शून्य कर दिया है, वहीं युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के भी नए अवसर सृजित किए हैं। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर आ रहे बदलाव और कौशल विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की एक लाभार्थी की प्रेरक कहानी साझा करते हुए कहा,
2: आज पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है। इस योजना की वजह से गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले की पायल मुजपरा के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने सूर्य पहल के माध्यम से सोलर पावर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ली और 4 महीने का सोलर पीवी टेक्नीशियन का कोर्स पूरा किया। वो आसपास के जिलों में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन का काम करती है और इससे उन्हें हर महीने हजारों रुपए की आय होती है।
1: सुरेंद्रनगर के निवासी दिनेश भाई मकवाड़ा ने बताया कि कैसे इस योजना ने उनके जीवन को सुगम बनाया है।
3: मैंने पास पीजीवीसील का बिजली कनेक्शन था, लेकिन उसके बाद पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू होने पर मैंने उसके आवेदन करके अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लिया। इसमें सरकार की तरफ से मुझे 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली।
1: आज गुजरात प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर इंस्टॉलेशन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, बिहार, झारखंड, आंतरिक कर्नाटका, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों के पास पदक जीतने के कई अवसर होंगे। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू आज भारत के अभियान का नेतृत्व कर रही हैं। मनु भाकर ने निशानेबाजी में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। भारोत्तोलक मीराबाई चानू महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भाग लेंगी। नौकायन में भारत की पुरुष टीम ने सिंगल्स और टीम स्कल्स इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारतीय बेटियों की स्वर्णिम उड़ान, एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों द्वारा देश के लिए पहला स्वर्ण पदक लाने की खबर को आज दैनिक जागरण और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, जापान में इस टूर्नामेंट में अब तक देश के कुल 7 में से 4 पदक महिलाओं के नाम हैं। अमर उजाला की खबर है, मोबाइल में इंटरनेट नहीं बल्कि सिर्फ वॉइस कॉल और मैसेज की सुविधा चाहने वालों के लिए अच्छी खबर। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने दूरसंचार कंपनियों से मोबाइल रिचार्ज में बिना डेटा वाले सस्ते प्लान बढ़ाने को अनिवार्य किया। अब 30 दिन की वैधता लागू की जाएगी। नव भारत टाइम्स लिखता है, मोबाइल स्क्रीन गार्ड यानी स्क्रीन प्रोटेक्टर अब बिना गुणवत्ता जांच के नहीं बिकेंगे। नया नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू पर लाल हरा बिंदु अनिवार्य, देखते ही पता चलेगा कि उत्पाद शाकाहारी है या नहीं। दैनिक भास्कर के अनुसार केंद्र सरकार ने इस संबंध में जारी की अधिसूचना।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षों, व्यापारिक दबावों और जलवायु चुनौतियों के बीच विकासशील और अल्पविकसित देशों के बीच सहयोग मजबूत करने पर बल दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का समर्थन किया। ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी बुनियादी व्यवस्था को ईरान की चौकियों से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर बल दिया। 11वां आयुर्वेद दिवस आज देश भर में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में आज मूसा

0: वर्षा का अनुमान और जापान एशियाई खेलों में भारतीय रोवर्स ने पुरुष सिंगल्स और डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 8:15 हुए हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आप सुनिए गुलाम अली की गाई गजलें।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की गाई गजलें। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे का 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
0: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए बड़ा खूबसूरत लिखा है, आइए सुनते हैं।
2: रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: क्या बात है, रास्ते कभी खत्म नहीं होते,
2: बस चलने का हौसला होना चाहिए।
0: जी, इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें सबसे पहला संदेश मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: और संजय नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से वारिस अली खान, इस्लामुल निशा शकील, अहमद शहनाज खान और दानिश।
2: कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल।
0: श्रोताओ, हमेशा की तरह हमारा आभार आप सबको संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं ये भी जानिए के अगले एपिसोड में एक बेहद रोचक आविष्कार की कहानी।
2: जी हाँ श्रोताओ, ऐसा तो है नहीं कि अतीत में या पुराने समय में लोगों को बुखार नहीं आता था। जी हाँ, आता जरूर था, उनका शरीर भी गर्म होता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता था कि शरीर है कितना गर्म।
0: जी, तो आज हम आपको उमंग कार्यक्रम के द्वारा ले चलेंगे प्राचीन काल के एक ऐसे युग में जहाँ न कोई ट्रेन है और न जहाज। अजीब सा दृश्य होता होगा।
2: जी,
0: चिकित्सक मरीज के माथे पर हाथ रखकर कहते होंगे, बुखार तो है, लेकिन श्रोताओं ये ऐसी बात हुई जैसे कोई दुकानदार बिना तराजू के कह दे लगता है 5 किलो होगा।
2: तो आइए चलते हैं लगभग 400 साल पीछे, सन 1592 के आसपास। इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसे आज के थर्मामीटर का शुरुआती पूर्वज माना जा सकता है,
0: और इस उपकरण को थर्मोस्कोप कहा गया।
2: जी,
0: आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने ये किया था कि उन्होंने कांच की एक नली बनाई। इस नली के ऊपरी हिस्से में हवा बंद रहती थी और नीचे का हिस्सा पानी में डूबा रहता था।
2: तो श्रोता, होता ये था कि जब कांच का बल्ब गर्म किया जाता था तो अंदर की हवा फैलती थी और तापमान के अनुसार पानी का स्तर ऊपर नीचे होता था। इस तरह इस शुरुआती यंत्र से बस इतना ही पता चलता था कि तापमान बढ़ा या घटा है, इसमें कोई निश्चित संख्या का पैमाना नहीं था।
0: अभी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी थी। ये यंत्र बता तो देता था कि चीज गर्म हुई या ठंडी, लेकिन ये नहीं बताता था कि कितनी गर्म या कितनी ठंडी।
2: बिल्कुल।
0: फिर आया 17वीं शताब्दी का दौर। बहुत से वैज्ञानिकों ने तापमान मापने के लिए अलग अलग तरह के उपकरण बनाए।
2: जी।
0: लेकिन अब तक कोई एक निश्चित पैमाना नहीं था। किसी के थर्मामीटर पर एक संख्या तो दूसरे के थर्मामीटर पर दूसरी संख्या, बड़ी दुविधा थी।
2: फिर इस कहानी में प्रवेश होता है एक महान आविष्कारक का, जिसका नाम था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। उन्होंने पाया कि पारा या मरकरी तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील है। हल्के ताप पर भी पारा प्रतिक्रिया देता है, यानी फैलता है या सिकुड़ता है। सन 1724 में फारेनहाइट ने अपना तापमान का पैमाना प्रकाशित किया और तापमान को संख्याओं में व्यक्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: श्रोताओ, ये क्रांतिकारी खोज थी। अब डॉक्टर निश्चित रूप से कह सकते थे कि मरीज के शरीर का तापमान कितना है।
2: जी।
0: और यहीं से तापमान की भाषा बदल गई। अब गर्मी और ठंडक सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं रही, वह मापने योग्य वैज्ञानिक मात्रा बन गई।
2: जी।
0: इससे चिकित्सा करने के तरीकों में भी भारी असर पड़ा।
2: लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद स्वीडन के वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सन 1742 में एक और सरल पैमाना प्रस्तावित किया, जिसे हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इस पैमाने में पानी के जमने और उबलने के बिंदुओं को आधार बनाया गया।
0: तो श्रोताओ, अब दुनिया के पास तापमान को

0: मापने की एक व्यवस्थित भाषा थी
1: जी।
0: अब थर्मामीटर प्रयोगशालाओं से निकलकर अस्पतालों, घरों और मौसम विज्ञान विभाग तक पहुंच गया।
1: फिर आया डिजिटल युग। पारे वाले थर्मामीटर की जगह इलेक्ट्रॉनिक सेंसर आए
0: जी।
1: अब कुछ ही सेकंड में तापमान स्क्रीन पर दिखाई देने लगा और आज तो हमारे पास ऐसे डिजिटल थर्मामीटर हैं जो बिना छुए तापमान पता कर सकते हैं।
0: तो है ना श्रोताओं बेहद रोचक। जरा कल्पना कीजिए, एक समय इंसान हाथ लगाकर अनुमान लगाता था और आज मशीन पलक झपकते ही बता देती है
1: जी।
0: यही तो विज्ञान की खूबसूरती है
1: जी। एक छोटी सी जिज्ञासा से शुरुआत होती है
0: कि तापमान या गर्मी कितनी है,
1: और फिर सदियों की खोज, प्रयोग और सुधार के बाद मनुष्य वहाँ पहुँचता है जहाँ वो उस तापमान को एक संख्या में पढ़ सकता है।
0: तो श्रोताओं, अगली बार जब आप थर्मामीटर को हाथ में लें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक छोटी सी मशीन नहीं है। इसके पीछे गैलीलियो का प्रयोग है, फ़ारेनहाइट का पैमाना है और सेल्सियस की वैज्ञानिक सोच है और सदियों की मानव जिज्ञासा है। यही तो विज्ञान की सुंदर यात्रा है।
1: अनुमान से प्रमाण तक, अनुभव करने से मापने तक, और प्रश्न से आविष्कार तक
0: जी। और प्रश्न से आविष्कार तक। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी, और अच्छी लगी हो तो जरूर संदेश भेजिएगा। अब सुनिए आज का प्रश्न। आपको पता करना है कि थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं, और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: थर्मामीटर को हिंदी में क्या कहते हैं और थर्मामीटर के आविष्कार की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तीन वैज्ञानिकों के नाम बताइए। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और शीर्षक है वी आर गोइंग टू द जू।
1: इस कार्यक्रम में गीत, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से बच्चों को चिड़ियाघर की सैर कराई गई है और कई पशु पक्षियों के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है। पशु पक्षियों की ध्वनि भी बच्चों को सुनाई गई है जिससे श्रवण आनंद और अधिक बढ़ जाता है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: ओ यस।
2: ऑल राइट, सो टेल मी, व्हाट डू यू सी इन अ जू?
3: टाइगर, लायन,
2: यस,
3: मंकी, बर्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड,
2: वेरी नाइस,
3: कैमल, जिराफ एंड सो ऑन।
2: Oh wow! So, here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger.

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम चींटी और हाथी।
1: भाषा शिक्षण के उद्देश्य से निर्मित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि कभी भी किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए और सबकी प्रतिभाओं और योग्यताओं का सम्मान करना चाहिए।

जंगल में एक चींटी रहती थी। वो रोज सुबह भोजन की तलाश में चल पड़ती थी। परिवार की सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चलती।

वहाँ एक हाथी भी रहता था। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था।

जंगल के पेड़ पौधों को तोड़ता। कभी कभी हाथी अपने सूंड में पानी भरकर लाता और जानवरों पर डाल देता।

जंगल के जानवर उससे बहुत परेशान रहते। हाथी की एक बुरी आदत और भी थी, जहां कहीं भी वो चींटियों को देखता कुचल देता। चींटी ये सब देखती और दुखी होती।

0: एक दिन चींटी ने हाथी से कहा,
1: तुम दूसरों को बहुत सताते हो, ये बात ठीक नहीं।
0: हाथी बोला,
2: चुप रहो, मैं चाहे जो करूं, तुम बहुत छोटी हो, ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें भी कुचल दूंगा। हाँ,
1: चींटी चुप हो गई और घास में जाकर छिप गई।

हाथी इधर उधर घूम रहा था। तभी चींटी चुपके से उसकी सूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी परेशान होने लगा। उसने सूंड को जोर जोर से हिलाया।

0: पर उसकी परेशानी किसी तरह भी कम न हुई। तब चींटी बोली,
1: परेशान क्या हो रहे हो? तुम भी तो दूसरों को बहुत सताते हो।
0: हाथी बहुत दुखी हो गया। वो बोला,
2: मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगा।
0: चींटी को दया आ गई। वो हाथी की सूंड से बाहर निकल आई। फिर बोली,
1: किसी को छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए।

0: तो अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी और हाथी, और अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है देखो डाकिया आया।
1: ये कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा और विशेषकर डाकिया के बारे में रोचक विवरण देता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि पुराने समय में डाक सेवा और एक डाकिये का कितना अधिक महत्व था। नई पीढ़ी के बच्चों के लिए ये जानकारी बहुत ही रोचक होगी।
2: चंचल इतनी चंचल है, बहुत बनाती बातें, प्रश्न बहुत करती है उनसे पास जो उसके आते। लोग भी उसकी बातों में यूं उलझते जाते, बातों बातों में प्रश्नों का उत्तर देते जाते।
3: किसी एक दिन
4: जब चंचल अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रही थी, तो उसने देखा एक आदमी साइकिल पर सवार अपनी धुन में ट्रन ट्रन घंटी बजाते हुए उसके घर की तरफ आ रहा है। कौन हो सकता है ये? इतने में अचानक उसका एक दोस्त बोल पड़ा, देखो डाकिया आया। चंचल सोचने लगी,

0: क्या ये कौन?
1: बस चंचल तो खेलना वेलना सब भूल गई, खेलना छोड़कर घर की तरफ गई। फिर क्या था, डाकिया अंकल के साथ बातूनी चंचल शुरू हो गई।
2: डाकिया अंकल,
3: आओ बेटा।
2: अरे मेरा नाम बेटा नहीं है, मेरा नाम चंचल है, चंचल। और आपको पता है मैं उस सामने वाले घर में रहती हूँ।
3: अच्छा चंचल, बेटे ये तुम्हारा पत्र है।
2: लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये चिट्ठी हमारे घर पहुँचानी है?
3: इस पे बेटे आपका नाम और पता लिखा है, पता मतलब एड्रेस लिखा है आपका, उससे पता चलता है कि ये आपका पत्र है।
2: तो सब जगह आप ही चिट्ठी पहुँचाते हो?
3: नहीं, हर शहर में हमारे कर्मचारी हैं, हम यहाँ से उनके पास डाक मोटर से ट्रेन से हम उनके पास भेजेंगे, वहाँ वो आपको जिस एड्रेस पे चिट्ठी जानी हो उस एड्रेस पे वो चिट्ठी पहुँचाएंगे। हम सब जगह अपने देश में नहीं विदेश तक भी हम चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं। बेटे हमारा ये नेटवर्क बहुत बड़ा है, सारी दुनिया में फैला हुआ है, कहीं पे एरोप्लेन से कहीं पे ट्रेन से हम सब जगह चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं।
2: नेटवर्क क्या होता है अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आया।
3: नेटवर्क हमारा विभाग जिसमें लाखों कर्मचारी काम करते हैं, गांव गांव शहर शहर सब जगह हमारे कर्मचारी हैं जो कि आपकी चिट्ठी हर जगह पहुंचा देते हैं।
2: लाखों कर्मचारी सब लोग कैसे काम करते हैं?
3: ये बेटा हर जगह से डाक इकट्ठी करके और उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, वहाँ से छटाई करके जिस जगह की वो डाक हो उस जगह के बैग में उसको बंद करके जहाँ रेल से जानी हो वहाँ रेल से भेजते हैं, जहाँ जहाज से जानी हो वहाँ जहाज से, हर जगह की डाक हम वहीं उसके एड्रेस पर भिजवाते हैं।
2: तो आप पूरी दुनिया में चिट्ठी पहुंचाते हो?
3: हाँ बेटे, आप चिट्ठी कहीं भी भेज सकते हो, हम हर जगह आपकी चिट्ठी पहुंचा देंगे, आपका उसमें नाम पता साफ साफ लिखा हो, शहर का नाम पिन कोड वगैरह अगर आप सही लिखते हैं साफ लिखते हैं तो आपका पत्र हर जगह पहुंच जाएगा।
2: ओह, आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी।
3: जी हाँ बेटे, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, चाहे कैसा भी मौसम हो, आपकी चिट्ठी जिस दिन भी आपने लेटर बॉक्स में डाली उसी दिन से उस पे काम शुरू हो जाता है, चाहे धूप हो बारिश हो तूफान हो, हमें हर मौसम में ही काम करना होता है, आपकी चिट्ठी समय पर पहुंचाना ही हमारा काम है।
2: डाकिया अंकल आप तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर आज से हम दोनों दोस्त हुए, ठीक है?
3: हाँ बेटे, जब अगली चिट्ठी आएगी हम फिर मिलेंगे, अच्छे दोस्त हैं हम।
2: हाँ हाँ, जरूर मिलेंगे। धन्यवाद डाकिया अंकल।
3: धन्यवाद चंचल।
4: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता जगबंधु
5: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। FM बैंड 103.1 MHz पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 11वां आयुर्वेद दिवस आज। बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में और राज्य सरकार के 3 विभागों में आज पेंशन अदालतें लगाई जाएंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी।

0: लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 11वां आयुर्वेद दिवस आज, बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में और राज्य सरकार के 3 विभागों में आज पेंशन अदालतें लगाई जाएंगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकता नगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन नहीं करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए आज जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर की निगरानी में लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं कल उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी होगी। जिला प्रमुख पद का आरक्षण 13 अगस्त को पहले ही तय किया जा चुका है। लॉटरी के जरिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के जैतारण और जैसलमेर जिले के रामदेवरा के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जैतारण के मरुधर केसरी धाम में दर्शन पूजन के बाद सेवा संकल्प बाइक रैली को रवाना करेंगे। वे यहां जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री रामदेवरा पहुंचेंगे। बाबा रामदेव पैनोरमा से मुख्य बाजार होते हुए बाबा रामदेव मंदिर तक आयोजित पदयात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद युवाओं से संवाद करेंगे। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत अब तक प्रदेश में 37,000 से अधिक ऑनलाइन संकल्प पत्र भरे गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अभियान की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के माध्यम से अधिक पात्र लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा नागरिक सेवाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित सेवा सेतु अभियान की अवधि 3 दिन बढ़ाकर 28 सितंबर तक करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत प्रदेश में 383 रक्तदान शिविरों में 15,000 से अधिक यूनिट रक्त एकत्र किया गया है। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में 30 लाख परिवारों ने भाग लिया, जबकि मेरे सपनों का भारत कार्यक्रम में 13,40,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। आगामी रबी सीजन को देखते हुए प्रदेश में उर्वरकों और मिनी किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है। राज्य कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने बताया कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि ये मिनी किट राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन के द्वारा तैयार की जा रही है।
2: हम मिनी किट देते हैं बहुत सारे, वो हमने तैयार कर दिए। हमारा जो स्टेट की एजेंसी है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, उसको हमने ऑर्डर्स दे दिए हैं। मिनी किट्स हमारे तैयार हो रहे हैं और थोड़ी बारिश आई है, रिलीफ है, तो इससे हमारा अर्ली सोइंग होगी। तो हम पूरी तरह तैयार है किसान को मोटिवेट करने, प्राकृतिक खेती कराने और सारी चीजें आईटी से उसको सहयोग देने के लिए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज डीएपी यूरिया का है, वो मेरे पास एडवांस स्टॉक है और हमने बहुत सारा एसएसएस के माध्यम से एडवांस में 1,25,000 टन के करीब यूरिया और उनको सप्लाई दे दिया हमने।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और

0: फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। देश भर में आज 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय की ओर से महाराष्ट्र के नागपुर में समारोह मनाया जाएगा। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और विश्व भर में आयुर्वेद संस्थान और इससे जुड़े लोग समारोह में भाग लेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने सभी से स्वस्थ जीवन शैली के लिए आयुर्वेद को अपनाने की अपील की।
1: हमारे आयुष मंत्रालय ने जो थीम चुनी है वो है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी अगर हम अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, जिंदगी हम वहाँ पर जीना चाहते हैं, तो अभी से आयुर्वेद और आयुष को योगा को अपनाइए। और इसका जो आयोजन है हमारा ये 23 सितंबर का, ये साल हम महाराष्ट्र के नागपुर में इसको हम मना रहे हैं।
0: राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। आयुष विभाग की ओर से ये समारोह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया है। समारोह में आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों, नर्स, कंपाउंडर्स और अन्य कर्मचारियों को उत्कृष्ट कार्य और विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा श्रेष्ठ चिकित्सालय और औषधालय, विशिष्ट योजनाओं तथा भामाशाह प्रेरकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। पाली में आयुर्वेद दिवस पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इनके माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और योग के बारे में जानकारी दी जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा है कि दवाओं के प्रतिकूल प्रभाव की समय पर रिपोर्टिंग से मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। वे जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय फार्माको विजिलेंस कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि मरीज को दवा उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके सुरक्षित और सही उपयोग पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ से दवाओं के साइड इफेक्ट की रिपोर्टिंग में किसी भी तरह का संकोच नहीं करने का आह्वान किया है। राज्य सरकार के 3 विभागों में आज पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इनमें जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय में होने वाली अदालत में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई करेंगे। इनमें पेंशन निर्धारण, बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं से संबंधित प्रकरण शामिल हैं। मामलों का मौके पर ही तुरंत समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। पेंशन अदालत का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिस कार्मिकों को पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं में आ रही समस्याओं से राहत दिलाना है। वहीं स्वास्थ्य निदेशालय में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। सवाईमाधोपुर पुलिस की ओर से रणथंबोर आने वाले पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए 1 अक्टूबर से टूरिस्ट हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। हेल्पलाइन पर 24 घंटे सहायता उपलब्ध रहेगी। पर्यटकों को रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सफारी, पर्यटन स्थलों, स्थानीय परिवहन और अन्य सुविधाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। समस्या या शिकायत मिलने पर 15 मिनट के भीतर प्रारंभिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। जालौर में आज टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं से जुड़े उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई की ओर से होने वाले कार्यक्रम में टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग सेवाओं के शुल्क, टैरिफ प्लान, बिलिंग प्रक्रिया और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 11वां आयुर्वेद दिवस आज, बेहतर कल के लिए आयुर्वेद थीम पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर में। और
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
3: में प्रस्तुत है वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के रूप में यानी पब्लिक सर्विस में 25 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान

0: उन्होंने बहुत कई ऐसे काम किए जिससे आम लोगों का बहुत फायदा हुआ और खास तौर पे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में। पिछले एक दशक में इसे एक व्यापक जन अभियान का रूप मिला है। 2014 के बाद से खास करके वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इसी बारे में आज हम अपनी विशेष सीरीज जन सेवा से देश सेवा में वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा पर बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रमेश कुमार अरोड़ा, जो पूर्व जीएम हैं, यानी वो फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत आपका अरोड़ा साहब।
1: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: और हमारे साथ हैं शिशिर सिन्हा, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
0: तो जैसा कि हमने अपने इंट्रो में कहा कि पिछले 25 वर्षों में जन सेवा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले मुख्यमंत्रित्व काल में और फिर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री के तौर पर आम लोगों को देश की कई बड़ी सामाजिक हो या आर्थिक हो, वित्तीय हो, ऐसी परियोजनाओं से योजनाओं से जोड़कर वित्तीय समावेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया है। अरोड़ा साहब, आपसे हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2014 के बाद से वित्तीय समावेशन की दिशा में और दृष्टिकोण में क्या कुछ प्रमुख खास बदलाव आपको देखने को मिले हैं जिसका आप उल्लेख करना चाहेंगे?
1: सबसे बढ़िया जो वित्तीय समावेशन की बात है, इसका मतलब ये है कि हर सिटीजन का पास एक बैंक का अकाउंट हो जिसमें उसे क्रेडिट की सुविधा भी दी जाए, इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाए, पेंशन की सुविधा भी दी जाए और डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी पेमेंट की उसकी सुविधा दी जाए। यानी कि हर एक सिटीजन के पास एक यूजफुल और कन्वीनियंट एक अकाउंट हो जिससे कि वो सारी फैसिलिटीज को कर सके। जहां तक 2014 के बाद की बात है, आप सब जानते ही हैं कि जनधन खातों की शुरुआत जो है 2014 से लार्ज स्केल पर हुई है, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से इसका बात कही थी। और ये हमारे एक बैंकिंग के लिए और सभी सिटीजन के लिए खाता खोलने की दिशा में एक बहुत बड़ा काम हुआ, जिसमें जीरो बैलेंस के ऊपर सबके अकाउंट खोले गए, साथ में रुपए डेबिट कार्ड की सुविधा दी गई, साथ में एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख का दिया गया और लाइफ इंश्योरेंस कवर 30,000 रुपए का, जो 15/8/14 से 31/1/2015 तक खाते खुले थे उनमें 30,000 रुपए का एलिजिबल अकाउंट्स में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक नई स्कीम साथ में दी गई जनधन खातों में, 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, अगर वो 6 महीने अगर एक्टिव अकाउंट रहता है, सही अकाउंट चलता है, तो उसमें वो भी फैसिलिटी है और साथ में पेंशन और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इसकी भी सुविधा है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सबसे बड़ा जो फायदा एक हुआ है, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट हमारी स्कीम्स हैं, जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के खाते में जाए, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बहुत बड़ा ये फायदा हुआ है ये जनधन खाते खुलने से।
0: बिल्कुल शिशिर, आपसे मेरा सवाल ये है, केवल बैंक खाता खोलना और व्यक्ति को वास्तव में वित्तीय व्यवस्था में शामिल करना, दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। आपको क्या लगता है आज हम किस चरण में हैं?
2: जनधन योजना में एक चूंकि कंप्यूटर और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हुआ तो बैंक उनके घर पे आ गया। देखिए, वित्तीय समावेशन की बात हम क्यों कर रहे हैं? वित्तीय समावेशन केवल ये नहीं कि आपको हमने एक बैंकिंग सुविधा दी है या हमने आपको एक बीमा की सुविधा दी है या पेंशन की सुविधा दी है। दरअसल वित्तीय समावेशन अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है, क्योंकि अगर आप देखिए कि एक व्यक्ति जो कि बैंक में खाता खुलवाता है, जैसा कि अरोड़ा साहब ने कहा कि उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। अब अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ये एक तरीके का आपके लिए कर्ज है। आप सामान्य तौर पर जब कर्ज लेने जाते हैं तो तमाम तरह के प्रावधान है जो देखे जाते हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपका वेतन क्या है, आप क्या इस स्थिति में है कि नहीं, आप कर्ज का पुनर्भुगतान कर पाएंगे। वहां पर एक व्यक्ति का खाता खुला हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना में, उसने 6 महीने का परफॉर्मेंस देखना है कि वो 6 महीने में उसकी जो निकासी हुई या उसका जो जमा हुआ वो सही तरीके से है कि नहीं, फिर उसके आधार पर उसको 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट दिया गया। अब आप कहेंगे 10,000 रुपए में किसी के लिए क्या होता है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिस देश में एक बड़ी आबादी के पास जिसे कहा जाए कि 10,000 रुपया उसका वेतन होता हो, उसे 10,000 रुपए का एक कर्ज मिले जिससे कि वो अपने व्यक्तिगत तौर के अलावा अगर वो किसी उत्पादक कार्यों में लगा सके, छोटे मोटे कार्य कर रहा है उसमें वो लगा सके, तो कितना फायदा होगा। तो मेरे लिए वित्तीय समावेशन का मतलब एक व्यक्ति का अनौपचारीकरण से औपचारीकरण में आना है, अर्थव्यवस्था का विस्तार होना है, सकल घरेलू उत्पाद व्यवस्था बेहतर होनी है और सबसे बड़ी बात है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा दी जाती है वित्तीय सुरक्षा में जहां पर संगठित क्षेत्र से उसको मदद मिलती है। अब देखिए, जनधन में एक और बात आपको गौर करने की है, जनधन से जन सुरक्षा की तरफ हम हैं। हमने केवल जनधन की बात नहीं की है, जन का धन आ गया और उसके बाद सुरक्षा देना, तो चाहे वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री दुर्घटना दुर्घटना बीमा योजना

0: हो या फिर अटल पेंशन योजना हो। ये तीनों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारे देश में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये एक सार्वजनिक तथ्य है, इसमें मैं कोई अलग से फिगर्स नहीं ला रहा हूँ। अगर ऐसी स्थिति में आपको एक पेंशन की सुविधा मिल जाए, आपको कहा जाए कि आप मामूली रकम देकर के दुर्घटना बीमा करा सकते हैं, मामूली रकम देकर के जीवन बीमा आप करा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा की धारणा मजबूत होती है। मेरे लिए एक व्यक्तिगत तौर पर वित्तीय समावेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को बैंक से जोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था में मजबूती और अर्थव्यवस्था के औपचारिकरण की तरफ बढ़ाया गया कदम है।
1: बिल्कुल अरोड़ा साहब, जैसा बताया शिशिर जी ने, बहुत बारीकी से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि 10,000 रुपए की रकम का ओवरड्राफ्ट मिलना, यानी किसी को बड़े आसान शर्तों पर बिना किसी कोलैटरल के कर्ज मिल जाना। खास बात यह है कि लोग पेपर देने से, कोई कोलैटरल रखने से घबराते हैं, नहीं होता है उनके पास, मिल जाना। क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण है, सब्जी बेचने वाले जिन्हें सुबह का पैसा चाहिए कि वो मंडी से जाकर सब्जी खरीदें या खेतों से जाकर खरीदें और शाम तक बेच दें, उन्हें सुबह 5,000 रुपए भी मिल गए तो वो शाम तक वो 7,000-7,500 रुपए बना लेते हैं। उनका पहिया जो है जीवन का वो चल जाता है। और ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हमने देखे हैं। तो शिशिर, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 10,000 रुपए की भी रकम अगर किसी को मिल रही है तो न सिर्फ उसका बल्कि उसके पूरे परिवार का पहिया चल पड़ता है और उससे एक परिवार की शिक्षा दीक्षा हो जाती है। और यही एक जो स्तंभ बन रहे हैं शायद विकसित भारत 2047 के स्तंभों में बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। अरुणा साहब, एक सवाल आपसे भी है और यही सवाल शिशिर मैं आपसे भी फिर करने वाला हूं कि हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, यानी जनधन खाते जिसकी हमने अभी चर्चा की, आधार नंबर और मोबाइल नंबर, अब ये तीनों हो गए हैं। और भारत के डिजिटल और वित्तीय समावेशन का जो मॉडल रहा है इसमें जैम ट्रिनिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक आधार रहा है। इस व्यवस्था ने सरकार और लाभार्थी जो एक आम नागरिक है उसके बीच के संबंधों को कैसे बदला है और कैसे एक आम आदमी सशक्त हुआ है, खास करके महिलाएं।
2: जैसे आपने जैम की बात की, जैम का है जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके सबसे बड़ा इसका जो फायदा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जैसे मैंने पहले बात की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स हैं खाते में जानी है उसके लिए विदाउट मिडिल मैन ये खाते में कैसे जैम के थ्रू जाए, यानी जनधन खाता होना चाहिए सबसे पहला बात, जिसमें मैंने जैसे पहले बताया जीरो बैलेंस के ऊपर भी खुल सकता है। उसके बाद आधार आइडेंटिटी के लिए कि ये पार्टिकुलर पर्सन यही है, उसकी आइडेंटिटी दे अगर फिक्स करनी है तो आधार के थ्रू है। और मोबाइल से कल को फ्रॉड ना हो जाए, ओटीपी वगैरह उसकी जो कम्युनिकेशन है वो उसके थ्रू मोबाइल है। यानी कि जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का बात आती है उसको जैम जनधन खाता हो, आधार उसके लिंक होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए, इसके थ्रू वो डायरेक्ट जो उसके खाते में पैसा जमा कर दिया जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, डिजिटल फाइनेंशियल के ऊपर ये जैम जो है बहुत बड़ा एक कार्य कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। अब जहां तक बात है इसमें कि कैसे काम करता है, तो जनधन में सबसे बेनिफिशियरी का अकाउंट खुल गया, उसके बाद आधार से उसका लिंक हो गया और मोबाइल नंबर के थ्रू उसके पास जो SMS आएंगे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो हो गए, तो इस हिसाब से उसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्कीम्स है उसका बेनिफिट पूरा मिल जाता है और कोई मिडिलमैन नहीं, कोई उतनी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू के काम होता है।
1: बिल्कुल शिशिर, यही सवाल आपसे भी है, लेकिन आपसे मैं ये भी खास तौर पर जानना चाहूंगा कि महिलाओं को किस तरीके से जैम ने सशक्त बनाया है और पारदर्शी सिस्टम को बनाया है। क्योंकि आम तौर पर होता क्या था कि उन्हें अगर किसी रकम कोई मिलती थी, चाहे कहीं से मिले, सरकार के इससे मिले, कैश होता था, तो गिद्ध दृष्टि जो होती थी घरों में भी कई लोगों की होती थी, कई बार उनके पैसे गुम हो जाते थे, ठीक से गिन नहीं पाती थी, कहीं रख दिया, भूल गए, बच्चों ने चुरा लिया। तो बाहर से भी सुरक्षा, अंदर से भी सुरक्षा और सामने पारदर्शिता, अपने पैसे को बढ़ते हुए देखना, इस पर आपकी क्या टिप्पणी?
0: पहले अगर आप जैम की अवधारणा देखिए, मुझे याद है कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने आर्थिक सर्वेक्षण जो 2015-16 का दिया था, उसका शीर्षक था उस चैप्टर का कि कैसे लोगों के आंसू पूछे जाए, और उसी में, उसी शीर्षक के तले अध्याय में जैम का जिक्र किया गया था। तो पहली बार जब जैम शब्द आया तो हम लोग थोड़े से सोचे कि जैम होता क्या है
1: जी,
0: भाई हम तो ब्रेड पे लगा के खाने वाले की बात कर रहे हैं। फिर जब मुझे उसके ठीक एक दिन के बाद जब बजट में इस बात का जिक्र किया गया कि हम जैम ट्रिनिटी के जरिए, यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करेंगे। अब देखिए, आपने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है, जनधन खाते में एक बड़ी संख्या किसकी? महिलाओं की है, और वो महिलाएं भी कौन जो ग्रामीण इलाके में हैं। तो अब देखिए, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो पुरुषों से कई गुना ज्यादा है। अब वहां पर जो कुछ भी उनको भुगतान होता है, चाहे वो बीबीजी रामजी के

0: जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, उस योजना का पैसा जो उनके खाते में जा रहा है, बीच में कोई आदमी शामिल नहीं है। तो आप ये भी याद करें कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जी का बयान था कि रुपए का 15 पैसा ही गांव तक पहुंचता है। अब उसमें से अगर एक ग्रामीण महिला के पास अगर बैंक खाता नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो 15 पैसे भी पहुंचेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सूरत में अगर आपके पास खाता है और उस खाते के जरिए आप लेन देन करते हैं, वो सशक्त हैं क्योंकि वहां पर वो श्रम शक्ति में बड़ी भागीदारी कर रही हैं। लेकिन हमको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है तो वहां पर जनधन खाते में उनकी मदद हो रही है। और जनधन खाता केवल आपके लिए पैसा लेन देन का माध्यम नहीं है, बल्कि वहां से जन सुरक्षा का रास्ता खुलता है। ये आपके सशक्तिकरण का दूसरा रास्ता है। आपको बीमा सुरक्षा मिलती है, आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास एक सबसे बड़ी बात है कि रुपे कार्ड मिल रहा है। जो कि अमूमन क्या होता है कि हम लोग एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होने के नाते हम सोचते हैं कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, हमारे पास कार्ड नहीं है। कार्ड कहीं ना कहीं हमारे एक महत्वाकांक्षा से जुड़ा हुआ है। एक महिला जो ग्रामीण इलाके में काम करे, उसको हमने कार्ड दिया, अब उस कार्ड के जरिए वो कहीं भी जाकर के खरीदारी कर सकती है। क्या ये सशक्तिकरण नहीं है? तो पहली श्रम सशक्तिकरण हुआ, फिर उसके बाद उनका आर्थिक सशक्तिकरण हुआ, फिर उनका जो विश्वास है वो और बेहतर होगा। तो यही तो सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। और मुझे लगता है कि जनधन एक पहला कदम था और जनधन के बाद अब जो दूसरा कदम है, जिसपे काफी अच्छे से बातचीत भी हुई है, चर्चा भी हुई है, काम भी हो रहा है, वो है वित्तीय साक्षरता का। और मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं की हम बात क्यों करें, पुरुषों में भी, महिलाओं और पुरुषों के दोनों के सशक्तिकरण में जो वित्तीय साक्षरता की भूमिका होगी वो कम नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि महिलाएं आर्थिक तौर पर जितनी ज्यादा कहते ना कि तर्क संगत फैसले लेती हैं, वो शायद पुरुष नहीं लेते हैं। हम तीन पुरुष यहाँ बैठ करके इस बात पे सहमति जता सकते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से ज्यादा अच्छी सोच रखती हैं पुरुषों के मुकाबले में।
1: मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक रखता हूँ। अच्छी सोच और समझ के साथ साथ वो दूर दृष्टा भी होती हैं वित्तीय मामलों में, और भविष्य भी सुरक्षित रखना चाहती हैं अपने परिवार का। और जब एक परिवार का भविष्य सुरक्षित होता है तो समाज और फिर देश का भविष्य भी उसी तरीके से सुरक्षित रहता है। जनधन खातों की हमने बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, 54 करोड़ आपने बताया कि जनधन में खाते खुले हैं, 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि उसमें जमा हुई है। आइए सुनते हैं जनधन से संबंधित एक खास रिपोर्ट।
2: श्रोताओं, वित्तीय समावेशन को अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है देश के हर व्यक्ति तक बैंक खाता, बचत, बीमा, पेंशन और दूसरी जरूरी वित्तीय सेवाओं की पहुंच। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से दूर थे। आज इस योजना का दायरा काफी बढ़ चुका है। 19 अगस्त 2026 तक देश में 59.9 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके थे। इनमें करीब 56% खाते महिलाओं के हैं, जबकि लगभग 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं। श्रोताओं, जनधन खाता एक सामान्य बैंक खाते की तरह ही है, लेकिन इसका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसके माध्यम से लोगों को कई दूसरी वित्तीय सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। खाता धारकों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और पात्र खाता धारक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। पात्र खातों के लिए दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात करते हैं JAM की। JAM का मतलब है जनधन, आधार और मोबाइल। इन तीनों को जोड़कर सरकार ने लाभार्थियों तक सरकारी सहायता सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया है। इसी से जुड़ा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी DBT। आसान शब्दों में कहें तो अगर किसी सरकारी योजना का पैसा किसी व्यक्ति को मिलना है तो पात्र होने पर वो राशि सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचाई जा सकती है। इससे बीच के लोगों की भूमिका कम हो जाती है और लाभ सीधे लाभार्थी तक पहुंचता है। 10 अगस्त 2026 तक DBT के माध्यम से 320 योजनाओं के अंतर्गत 56 मंत्रालयों द्वारा कुल 52,89,019 करोड़ रुपए के अंतरण दर्ज किए गए थे। लेकिन वित्तीय समावेशन केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित नहीं है। इसके साथ लोगों को बीमा और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जोड़ना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पात्र लोगों को जीवन बीमा कवर मिलता है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दुर्घटना से जुड़े बीमा कवर की सुविधा देती है। अटल पेंशन योजना पात्र लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था से जुड़ी है। जुलाई 2026 तक PMJJBY में 27.84 करोड़ संचयी नामांकन, PMSBY में 58.78 करोड़ संचयी नामांकन और जून 2026 तक APY में 9.29 करोड़ संचयी नामांकन दर्ज किए गए थे। इसके अलावा ई श्रम के माध्यम से

0: संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण आयुष्मान भारत PMJAY के माध्यम से, स्वास्थ्य सुरक्षा और PM स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वालों को ऋण जैसी पहले भी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के व्यापक ढांचे का हिस्सा हैं। श्रोताओं, इन योजनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर साफ होती है। जन धन से बैंक खाता, JAM और DBT से सरकारी लाभ का सीधा अंतरण और बीमा योजनाओं से आर्थिक सुरक्षा, पेंशन से भविष्य की सुरक्षा और दूसरी योजनाओं से स्वास्थ्य तथा आजीविका को सहारा मिलता है। यानी वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक में खाता होना नहीं, इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े, अपने पैसे को सुरक्षित रखे, जरूरत के समय वित्तीय सहायता और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ ले और भविष्य के लिए भी तैयारी कर सके। यही प्रयास वित्तीय समावेशन को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ता है और आम नागरिक को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बनाता है।
1: अगला सवाल शिशिर, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनधन पर हमने ये एक रिपोर्ट सुनी और बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हमने देखे कि किसी भी देश के लिए इतने बड़े पैमाने पर खातों का खुल जाना अचंभा।
2: उस समय गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको जगह दी गई थी जो पहले दिन खाते खुले थे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। साथ में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से लोगों का लाभ हुआ है, लोग सशक्त हुए हैं और क्लेम सेटलमेंट भी ठीक ठाक बढ़िया से अच्छे तरीके से हो रहा है। इसमें कहीं कोई बहुत झंझट लोगों को पेश नहीं आ रही है जहां उसकी जरूरत पड़ रही है। अब बात करेंगे पेंशन और वृद्धावस्था की सुरक्षा की। इस मामले में सरकार ने पिछले खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में क्या क्या काम किया है?
2: सबसे पहले तो हम अटल पेंशन योजना की बात करेंगे। देखिए, पेंशन योजना की उपयोगिता क्या है? अब देखिए, जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए एक सहूलियत ये रही कि उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता रहा है। यहाँ तक कि जब पहली जनवरी 2004 से पेंशन की व्यवस्था बदली, डिफाइंड बेनिफिट से हम लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पे आ गए, वहां पर भी आपको एक निश्चित रकम तो मिलनी है। लेकिन आप ये भी ध्यान में रखिए कि कितने लोग सरकारी नौकरी में है, दूसरा कितने लोग हैं जो नियमित तनख्वाह पाने वाले जॉब में है। तो श्रम मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 22% है ये संख्या, यानी कि 78% वो लोग हैं जिनके पास नियमित वेतन नहीं है। और उनके लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो अर्धशहरी क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र में हो, क्या हम उनके लिए रियायती दर पर पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं? तो अटल पेंशन योजना में क्या कही गई कि भाई आपको 18 वर्ष से 40 वर्ष की उम्र तक आपको योगदान करना है, 60 वर्ष की उम्र में आपको पेंशन मिलेगा, जो कि उस समय कहा गया 3,000 रुपए मिलेंगे। अब फिर वही बात आती है कि क्या 3,000 रुपए पर्याप्त है? हो सकता है कि आपको आगे चल करके और बड़ी रकम मिल जाए, और ज्यादा रकम मिले आप जितना योगदान करते हैं। लेकिन शुरुआत में ही अगर हम संशय जता दें कि 3,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो शायद उस योजना के ऊपर ही आप प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो पहला जो मुझे लगता है कि बड़ा जो सुधार हुआ वो था पेंशन को लेकर के। दूसरा, अगर आप देखें तो कई जो वृद्धावस्था की जो पेंशन योजनाएं हैं, चाहे जीवन बीमा की कुछ पॉलिसीज हैं जो कि खास तौर पर बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। और इसीलिए आपने महसूस किया होगा कि हमारे देश में सिल्वर इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब है कि जो 60 वर्ष से उम्र से ज्यादा लोग हैं, वो किस तरीके से अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी क्या उनके लिए किया जा सकता है। और वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि इस तरह की पेंशन योजनाएं या वयोवृद्ध बीमा योजनाएं जो हम लोग की बात कर रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया है। और इन्हीं सब का एक असर ये भी हुआ है कि खास तौर पे रियलिटी प्रोजेक्ट्स आने लगे, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए खास तौर पे लाए जाने, क्योंकि उनका एश्योरेंस हो गया। मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं, शायद अरोड़ा साहब उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम कहते हैं। यानी कि आपने जिंदगी भर कुछ कमाई करी, आपने घर बनाया, और आप जब 60 वर्ष की उम्र में पहुंचते तो जाहिर सी बात है कि हमारे कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे लिए सीमित हो जाता है, उस समय हमें ज्यादा जरूरत है। तो हमने जो बना रखा है उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करके हम बाकी के दिनों के लिए हम उससे संसाधन का इंतजाम कर सके। ध्यान रखिए कि रिवर्स मॉर्गेज स्कीम पहले भी था, लेकिन अब उसकी जो जिस तरीके से इसको कहा जाना कि समय के हिसाब से बदलाव करके उसको उपयोगी बनाया गया, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसा आपने शुरू में कहा था कि वित्तीय समावेशन की अवधारणा पहले भी थी, कोई नई बात नहीं है, या फिर अगर हम खाते की बात करें वो पहले भी थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम बदलते समय के हिसाब से क्या कुछ बदलाव करते हैं। तो चाहे वो अटल पेंशन योजना हो, वयोवृद्ध बीमा योजना की हम लोग बात करें, या फिर हम लोग रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के नवीकरण की बात करें, ये तीन ऐसे मामले हैं जहां पर मुझे लगता है कि जो हमारे 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए इंतजाम किए गए।
1: बिल्कुल। और अरोड़ा साहब, हम वित्तीय समावेशन की बात कर कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री अपने जीवन के 25 साल जो जन सेवा में दिए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से आम लोगों से, गांव के लोगों से, कई विषम परिस्थितियों से जब वो निपटे, तो

0: उसमें जो आम लोगों से उनकी चर्चा हुई या आम लोगों को जो समझने की कोशिश की, उससे बहुत बड़ी मदद मिली है कि कौन सी स्कीम्स देश में लाई जाएं। और सिर्फ एक स्कीम लाना ही नहीं, जैसे शिशिर अभी बता रहे थे कि सिर्फ जनधन योजना खोल देने से ही काम नहीं चलेगा, उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें उसकी सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए देनी होगी, तभी जाकर वो सफल हो पाएगा। तो हमने जीवन ज्योति बीमा योजना की बात की, लेकिन जब तक हम स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे तब तक वित्तीय समावेशन की चर्चा दरअसल पूरी होगी नहीं। पूरी तभी होगी जब हम इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा को भी इसमें शामिल करेंगे। आयुष्मान भारत और पीएम जय ने गरीब परिवारों के लिए हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की तस्वीर एक तरीके से बदल दी है। व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तो वो एक स्वस्थ सोच के साथ आगे बढ़ेगा और फिर देश आगे बढ़ेगा। आपकी नजर में किस तरीके का बदलाव आपने देखा है पिछले 10-12 वर्षों में?
1: आयुष्मान जो भारत स्कीम है, इसमें दो पार्ट हैं। पहला है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें जो हेल्थ केयर स्कीम है, प्रिवेंटिव केयर की है, स्क्रीनिंग की है, या मेडिसिन है, या बेसिक डायग्नोस्टिक है, उसकी फैसिलिटी वहां दी जाती है। और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, इसमें जो है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दी जाती है। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो वो जो गरीब या वल्नरेबल पर्सन है उनके लिए पहले उनको रजिस्ट्रेशन किया गया, तो एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वो कैशलेस जो है, जो डेजिग्नेटेड जो पैनल में हॉस्पिटल्स हैं उनमें उनको सुविधा दी जाएगी। दूसरा उसमें अब चेंज किया गया, 70 साल एंड अबो उनके लिए भी 5 लाख रुपए की ये सुविधा दी गई है, उसमें इरेस्पेक्टिव इनकम, उसमें कोई इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, खासतौर से मेडिकल फैसिलिटी में। जैसा हम देखते हैं जो गरीब लोग हैं वो बीमार भी पड़ते ही हैं, लेकिन उनके पास ऐसी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी कि वो किसी तरह से भी हॉस्पिटल जा पाए। तो उनके लिए एक तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुल गए, जहां वो ओपीडी में अपना दिखा सकते हैं, अपना टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, और लगता है अगर उनकी रिकमेंडेशन है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन होना है तो 5 लाख तक का उनके लिए सुविधा कैशलेस फैसिलिटी पर ईयर तक की है। और 70 साल से ऊपर लगे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी है कि उनको भी इसमें जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ी चेंज आई है। उधर आप अटल पेंशन योजना की अभी आपने बात की, जिसमें जो पेंशन की स्कीम है उसमें ऑप्शन है 18 से 40 साल तक के लिए आपने एंट्री लेनी है, उसमें 1000 से 5000 तक की ऑप्शन है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, जो भी आपकी ऑप्शन है उसमें आप जो है उस हिसाब से पेंशन 60 साल के बाद आपको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि अगर डेथ हो जाती है बेनिफिशियरी की तो उसकी स्पाउस को वही सेम पेंशन अगेन स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो भी उसमें एनरोल है तो उसकी अपनी पेंशन भी होगी, मान ली 5000 की हुई है, 5000 की उनको 10000 होनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक बदलाव है। साथ में जैसा अभी बात की थी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2 लाख रुपए तक का आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो सुरक्षा बीमा योजना में आपको 2 लाख तक का, या डिसेबिलिटी, फुल डिसेबिलिटी है तो 2 लाख, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। इसमें जो प्रीमियम है वो बहुत नॉमिनल है, 20 रुपीज सालाना केवल, और 31 मई को कटता है, 1 जून से पॉलिसी शुरू हो जाती है 31 मई के लिए। तो 20 रुपीज के ऊपर 2 लाख रुपए तक का, 20 रुपीज होता ही कितना है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। और आपको अगर डेथ हो जाती है या फुल डिसेबिलिटी होता है 2 लाख रुपए, पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 1 लाख रुपए। और 18 से 70 साल के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें अगर नेचुरल डेथ होती है उसमें 2 लाख रुपए, 436 रुपए सालाना, ओनली 436 रुपीज सालाना देकर आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है। तो और इसमें भी एक कंडीशन रखी गई है कि 18 से 50 साल तक की इसमें एंट्री है, लेकिन अगर आप रिन्यूअल कराते रहते हैं तो 55 साल के बीच में भी अगर डेथ हो जाती है तो भी 2 लाख रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सुधार आया है प्रधानमंत्री 2014 के बाद से, कि खासतौर से हमारी जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, तबके लोग हैं जिनको कुछ भी सुरक्षा की वो नहीं है, उनके लिए पेंशन स्कीम है, एक्सीडेंटल पेंशन स्कीम है, साथ में ये अटल पेंशन योजना होगी, और साथ में उसके बाद आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए तक का आपको मुफ्त में कैशलेस, वो भी आपको जाना है, खाना है, इलाज कराना है और सीधा साइन करके आप वापस घर आ सकते हैं, कोई पैसा, कोई पेमेंट, कुछ नहीं होगी। तो बहुत बड़ा बदलाव आया है खासतौर से 2014 के बाद से।
0: बिल्कुल शिशिर, जैसा अरोड़ा साहब ने बताया कि अगर किसी परिवार में किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो वो परिवार बहुत साल पीछे चला जाता है आर्थिक फ्रंट पर, और अगर वो परिवार निम्न आय वर्ग का हो तो फिर तो और भी मुश्किल खड़ी हो जाती है। इस संदर्भ में अगर देखें तो स्वास्थ्य सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाना इस सरकार की सोच का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथ ही ये देखें कि चेकअप के साथ, इलाज के साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी सरकार का बहुत जोर रहा है। आपने तो कई यूज केस देखे और लगातार आप उस पे स्टडी करते रहते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसने निम्न आय वर्ग

0: के लोगों को खास करके प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी मजबूत किया है, उनकी सोच विकसित की है और उन्हें नए जमाने के हिसाब से अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रेरित किया है।
1: एक बड़ा बदलाव जो 2014 के बाद हमने देखा है वो है जिसको हम लोग कहते हैं कि बॉटम्स अप अप्रोच, टॉप्स डाउन नहीं है। बॉटम्स अप अप्रोच और टॉप्स डाउन अप्रोच अपने श्रोताओं के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आपके पास जमीनी स्तर से सुझाव आते हैं, उस सुझाव के आधार पर आप अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं। और टॉप्स डाउन का मतलब है कि आप ऊपर बैठे, आपने जो फैसला किया नीचे डाल दिया, चाहे नीचे उसकी जरूरत है या नहीं है। आप याद करिए 2015 के बाद जब पहली बार स्वच्छ भारत अभियान की बात की गई थी तो लोगों ने कहा स्वच्छ भारत अभियान क्या है, झाड़ू लगाना है क्या। लेकिन एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि आदमी अगर स्वच्छता से नहीं जीता है तो अर्थव्यवस्था में उस कितने हद तक वो नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम होती है। जब उसकी उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है कि पूरी अर्थव्यवस्था को उसका नुकसान होता है। यही प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। देखिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि साल भर में आप हर साल जाकर के फुल बॉडी चेकअप कराते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में ये भी है कि आप उसके लिए आधार ऐसा तैयार करते हैं कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। तो आपके पास अगर हर, जैसे कहते हैं कि हर विद्यालय में शौचालय की बात की गई, घर में शौचालय की बात की गई या फिर स्वच्छता अभियान चलाया गया, ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप था। उसके बाद भी भाई देखिए बीमारी कोई बता के तो आती नहीं और बीमारी कभी किसी को आ जाती है, तो आपके पास आप एक सुविधा दे दी कि आप आरोग्य मंदिर में जाकर के आप अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए, आपको जो जरूरत है उस हिसाब से इलाज करवा लीजिए। फिर भी अगर आपको इलाज की जरूरत पड़ती है तो आपके पास प्रधानमंत्री जो जय है, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा ले लीजिए। इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको है, जो हमारे निम्न आय वर्ग के, क्योंकि देखिए मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के पास कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, निम्न आय वर्ग के पास विकल्प नहीं के बराबर है,
2: लिमिटेड।
1: अब ऐसी सूरत में अगर हम उनको कहते हैं कि पहले स्वच्छता अभियान में आप आओ, फिर शौचालय की बात आप करो, फिर आप आरोग्य मंदिर जाओ, फिर आप आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो, यानी कि आपके पास कई सुविधाएं दी गई जिससे कि आप बीमारी से बचें, बीमारी हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराएं। तो मुझे लगता है कि ये जो जिसको कहते हैं ना कि बॉटम्स अप अप्रोच है कि जमीनी स्तर पर आपने उन परेशानियों को समझा, उसके हिसाब से आपने क्रमबद्ध तरीके से आपने योजनाएं बनाई और फिर जाकर के समाज के उन हिस्सों को जो सबसे जल्दी प्रभावित हो सकते, सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, उनके लिए आपने काम किया।
0: अरोड़ा साहब, पीएम स्वनिधि की हम बात करेंगे। पीएम स्वनिधि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूर दृष्टि सोच को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, आज हम इसे हकीकत में देख पा रहे हैं। पीएम स्वनिधि ने इस स्थिति में किन बदलावों का प्रयास किया है और कहां तक हम सफल रहे हैं?
3: पीएम स्वनिधि स्कीम जो है जून 2020 से लागू हुई है और इसमें सबसे बड़ा जो है कोलेटरल फ्री जो है वर्किंग कैपिटल मिलता है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। अब इसमें सब है जैसे वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स हैं, फूड स्टॉल्स वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, कोबलर्स हैं, बार्बर हैं, लॉन्ड्री वाले हैं, आर्टिस्टन हैं, ये जो लोग हैं कैसे इनको आर्थिक मदद दी जाए, तो उनके लिए लोन की स्कीम की गई है जिसमें बैंकों द्वारा पहले ट्रांजिट में यानी पहले भाग में उनको 15,000 रुपए, पहले 10,000 रुपए था, अब उसको 15,000 कर दिया गया, 15,000 तक का लोन दे दिया जाता है। और सेकेंड जो भाग में अगर वो 15 अपने रिपेमेंट सही हुई तो उसको 25,000 रुपए तक का लिया जाता है, अगर ये फिर ठीक अपने रिपेमेंट की गई तो उसके बाद उसको 50,000 रुपए का लोन दे दिया जाता है। यानी कि 50,000 तक का लोन रेहड़ी पटरी वालों को, वेजिटेबल को, वेंडर्स को, कोबलर्स को, इनके लिए ये सुविधा है। साथ में इसमें इंटरेस्ट की सब्सिडी भी है और जो 7% इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी जाती है। कोई इसमें प्रोसेसिंग फी नहीं है, कोई कोलेक्टर नहीं मांगेंगे, कोई सिविल नहीं है, तो यानी कि बहुत इजी है कि इनको लोन मिल जाता है। और ये स्कीम अब 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दी है, 2020 से लागू की गई थी, अब ये 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड की गई है और इसके लिए आउटले भी अलग से किया गया, 7,332 करोड़ का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें आउटले रखा गया। तो एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव लाया गया है जो एक कभी ये बैंक की तरफ आ ही नहीं पाते, इन्हें कोई क्रेडिट की सुविधा वो नहीं थी, या वो मनी लेंडर के पास जाते थे जहां 28%, 30%, 40% तक ब्याज मिलता था, आज वो उनको सस्ते दरों पर बैंक से लोन की सुविधा भी हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि उन्हें टाइम से वापस करना पड़ेगा और तभी ये पहली भाग, सेकंड भाग, थर्ड भाग रखा गया कि रिपेमेंट अगर सही है तो हो गया। अब इसके साथ साथ एक नई अभी यूनियन बजट में घोषणा की गई है कि 30,000 तक का जो एक है क्रेडिट कार्ड की वो फैसिलिटी भी इनको दे दी जाएगी। यानी एक कितना बड़ा बदलाव हो गया, उनके जेब में क्रेडिट कार्ड होगा, 30,000 तक का वो अमाउंट जो है जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं और ये रिवॉल्विंग टाइप हुआ, जब चाहे उन पर पैसा है जमा कर दे, उसके बाद फिर 30,000 तक ले लें, यानी एक तरह से एक सुविधा होगी 30,000 रुपए तक का वो कभी भी उसको अपना यूज।
0: बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की पीएम स्वनिधि के बारे में। लेकिन शिशिर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि ये

0: तमाम चीजें हुई हैं और कुछ चुनौतियां भी, जाहिर सी बात है कुछ आप अच्छे काम करेंगे कुछ चुनौतियां भी रहेंगी। डिजिटल वित्तीय व्यवस्था ने, हम सब देख रहे हैं कि जो ये समावेशन है इसको बहुत तेज किया है। आपने शुरू में इस बात का जिक्र भी किया कि अब बैंक जो है घर पर आ गया है, क्योंकि मोबाइल है आपके पास, इंटरनेट है, और मोबाइल तो अब सबके पास है, निम्न आय वर्ग के हों और जनधन आधार मोबाइल होने के नाते सबके पास एक नंबर होना तो जरूरी ही है। लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी, साइबर फ्रॉड और सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी चुनौतियां भी कुछ सामने आई हैं। इससे निपटने के लिए आगे क्या कदम जरूरी है, या लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाने के लिए क्या कुछ और करने की जरूरत है?
1: देखिए, मेरे हिसाब से एक चुनौती तो बहुत बड़ी है, खासतौर पे जो डिजिटल फ्रॉड होते हैं, क्योंकि अचानक आपके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपके बैंक के खाते में गड़बड़ी हुई है या आपका बैंक का खाता अभी कुछ समय के लिए रोका जा रहा है। एक जो व्यक्ति जो कि कम पढ़ा लिखा है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी घबरा जाते हैं। आपने देखा होगा डिजिटल फ्रॉड में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी फंसे हैं।
0: जी जी,
1: तो वो घबराहट तो हो जाती है। अब हमारा काम क्या है, हमने उनको 5-4 प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि आपके पास कोई बैंक आपको फोन करता है तो बैंक आपसे कोई ओटीपी नहीं मांगता, बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता, वो सारी जानकारी एक गोपनीय जानकारी जो कि सिर्फ आपके पास होगी, और जब आप लॉगिन भी करते हैं या आपने अगर आप उसमें कहीं पे आप भी कर रहे होते तो वो एस्टिक्स में होता है, यानी कई लोग देख भी नहीं सकते हैं कि आपने कौन सा उसमें नंबर डाला है। तो हमें इसमें सबसे बड़ी इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता का मेल होना चाहिए। दूसरी चीज हमें ये बताना चाहिए उनको कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है उनको पता है
0: जी,
1: क्या नहीं करना है, अपने ओटीपी शेयर नहीं करना है। हम देखिए आकाशवाणी पर रोज कई बार इस बात का प्रसारण किया जाता है कि कोई व्यक्ति आपको अगर आपसे ओटीपी मांगे तो बिल्कुल ना दे। दूसरा उनको ये बताना है कि बैंक आपके लिए जो सुविधाएं मुहैया करा रहा है उसकी लागत क्या है, क्योंकि उसके ऊपर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं, कई लोग कहते हैं कि ये लागत है और उस तरह की लागत है। तीसरा, बैंक अगर वसूली करना चाहता है वहां पर किस तरीके से आपके पास व्यवस्था है, वहां पर कौन से चीजें आती हैं। तो वित्तीय और डिजिटल साक्षरता अगर आपके पास होगी तो ये सारी योजनाएं जो हमने जिक्र की, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन की बात करें, पीएम स्वनिधि की बात करें, मुद्रा की बात करें, या ऐसी जितनी भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की कामयाबी तभी हो सकती है जब सामने वाला व्यक्ति इस विश्वास के साथ बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ सके कि हमारा कोई नुकसान नहीं हो।
0: अरोड़ा साहब, चलते चलते अब वक्त बहुत कम बचा है, संक्षेप में आप इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय बताना चाहेंगे?
2: पहली बात तो आपको प्रिकॉशन पूरी लेनी है, कोई आपको लिंक नहीं खोलना, अननोन लिंक, कोई ओटीपी नहीं देना, कोई पासवर्ड नहीं देना और पिन नहीं देना किसी को, और अगर मोबाइल चेंज किया है तो मोबाइल बैंक को जरूर इन्फॉर्म करें, और फिर भी अगर फ्रॉड किसी वजह से हो गया है तो नेचुरल है आपके पास ये नंबर है 1930112, या आप रिपोर्टिंग पोर्टल है इनका, उसके ऊपर लॉगिन करें
1: और जल्द से जल्द करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 साल अब जनसेवा को दिए हैं और उनका अनुभव गवर्नेंस के तौर पर और विभिन्न योजनाओं के तौर पर देश के समक्ष है, जिसका लाभ आम जनता उठा रही है। और अगर हम पिछले एक दशक की यात्रा को ही देखें तो वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज सामने आया है। शिशिर सिन्हा और अरोड़ा साहब, आप दोनों का आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद,
4: धन्यवाद, धन्यवाद,
3: नमस्कार।
5: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के छठे संस्करण में अभी आप सुन रहे थे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा और आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
6: अभी आप सुन रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। हम आकाशवाणी अलवर के सर इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
7: 1948 में बनी फिल्म आज की रात से निराशा भरी रातें ढल चुकी थी और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1900

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जंबो जेट लंडन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
3: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
2: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग, रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग।
3: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
2: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
3: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और

0: पावजा भी दिलवाएगा, समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा।

0: पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
1: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
3: ये है जो जितने अच्छे एक्टर हैं, शायद उससे भी ज्यादा अच्छे एक राइटर हैं, और उससे भी ज्यादा अच्छे वे एक डायरेक्टर हैं। आप हैं आदरणीय श्री अनंत महादेवन जी। नमस्कार और स्वागत है विविध भारती के हमारे स्टूडियोज में।
4: नमस्कार, और विविध भारती के सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि अब मुझे उस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। कृपया मुझे जरा धरती पर ही रहने दीजिए और बातचीत शुरू करते हैं।
3: कोशिश तो हम भी करेंगे। ये पूछने के लिए सबसे पहले आपसे कि टेलीविजन और फिल्म से जुड़ने के लिए आपने सपना देखा था, और वो सपने को सच करने के लिए आपने क्या संघर्ष और कितना संघर्ष किया था?
4: आपके जहन में कैसे आई कि मैंने सपना देखा था? लेकिन वाकई मैंने एक सपना देखा था, और जिस वक्त मैं सपना देख रहा था बचपन में, मुझे शायद लगा नहीं कि यह सपना सच होगा। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अगर आप सपने देखते हैं और देखते रहते हैं और उस पर काम करते हैं उन सपनों में, तो वो सपने वाकई साकार होते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है, जहां मैं रहता था कुछ ही कोसों दूर एक बिल्डिंग में, शायद विनोद खन्ना और शशि कपूर जी की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, तो मैंने अपने दोस्त से एक बहुत ही पावरफुल बाइनोक्यूलर्स लिए, और उस बाइनोक्यूलर के थ्रू मैं वो शूटिंग देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। और उस रात को मैंने एक सपना देखा कि मैं एक शूटिंग में हूं, मैं परफॉर्म कर रहा हूं। सुबह जब उठा तो वो सपना एकदम सुबह के किरणों में खो गया था, लेकिन उस वक्त से मैंने सपना देखना शुरू किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, मुझे एक एंटरटेनर बनना है, मुझे लोगों को एंटरटेन करना है। और शायद तभी से स्कूल के जमाने से, कॉलेज में जितने प्लेज किए हैं, इंटर स्कूल इंटर कॉलेजिएट थिएटर कॉम्पिटिशन्स में भाग लिए हैं, तब से ये सपना आहिस्ता आहिस्ता साकार होने लगा। और अब भी मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरी तरह से साकार हुआ है, लेकिन वो स्ट्रगल जारी है, और अब भी मैं सपना देखता हूँ कि एक दिन जाके ये पूरी तरह साकार हो और मैं पूरी तरह एक एक्टर बनूं, पूरी तरह एक राइटर या डायरेक्टर बनूं, और उतना अच्छा बनूं जितना आपने मुझे बताया है।
3: आपने अभी भी कहा कि आपने थिएटर किया है, तो पहले तो शौकिया आप करते थे और उसके बाद में आप प्रोफेशनल थिएटर में जुड़े।
4: जी,
3: तो शुरुआत यानी आपकी थिएटर से हुई है?
4: जी हाँ, बिकॉज थिएटर जो है जो वो सबसे आसान माध्यम है परफॉर्मर के लिए, क्योंकि वहां ना आपको किसी के पास जाना पड़ता है, ना किसी के ऑफिस में जाने की जरूरत है और रोल मांगने की जरूरत है। आप खुद ही एक वन मैन शो कर सकते हैं, और ये वन मैन या वन चाइल्ड शो मैंने शुरू किया था स्कूल के जमाने से। जब हम किंडरगार्टन में थे तो 2-3 ब्लॉक्स पर मैं खड़ा हो गया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, और बच्चों को कहानियां सुनाने लगा, और ऐसी कहानियां सुनाने लगा जो मुझे खुद एक आश्चर्य हुआ कि ये मेरे दिमाग में कहां से आई। और वहीं से ये एक जर्नी जैसा शुरू हुआ, ये जर्नी जो जिसके बीचों बीच में हूं इस वक्त, और इसकी मंजिल बहुत दूर है। थिएटर से टेलीविजन, टेलीविजन से फिल्म्स, इन तीनों का संगम मैं जोड़ कर रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी मैं थिएटर भी करूं, जो मेरे रूट्स हैं, टेलीविजन जो थिएटर और फिल्मों के बीच में है, और फिल्म जो है जो लार्जर देन लाइफ है, बहुत बड़े पर्दे पर जो हम निभाते हैं, तो इन तीनों का एक गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम है, और उस संगम के बीचों बीच में हूं इस वक्त।
3: वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। आजकल जो आप कर रहे हैं

0: उसके बीच में आपको थिएटर के लिए तो काफी कम समय मिल पाता होगा।
1: अफसोस, मैं चाहूंगा कि मैं और थिएटर करूं, वक्त निकालूं। ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं है, अगर आदमी वक्त निकालना चाहता है तो किसी भी चीज के लिए वक्त मिल जाता है, लेकिन मैं वक्त निकाल नहीं पा रहा हूं इस वक्त। वो मेरी कमजोरी है और मैं चाहूंगा कि अगले साल मैं एक अच्छा प्रोडक्शन करूं, एक और प्ले करूं। मैंने अब तक करीबन 30 प्रोडक्शंस किए हैं, कुछ 3,000 परफॉर्मेंसेस किए हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाऊं और एक और प्रोडक्शन करूं। मैं बस इसी के इंतजार में हूं कि एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले मुझे और वहीं से मैं एक और प्रोडक्शन की शुरुआत करूं।
0: अनंत जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी रंगमंच का क्या भविष्य है? हम देखते हैं बंबई में खास तौर पर मराठी, अंग्रेजी और गुजराती रंगमंच को दर्शक ज्यादा अहमियत देते हैं। हिंदी रंगमंच थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पिछले बैक सीट ले रहा है, ऐसा क्यों है?
1: ये बहुत सही बात कही आपने। हिंदी में अगर आप, मैं संक्षेप में बताऊं तो लेखक बहुत कम हैं। कितने प्लेज हैं जो ओरिजिनल हिंदी प्लेज कह सकते हैं आप? ये जितने प्रोडक्शंस मैंने किए हैं उसमें ज्यादातर बादल सरकार के प्लेज थे, विजय तेंदुलकर के प्लेज थे, आर्थर मिलर के अडेप्टेड प्लेज थे, शेक्सपियर के प्लेज थे। हिंदी में शायद मैंने सिर्फ मोहन राकेश का प्ले किया। मुझे हिंदी लेखकों के नाम भी याद नहीं जितने हैं, मैं कहा बहुत सारे हैं जो अच्छे प्लेज लिखते हैं, तो एक मोहन राकेश को हम चुन सकते हैं, गिन सकते हैं उसमें। बाकी सब एडेप्टेड प्लेज हैं। और जहाँ तक गुजराती और मराठी प्लेज का सवाल है, वहाँ भी वो कमर्शियली बहुत सक्सेसफुल हो गए हैं। हिंदी में चूंकि हमारे पास टेलीविजन है, हिंदी फिल्में हैं, तो बहुत सारे ऑडियंसेस हिंदी प्लेज नहीं देखना चाहते हैं, अफसोस। लेकिन मराठी जो प्लेज हैं और गुजराती प्लेज, जो रीजनल थिएटर है, वो ज्यादातर फॉरेन फिल्म से या फॉरेन प्लेज से ही अडेप्टेशंस हैं, अगर आप उसमें झांक के देखे तो कि ओरिजिनल कहाँ से आए। फिर भी वो चलते हैं क्योंकि वो एक कमर्शियल लेवल पर किया गया है। जैसे अंग्रेजी प्लेज हैं, जो इंग्लिश प्लेज यहाँ चलते हैं, वो भी हिंदी से कहीं बेहतर चलते हैं, वो सब प्रोसीनियम थिएटर में होते हैं। हिंदी प्लेज ज्यादातर हमको एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर में ही करना पड़ता है, जैसे बंबई में पृथ्वी और एनसीपी है, या श्रीराम सेंटर है दिल्ली में, या भोपाल में अपनी रेपरेटरी है। उसके अलावा कहाँ आपकी हिम्मत नहीं होती किसी प्रोसीनियम थिएटर में जाके हिंदी प्ले करने की, क्योंकि वहां 19-20 लोग बैठे रहते हैं। हमने एक प्ले किया था आला अफसर, जो इंस्पेक्टर गोगोल के इंस्पेक्टर जनरल पर आधारित था, एक नौटंकी, पृथ्वी थिएटर में किया हमने, पूरा म्यूजिकल स्टाइल में था। 300 लोग थे, 200 अंदर 100 बाहर। तो हमने सोचा कि शायद हम ये प्ले एक बड़े मंच पे ले जाएं, प्रसीनियम पे ले जाएं, भाईदास में ले गए और वहां सिर्फ 200 लोग थे और पूरा थिएटर खाली था। सो आप सोच सकते हैं कि कितने लिमिटेशंस हैं हिंदी थिएटर के लिए। इसके बावजूद कुछ लोग हिंदी थिएटर से जुड़े हुए हैं, जुटे हुए हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिले, गवर्नमेंट से भी ग्रांट्स मिलते हैं, और हिंदी थिएटर को जिंदा रखने के लिए पूरी कोशिश रहेगी।
0: चलिए अभी एक और कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके पसंद का गीत हम सुनने वालों को सुनाना चाहेंगे।
1: जी हाँ, मैं चाहूंगा कि सुनने वाले भी कुछ ब्रेक ले मेरी इस बकबक से, और एक मैं खामोशी से बैठा रहूं और वो खामोशी का ये गाना सुने।

0: आनंद जी, इतना खूबसूरत सा गीत आपने हमारे सुनने वालों को सुनाया। अब बहुत सी और बातें हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपसे इस मोड़ पर ये जानना चाहूंगी कि आपने एक बहुत ही अविस्मरणीय भूमिका अदा की थी टेलीविजन सीरियल टीपू सुल्तान, और भूमिका थी पूर्णैया। तो इस तरह की ऐतिहासिक भूमिका करने के लिए जो जिसके हर श्रोता के, हर दर्शकों के दिलो दिमाग में छा जाती है, आपकी क्या तैयारी रहती है?
1: पूरी तैयारी थी, यहाँ तक कि मौत से लड़ने की भी तैयारी थी। क्योंकि जिस वक्त हम पूर्णैया पंडित करने गए थे, हमारी नौकरी सब छोड़ छाड़ के कि बस ये एक रोल ऑफ अ लाइफ टाइम है, टीपू सुल्तान, द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान सीरियल बन रही है, चले हम मैसूर प्रीमियर स्टूडियोज में। और उस शाम को तकरीबन 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ जब मैं गेट से बाहर गया, वापस आया तो लाशों की ढेर थी वहां, आग लग गई थी। और उन यादों को लेकर हम बंबई आए। शायद ये सीरियल कभी नहीं बन पाएगा ये सोच के। बाद में अकबर खान ने फिर से इस सीरियल को शुरू किया, और हम कर भी क्या सकते थे। एक सीरियल बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि कम से कम उन लोगों की याद में जिनकी जानें चली गई उस फायर में, उस आग में। तो हम जयपुर गए फिर, और जयपुर में एक बार फिर जुट गए इस सीरियल पर। और तब एक एहसास हुआ कि ये रोल कितना इम्पोर्टेंट है। और सीरियल खत्म होने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसे रोल्स
0: बार बार नहीं आते,
1: और ऐसे कैरेक्टर्स बार बार नहीं आते। क्योंकि पूर्णैया जो है, शायद एक ही किरदार है उस पूरे सीरियल में जो टीपू के वालिद के वक्त से, हैदर अली के वक्त से, टीपू के जमाने में, और फिर उनके बच्चों के साथ भी था। जो 3 पीढ़ियां हैं, 3 जनरेशंस के साथ ये एक चाणक्य जैसा कैरेक्टर बन के रह गया था। तो शायद एक वक्त में वो टीपू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया था उस सीरियल में। तो ये करने में बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने काफी बुक्स पढ़े पूर्णैया के बारे में, कई स्केचेस देखे कि पूर्णैया दिखता कैसा है। हमें अफसोस था कि हम ये नहीं देख पाए कि वो चलता कैसा है, बोलता कैसा है। क्योंकि ज्यादातर ऐतिहासिक किरदारों के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी की बहुत सारे लम्हे हमारे पास नहीं है। तो हम उसको कैसे निभाएंगे, कैसे बोला होगा इस आदमी ने, कैसे खड़ा होगा इस आदमी, कैसे कुछ बात, हाथ के जेस्चर्स कैसे किया होगा। तो जितना हम सच के पास जा सकते थे उतना हमने कोशिश की उसमें। पता नहीं हमने सही की या गलत, लेकिन जो रिस्पॉन्स था ऑडियंस का, तो हो सकता है हमने तकरीबन ठीक ही किया होगा। और टीपू की बहुत यादें हैं, उस सीरियल की बहुत

0: पड़े हैं, और इस वक्त मैं संजय खान की हिम्मत की दाद देना चाहूँगा कि जो आदमी उस आग से गुजरकर टीपू सुल्तान बनकर एक जिंदगी की लड़ाई लड़ी, उस आदमी को मैं बहुत बहुत सल्यूट करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी, आपने टेलीविजन सीरियल के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया, छोटे पर्दे और बड़े पर्दे का एक समन्वय आपने बनाए रखा
0: जी।
1: तो क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या फिर इनमें बहुत अंतर होता है काम करने के तरीके में?
0: अंतर मैं कहूंगा, एक एक उदाहरण देता हूं आपको
1: जी।
0: अगर आप कहेंगे कि फिल्म जो है वो लार्जर देन लाइफ है, जिंदगी से बड़ी है, टेलीविजन जो है स्मॉलर देन लाइफ है, जिंदगी से छोटी है,
1: अच्छा,
0: और थिएटर जो है वो लाइफ लाइक है।
1: बहुत खूबसूरत बात है।
0: फिल्म जो है हमको बड़ा चढ़ा के ही बताना पड़ता है, क्योंकि जो पर्दा है वो 70 mm स्क्रीन जो है, जिस वक्त आप अपने आप को देखते हैं और इतने बड़े लगते हैं आप स्क्रीन पर, तो आपको लगता है कि आप जिंदगी से बहुत बड़े हो गए हैं। उसमें जो सिचुएशंस हैं जिंदगी से बड़े हैं। टेलीविजन पे हमें मौका मिलता है थिएटर के पास पास रहने की, जो किरदार है बहुत ही रियल हैं, जिंदगी के करीब हैं, फिल्मों के करीब नहीं, तो वहां एक्सपेरिमेंट करने का मौका हमें बहुत मिलता है। फिल्मों में कैरेक्टर्स जो हैं बहुत, कम से कम हमारे हिंदी फिल्मों में, बहुत दुख होता है ये कहते हुए, लेकिन बहुत कंट्राइव्ड होते हैं, बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं, मास ओरिएंटेड होते हैं। वहां कुछ चीजें, कुछ लाइनें इतनी फेमस हो गए हैं कि आपको उसी तरह से बोलना है, आपको रोना है तो बहुत फूट फूट के रोना है।
1: अच्छा।
0: आपकी आंखें अगर नम हो गई हो तो वो रोना नहीं कहते, तो लोग कहते हैं कि ये क्या एक्टिंग है, इन्होंने कुछ एक्टिंग ही नहीं की है। तो वहां कुछ जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। टेलीविजन पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थिएटर में और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इसीलिए जो रियल सेटिस्फैक्शन जो कहते हैं वो आपको थिएटर में मिलता है, थोड़ा बहुत टेलीविजन से, लेकिन फिल्मों में आपको जो पॉपुलैरिटी हासिल होती है वो शायद टेलीविजन और थिएटर से नहीं होता है। तो हर एक क्षेत्र में अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, जो आपको उस तरह से आपको अपने आप को उसमें ढालना होता है।
1: फिल्में तो आपने खैर की हैं, बाजीगर, खिलाड़ी, चांदनी, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत, या तो कहें कि क्वांटम में, वॉल्यूम में आपने बहुत ज्यादा नहीं की हैं, आपको क्या आपने मनमाफिक किरदार नहीं मिले हैं, रोल नहीं मिले हैं, या आप उसमें अपनी लिमिटेशंस की, नहीं मैं थोड़ी ही फिल्में करूंगा?
0: क्योंकि दोनों बातें सही हैं। मैं जिस तरह के रोल्स चाहता हूं शायद मुझे नहीं मिले, जिस तरह के रोल्स में थिएटर और टेलीविजन में कर चुका हूं उस तरह के रोल्स नहीं मिले। ये अमूमन लोगों, फिल्म के डायरेक्टरों की आदत है कि आप टेलीविजन के अच्छे एक्टर्स को लेके वहां एक छोटे से रोल में ले लो, वहां खड़ा कर दो, क्योंकि एक छोटे से रोल में भी परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत होती है। तो मैंने कुछ अच्छी फिल्में की है। गर्दिश एक बहुत अच्छी फिल्म थी, प्रियदर्शन की फिल्म थी वो। अब्बास मस्तान के साथ मेरा एक बहुत अच्छा संबंध है, इसीलिए बाजीगर, बादशाह और खिलाड़ी जैसे फिल्में की मैंने उनके साथ, और खिलाड़ी में उन्होंने ये हिम्मत भी की, अनंत महादेवन जैसे एक बहुत ही साधारण चेहरा, एक किरदार को लेके उन्होंने मेन विलन बनाया।
1: हाँ।
0: तो ऐसे दिलेर डायरेक्टरों की जरूरत है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स की जरूरत है जिसमें फिल्मों में काम करने का मजा भी आए, तब तक मुझे इस तरह चुन चुन के ही काम करना पड़ेगा।
1: वो विलन का रोल करते हुए आपको मजा आया होगा या आपको लगा रहे मैं काम फंस गया?
0: नहीं, फंसे तो वो थे ना। अच्छा। जो दूसरे कैरेक्टर थे, मजा तो बहुत आया, क्योंकि विलन की जो साइकी है, जो हाँ। उसके मन में आप अगर घुस के देखें, उनके दिमाग में अगर आप घुस के देखें, तो आपको वाकई उस पर काम करना पड़ता है, क्योंकि मैं रियल लाइफ में विलन नहीं हूँ। अगर मैं ये बात कह सकता हूँ, लेकिन विलन्स के जो थिंकिंग है, जो उनकी जो सोच है, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। तो अगर उस पर आपको काम करना है और बहुत ही साधारण आदमी बनके आप विलन हैं एंड में, तो आपको क्या करना होगा, उसमें काम करने का बहुत मजा आया।
1: चलिए आगे भी हम मजा लूट रहे हैं एक गीत के साथ।
0: हाँ, बारिश का मौसम तो नहीं है, लेकिन

0: एक गाना है बारिश पर, जो मंजिल फिल्म का है, रिमझिम गिरे सावन, वो गीत मैं सुनने वालों को सुनाता।
1: वाह, बहुत खूबसूरत गीत है।

0: अनंत जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप डायरेक्टर, एक्टर और राइटर तीनों हैं, तो इन तीनों विधाओं में से अगर आपको कोई भी एक चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे?
1: ये तो बहुत मुश्किल सवाल किया आपने। मैं तो डायरेक्शन, एक्टिंग और राइटिंग को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। बहुत सिंपल है ये बात। अगर आप अपने आप को देखेंगे, आपका जो सर है, जो सोच है, दिमाग है, उसे मैं डायरेक्टर मानता हूँ। आपका जो फिजिक है, बॉडी है, उसे आप एक्टर मानिए, और आपके हाथ जो है वो लेखक है, लिखते हैं, वो राइटर मानिए। तो आप अपने हाथ, बॉडी और सर को एक दूसरे से अलग तो नहीं कर सकते ना।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
1: हाँ, अगर आप सीधी तरह इसका जवाब चाहती हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर रोल बहुत अच्छा है तो मैं जरूर एक्टिंग करना चाहूंगा। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप लिखना भी चाहते हैं और जो जिस तरह से आप उसको बनाना भी चाहते हैं, जिसमें डायरेक्टर बनना बहुत जरूरी है कि राइट फ्रॉम पिन टू पियानो जो है, राइटिंग से लेके एडिटिंग और पूरी तरह से आपको काम करना है। कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिस पर आप डायरेक्टर का रोल निभाना चाहेंगे, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जिसमें सिर्फ आप एक्टिंग करना चाहेंगे। उस हिसाब से मैं चुन लेता हूं और उस हिसाब से मैं अपने आप को

0: एक्टर पाता हूँ या डायरेक्टर पाता हूँ।
1: अनंत जी, आपको अपना सबसे पहला शॉट निर्देशक के रूप में, जब आपने लाइट्स, कैमरा, एक्शन और डायरेक्टर्स कट जिसे कहते हैं, कहा था, आपको याद है?
0: जी हाँ, वो घड़ी तो कोई भी डायरेक्टर नहीं भूल सकता। एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी, उसका नाम था संबंध। ये उन दिनों में मैंने बनाई थी जब ये पंजाब में काफी हंगामा हो रहा था, और मेरी खुशकिस्मती थी कि जो स्क्रिप्ट उस फिल्म की थी वो डॉक्टर राही मासूम रजा ने लिखी थी, और उस वक्त हम दिल्ली में थे, और ये कहानी उस आदमी की कहानी है जो पंजाब से भागकर दिल्ली आ जाता है, उसकी फैक्ट्री सब कुछ शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, और उसकी जो फैमिली है, परिवार है, वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी फैक्ट्री नहीं है, हमारी जो रूट्स हैं यहाँ पंजाब में है और हम यहीं रहेंगे। और राय साहब ने एक बहुत खूबसूरत डायलॉग लिखा था उसमें कि ये आदमी फिर जाग जाता है और कहता है कि ठीक है, उनकी गोलियां हैं और हमारी छातियां हैं, देखते हैं किस में ज्यादा दम है। और मैंने कहा, राय साहब ये तो बहुत ही डेंजरस डायलॉग है, ये तो कट जाएगा। नहीं बेटा, आप करो ना इसको आप। और वाकई वो जो टेलीफिल्म थी वो इतनी अप्रिशिएट की गई। बस उसमें एक बहुत ही हैप्पी एंडिंग था, जिस वक्त ये चल रहा था, ये प्रॉब्लम, पंजाब का प्रॉब्लम चल रहा था, उस वक्त शायद लोगों को लगा कि ये जो फिल्म है वो एक फेरी टेल एंडिंग है, यूटोपियन एंडिंग है, ये कभी हो नहीं सकता, ये जो हैप्पी एंडिंग आपने दिया। और आज मैं खुश हूँ कि जो एंडिंग है वो एकदम फ्यूचरिस्टिक एंडिंग था, और इस वक्त पंजाब इज एब्सोल्युटली पीसफुल। तो दिल्ली में वो जो हमने ये टेलीफिल्म बनाई, उस वक्त एक लॉन पे मैंने एक शॉट लिया था, जब उसके जो मेन किरदार चाय और कॉफी लेके बाहर आते हैं और एक कैरेक्टर से मिलते हैं, और तभी मैंने शायद पहली बार एक्शन और कट कहा। तो दिल्ली से शुरू हुई वो कहानी और अब मुंबई में है।
1: अच्छा, सीरियल और टेलीफिल्म बनाते समय आप दर्शकों का जो टेस्ट है वो ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने प्रोड्यूसर का नजरिया ध्यान में रखते हैं, या खुद की जो थिंकिंग है, एक सोच है, उसको पर्दे पर लाने की कोशिश करते हैं?
0: खुद की थिंकिंग और सोच तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ दूसरों के टेस्ट के हिसाब से जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो बना नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ बहुत जरूरी है कि जो आप सोचते हैं, जो आप बनाते हैं, वो एक ऑडियंस के लिए बनाएं।
2: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेलुलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं टेलीविजन और फिल्मों के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत।
0: आप यहाँ इस देश में रहकर ऐसा कुछ नहीं बना सकते जो ऑडियंस के सोच के ऊपर हो, तो आपको थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और मैं वहां तक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता कि आप मैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर एकदम ऐसे कुछ चीज बनाओ जो मेरी पसंद का नहीं हो, मेरी टेस्ट का नहीं हो, और साथ साथ वो भी नहीं बनाओ जो ऑडियंस को समझ में आए। तो कहीं बीच में एक बैलेंस यहाँ मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो फिल्म मेकर्स जैसे बिमल रॉय थे, बासु चैटर्जी साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, जिनके साथ मैं एक शायद फिल्म करूंगा अभी उनके साथ साथ, ये दोनों टेस्ट को दिमाग और मन में रख के उनकी जो फिल्म थी, जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा हम कहते थे, जो बहुत हेल्दी होलसम एंटरटेनमेंट ये लोग बनाते थे, ये ऐसी फिल्में बनाना बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस को भी पसंद आए और आपको भी ऐसा न लगे कि आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया।
1: जी, कौन सी सीरियल थी जिसे आपको लगा कि आपने सभी चीजों को एक समान रूप से अहमियत दी है?
0: एक सीरियल घर जमाई मैंने बनाया था।
1: जी,
0: घर जमाई में एक साउथ इंडियन जो दामाद है वो पंजाब के एक पंजाबी घर में एक लड़की के साथ उनकी शादी हो जाती है, और ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं उस पर हमने बनाए थी सीरियल, और इसमें बहुत मजा आया क्योंकि इसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन जैसा था कि पंजाब नॉर्थ और साउथ को मिक्स करके जो टेस्ट से कुछ लोग कुछ टेस्ट के खिलाफ हैं, जैसे पंजाबी जो हैं वो डोसा नहीं खा

0: खाना चाहते हैं और जो साउथ इंडियन है वो ढाबे में नहीं जाना चाहता है. तो ये जो क्लैश ऑफ कल्चर्स हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उसमें काम करने का बहुत मजा आया. और वहाँ मुझे लगा कि मैं वाकई एक ऑडियंस को रीच आउट कर रहा हूँ और हमारे ऑडियंसेस जो हैं इस तरह की बातें पसंद भी करते हैं. तो घर जमाई में बहुत मजा आया, और भी काफी सीरियल्स थे लेकिन शायद इसमें जो मजा आया वो दूसरों में नहीं.
1: चलिए अब आगे बढ़े, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का एक और गाना.
0: ये कोहरा का गाना है, ये नयन डरे डरे, हेमंदा का गाया हुआ.
1: वाह.

0: आनंद जी, अभी थोड़ी देर पहले गीत सुनने से पहले आपने अपनी सीरियल, कॉमेडी सीरियल घर जमाई की बात कही। इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हुए हैं और अमूमन आम आदमी अगर आपको देखे तो आप बहुत ही सीरियस और एक इंटेलेक्चुअल किस्म के इंसान नजर आते हैं। क्या आपके नेचर में है, आपके स्वभाव में है सीरियसपन, कि आपने ये ऑपोजिट कैसे हो गया है कि आपने एक कॉमेडी सीरियल, अभी हाल फिलहाल की सीरियल है आपकी अलविदा डार्लिंग जो बहुत ही मशहूर हो रही है।
1: जी हाँ, पता नहीं, वो कहते हैं ना कि जो आदमी शायद अंदर से उदास है वो हंसता ज्यादा है, वो ज्यादा मजाक करता है, वो आदमी शायद उसे बाहर निकालने के लिए एक एस्केप रूट चाहिए। आदमी सीरियस होता है वो शायद सबसे बढ़िया कॉमेडी वही कर सकता है। चैपलिन की फिल्में अगर आप देखेंगी

0: सीरियस होते थे, वो ट्रेजिक थे वो सारे कैरेक्टर्स। वहाँ के जो कैरेक्टर्स थे उसमें आपको सबसे ज़्यादा हंसा। तो कॉमेडी हमेशा ट्रेजेडी में छुपी रही, ऐसा मेरा कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सोशल सीरियल आपको बनाने का मौका मिले तो आपको वो ज्यादा आसान लगेगा या कॉमेडी ज्यादा आसान लगेगी?
0: नहीं, मुझे सोशल सीरियल्स बहुत ही आसान लगते हैं, उसमें सिर्फ रोना है और सब रोते हैं आपके साथ। लेकिन जब आप कॉमेडी सीरियल बनाते हैं, अगर आप हंसते हैं ये जरूरी नहीं कि दूसरे भी आपके साथ हंसे, क्योंकि जो आपके लिए लतीफा हो दूसरों के लिए लतीफा होना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब आप रोते हैं तो सब रोते हैं आपके साथ।
1: बिल्कुल।
0: तो सोशल सीरियल बनाना बहुत ही आसान है, कॉमेडी सीरियल बनाना बहुत मुश्किल है।
1: बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको डायरेक्शन ज्यादा आसान लगता है या फिर एक्टिंग? आराम से जाएं सेट पर, मेकअप लगाएं और शुरू हो जाएं एक्टिंग करना।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: या फिर पूरी जिम्मेदारी बोझ पर
0: डायरेक्शन
1: पर...
0: के बाद मुझे तो एक्टिंग एक पिकनिक लगता है कि आप जाएं, अपने लाइंस बोले और घर जाएं। आपको ये फिक्र नहीं है कि एक्टर सेट पे टाइम पे आया है, आपने अपना शॉट लिया है, आप ये एपिसोड या फिल्म कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे, रिलीज होंगे, क्या होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल आसान, हमेशा एक्टर का काम बहुत आसान होता है।
1: अच्छा ये बताइए कि फिल्मों में, फिल्मों की तरह हमारी सीरियल्स में संगीत को इतना महत्व, गीत और संगीत को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, जबकि हमारी भारत की संस्कृति ही गीत और संगीत पर चलती है, ऐसा क्यों है?
0: नहीं, जितना महत्व हम फिल्मों में संगीत को देते हैं वो कुछ ज्यादा ही है, तो ज्यादा को कम करने के लिए हम सीरियल्स में नहीं करते हैं। जितना महत्व देना है वो फिल्म में हमको दिखाई देता है, फिल्म में मजा आता है, और जहां हमको एक गाना होता है वहां 6 गाने मिलते हैं, तो हम टेलीविजन पे क्यों करें, टेलीविजन को फिल्म क्यों बनाए हम
1: जी?
0: इसलिए जो है वो सही है और वैसे ही रहने दीजिए, वरना आपको हर सीरियल में 6-6 गाने मिलेंगे और उठ के जाएंगे आप, टेलीविजन बंद कर देंगे।
1: इसलिए क्या टेलीविजन के सिर्फ टाइटल सॉन्ग पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि टाइटल सॉन्ग बेस्ट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ?
0: जी हाँ, टाइटल सॉन्ग से उस सब्जेक्ट का एक मूड भी बनता है, और जिस तरह से फॉर्मूला फिल्म्स में है वो फॉर्मूला हम टेलीविजन में नहीं रखते हैं। टेलीविजन में कहानियां होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, हीरो हीरोइन नहीं होते हैं, वो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जो टेलीविजन का फॉर्मेट ही अलग है। और वो बिल्कुल सही है कि आप टेलीविजन को फिल्म की तरह ना करें, टेलीविजन को टेलीविजन की तरह करें।
1: अच्छा आजकल एक चैनलों की एक बाढ़ सी आ गई है, जिसे देखो हर कोई जो जिनके पास पैसे हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि अपने अपने चैनल्स खोलें। तो क्या इतने सारे चैनलों के आने की वजह से दर्शकों को हम अच्छा मनोरंजन दे पाएंगे, या फिर जो हम परोसेंगे दर्शक वही ले लेंगे?
0: एक जमाना था जब हमारे पास सिर्फ दूरदर्शन था, और जो दूरदर्शन ने परोसा वो हमने लिया, लेकिन उसका फायदा यह भी था कि जो भी हमने दूरदर्शन में किया वो लोगों ने देखा और हमें फीडबैक मिला। अब इस वक्त इतने चैनल्स हो गए हैं कि हमें सिर्फ हमारा काम करना पड़ता है, हमें ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हमारे सीरियल्स लोग देखेंगे और हमें उसका फीडबैक मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि उनको चॉइस बहुत मिल गया है। अगर इस वक्त आप बहुत ही बेहतरीन चीज नहीं बनाएंगे तो ऑडियंस उस चीज को नहीं देखेगी, फिर ऑडियंस के पास चॉइस है, उसके पास रिमोट है, वो चैनल स्विच करेंगे, जो अच्छे सीरियल्स उनको अच्छा लगेगा वो देखेंगे, जो अगर आपका 19 भी हो तो ऑडियंस वो सीरियल नहीं देखेगी। तो इस वक्त कंपटीशन बढ़ गया है, एक तरह से क्वालिटी में बहुत फर्क आया है, और अब लोग चाहते हैं कि क्वालिटी कॉन्शियस हो और अच्छे सीरियल्स बने, क्योंकि 100 चैनल्स में से आपको ऑडियंस की जो अटेंशन है आपकी तरफ डाइवर्ट करना है, तो आपका काम बहुत मुश्किल हो गया है, और एक तरह से सीरियल्स के लिए अच्छा भी है क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस हो गए हैं वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस मुद्दे पर हम थोड़ा सा आगे और बातें करते हैं, उससे पहले सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: अभी अभी हम हंसने की बात कर रहे थे और ट्रेजेडी में जो कॉमेडी छुपी हुई है, तो वो गाना याद आया मुझे कि हंसने की चाह ने कितना मुझे रुलाया है, आविष्कार फिल्म से।

0: आनंद जी, ये तो बातें हो गई हमारी टेलीविजन की, टेलीविजन से जुड़े उन पर देखी जाने वाले सीरियल्स की। हम इस वक्त बैठे हैं विविध भारती के स्टूडियो में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि रेडियो का भी आज के दिनों में, आज के युग में इस था कि आप बड़े हुए ही हैं विविध भारती पर गीत सुनते हुए।
1: जी हाँ, ये क्या है, एक दौर आता है हर बार जब थिएटर के बाद फिल्में आईं, तो फिल्मों की पॉपुलैरिटी से थिएटर आहिस्ता आहिस्ता थिएटर बंद होने लगा, फिल्में पॉपुलर होने लगे। फिल्मों के बाद जब वीडियो आया तो फिल्में देखने कोई नहीं गए, सब घर पे बैठ के वीडियो देख रहे थे। वीडियो के बाद जब डीवीडी आए तो वीडियो चला गया, वीडियो पार्लर्स बंद हो गया, सब डीवीडी के पास चले गए। लेकिन इस वक्त जिस तरह के फिल्में बनती हैं वो फिल्में सिर्फ थिएटर में देखा जाता है, जिस तरह के प्लेज होते हैं, नाटक होते हैं, वो थिएटर में लोग जाकर देखते हैं। और मैं जिस तरह के जो पेपर्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, अखबारें जो हैं, जो वो डर रहे थे कि जो न्यूज़ टेलीविजन पे आएंगे तो अखबार बंद हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अखबार अपनी जगह पे है, टेलीविजन अपनी जगह पे है, और रेडियो जो है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रेडियो भी अपनी जगह है। हमें शायद लगता है कि टेलीविजन के आने से रेडियो कम लोग सुनते हैं और रेडियो का महत्व जो है जो अब नहीं रहा, नहीं, वो सही बात नहीं है। रेडियो का भी महत्व है, इसीलिए आप और हम यहाँ बैठे हैं,
0: बिल्कुल
1: हमारे सुनने वालों से बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम

0: रहे होंगे, क्योंकि बचपन से जो हम सुनते आए हैं रेडियो, उस रेडियो को हम इस तरह टुकड़ा तो नहीं सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा।
0: रेडियो के साथ रहेंगे और रेडियो के बहुत पास रहेंगे।
1: बिल्कुल, इस वक्त हमारे श्रोता भी पास आ गए हैं और मांग कर रहे हैं कि आप उनको अगला गीत सुनाएं।
0: ठहरिए ठहरिए, जरा होश में जो आऊं। नहीं, मेरा मतलब है कि ठहरिए, होश में आऊं, गाना है।
1: ओह अच्छा, बहुत खूबसूरत।

0: आनंद जी, हम इतनी देर से आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमें, हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं। मैं तब से बहुत ही बेचैन हूँ, बेकरार हूँ ये जानने के लिए कि आपकी मातृभाषा तो दक्षिण भारत के, मतलब आप रहने वाले हैं
1: जी,
0: तो जाहिर है आप दक्षिण भारतीय भाषा ही बोलते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है?
1: किसने कहा आपसे कि मेरी हिंदी अच्छी है? अब आप ये इंटरव्यू एक बार प्लेबैक करके देखिए, कितनी गलतियां आपको मिलेगी वो सिर्फ मैं जानता हूँ। नहीं, ये हिंदी थिएटर की देन है
0: जी।
1: मैं बंबई में रह के हिंदी थिएटर किया, और जब स्कूल में, जब हमारे थर्ड स्टैंडर्ड पे जब हिंदी एक सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया, मैंने हिंदी को बहुत सीरियस ले लिया। ऐसे नहीं कि सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे उसे डिसमिस नहीं किया, उसे बहुत सीरियसली लिया। और शायद इसी की वजह से मैं आज ये जितना भी साफ

0: बोल लेता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, और हिंदी थिएटर की वजह से, और मैं हिंदी थिएटर के बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मेरी हिंदी कुछ ठीक ठाक है।
1: अच्छा, आप जब आप काम नहीं करते, एक्टिंग नहीं करते, डायरेक्शन नहीं करते, या फिर कुछ लिखते नहीं है, आप क्या करते हैं?
0: हाँ, संगीत में
1: रुचि है?
0: रुचि है, बहुत रुचि है। संगीत, कुछ गाने गुनगुना लेता हूँ, गाने सुनता हूँ। फिल्में बहुत देखता हूँ मैं, क्योंकि वो मेरा फील्ड है, तो देखना बहुत ज़रूरी है। एक एकेडमिक इंटरेस्ट है फिल्में देखना, और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश फिल्में नहीं, दुनिया के सारे फिल्में देखता हूँ। जैसे इटालियन फिल्में देखता हूँ, पोलिश फिल्में देखता हूँ, चेकोस्लोवाकियन फिल्में देखता हूँ, हंगेरियन फिल्में देखता हूँ, क्योंकि वहाँ की जो फिल्में हैं वो जिंदगी से ज़्यादा जुड़ी हुई है। हिंदी और अमेरिकन फिल्म्स जो हैं वो एक फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्म्स हैं, जो लेकिन जो सही फिल्में हैं, जो ये कॉन्टिनेंटल फिल्म जो कहते हैं हम, वो फिल्म बहुत सच है उन फिल्मों में। तो फिल्में देखता हूँ, गुनगुना लेता हूँ। गार्डनिंग का बहुत शौक है, पेड़ पौधों से, तो जानवरों से बहुत प्यार है, तो इन चीज़ों में मन लगा रहता है।
1: अच्छा, और आगे की आपकी भविष्य की क्या योजना है? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है आपका कि आप क्या करना चाहेंगे? किस तरह की फिल्में या टेलीविजन सीरियल बनाना चाहेंगे?
0: ड्रीम्स तो बहुत हैं, हमने जहाँ से शुरुआत की थी, सपनों से ही शुरू की थी, तो
1: बिल्कुल।
0: सपने अभी बहुत हैं। मैं बड़े पर्दे के लिए फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ जो यादगार रहे, जो लोग कहें कि या वाह क्या मज़ा आया, या तो ये कहें कि वाह कि दिल को छू गए। तो ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूँ, बहुत ही सेंसिटिव फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो ये एक सपना है जो मैं साकार करना चाहूँगा, कि एक कुछ ऐसी फिल्में बनाएं जो बहुत ही यादगार रहे।
1: आनंद जी, हम चाहेंगे, हम सिर्फ हम ही नहीं, हमारे सुनने वाले भी चाहेंगे कि आपका ये सपना सच हो और उन तक आपके द्वारा बनाई हुई बेहतर फिल्म, बेहतर धारावाहिक उन तक पहुंचे। इसी आशा के साथ मैं आपका विविध भारती के स्टूडियोज में आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूं। और चलते चलते आपने जो शौक की बात कही थी, हमारे श्रोता आपके उस शौक को आप ही की आवाज में सुनना चाहेंगे, यानी कि आप गुनगुना कर उनको एक गाना सुना दीजिए।
0: अब ये तो बहुत नाइंसाफी होगी हमारे श्रोताओं पर कि मैं यहाँ गाना शुरू करूं, फिर भी अगर आप इंसिस्ट कर रही हैं तो ऐसे ही एक गाना गुनगुना देता हूं।

0: बहुत खूबसूरत आनंद जी, एक बार फिर से तहे दिल से आपका शुक्रिया, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया यहाँ आकर। मैं उम्मीद रखूंगा कि श्रोताओं को भी उतना ही मजा आया। थैंक यू वेरी मच,
0: धन्यवाद।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप टेलीविजन और फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता अनंत महादेवन से नीता वाजपेयी की ये बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोगी थे रमेश गोखले। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे।

0: रंग
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, लीजिए सुनिए ये संदेश।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील मिल हो रही है भाई।
4: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
4: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल।

0: कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।

अभी आपने सुना गणेशाय धीमहि भजन, स्वर मैथिली ठाकुर, जोनिता गांधी, सूर्य गायत्री और आजीवासन किड्स का, गीतकार अजय अतुल, डॉक्टर चंद्रगुप्त वानेनकर और संगीत है अजय अतुल का। अब सुनिए गजल, बहुत खूबसूरत सी है, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता, जिसे अपनी मखमली आवाज और दिलकश अंदाज में पेश किया है गजल सम्राट जगजीत सिंह ने। संगीत भी जगजीत सिंह का है, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

के मुरझाए हुए कुछ फूल भी लाई। लगी जब फूल रखने तो कब्र से आवाज ये आई, चढ़ाना फूल जाने मन।

आहिस्ता आहिस्ता आप अभी और भी गजलें सुनेंगे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब पेश है एक बेहद खूबसूरत गजल, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। अमी खंती की कलम से निकली ये गजल उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की दिलकश आवाज और सुरों से सजी। तो आइए सुनते हैं।

को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और जगजीत सिंह ने। इसके बोल हैं शाहिद कबीर के इसके बोल हैं शाहिद कबीर के और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सी गजल।

0: Ранг Таранг.
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। अब सुनिए एक बेहद खूबसूरत गजल, गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी है। इस यादगार गजल

पेश है बेहद खूबसूरत गजल, फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। छाया गांगुली के बेहद सुरीली आवाज में इस गजल के खूबसूरत बोल हैं अदीम हाशमी के, और इसकी धुन तैयार की है मधुरानी ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं रंग तरंग कार्यक्रम। पेश है अगली गजल, जरा जरा सी बातें तेरी मुझको याद आती हैं। इस गीत को अपनी मधुर आवाज दी है अलका याग्निक ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और इसे संगीत से सजाया है राजू सिंह ने। तो आइए सुनते हैं जरा जरा सी बात।
1: हसीन लम्हे, शरीर लम्हे, शर्मीले लम्हे, झिझकते लम्हे, पिघलते लम्हे, धड़कते लम्हे, मोहब्बत में गुजरे ये तमाम लम्हे दिल की पगडंडियों पर अपने पैरों के निशान छोड़ गए हैं। मौसम बदलते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन ये निशान

कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती से। अब सुनिए फिल्म साथ साथ की एक बेहद खूबसूरत गजल, यूं जिंदगी की राह में मजबूर हो गए, इतने हुए करीब कि हम दूर हो गए। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज दी है चित्रा सिंह ने। इसके खूबसूरत बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये गजल।

आइए अब सुनते हैं फिल्म डैडी की बेहद खूबसूरत गजल आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। इस खूबसूरत गजल को अपनी आवाज दी है तलत अजीज ने। इसके बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने और इसकी धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर।
2: उम्दा बास्केट में धोतिया लपेट।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश

0: मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉक्टर जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: India's engagement with the Global South.
2: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा

0: था कि भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। साहिर लुधियानवी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की तर्ज है। फिल्म का नाम इज्जत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो,
4: हाँ हाँ,
3: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
5: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
5: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
5: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम।
6: मुबारक बेगम की आवाज केदार शर्मा के बोल, हमारी याद आएगी

0: उमर बेगम की आवासीय फिल्म का नाम था हमारी याद आएगी।
1: याद आएगी अंधेरे छा रहे।
2: एक विलक्षण गायक
3: अरे ओरे
2: संगीत के साधक
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घनश्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से यादों की महफिल, एक बेमिसाल पियानो सॉन्ग
3: आपके हसीन रुख।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: इंदिवर की बोलती है ओपी नैयर की तरसी किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो।
1: जंबो जेट लंदन मुंबई प्रवास थेट जगलो वसलो पुन्ना भेट जंबो जेट सोई।
0: मराठी संगीत जगत की एक दिग्गज हस्ती अप्पा वढावकर।
1: रात्रंदीन आमा युद्धाचा प्रसंग
0: विविध भारती के स्टूडियो में लेकर आ रहे हैं अपने जीवन की कहानी।
1: जब परीक्षा दे रहा था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया और उस टाइम मेरे घर में वसंत देसाई जी मिलने को आए। 72 से 75 तक मैं वसंत देसाई के साथ काम किया।
0: आज के मेहमान 23 सितंबर शाम 4 बजे और 24 सितंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जीने की राह फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज,

0: जिंदगी रहा फिल्म का ये गाना था। इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत था। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इस गाने की बस एक झलक सुनवा पाएंगे, वक्त कम है। फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। सुरीला सफर कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पदों के आरक्षण निर्धारण के लिए आज विभिन्न जिलों में लॉटरी निकाली जा रही है। जयपुर में जिला परिषद के 57 वार्डों में से 10 वार्ड अनुसूचित जाति और 8 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 8 वार्डों में से 4 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। नागौर जिले में पंचायत समितियों के प्रधान पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इसमें नागौर पंचायत समिति का प्रधान पद महिला के लिए, जबकि श्री बालाजी और पांचोड़ी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं मेड़ता रोड अन्य पिछड़ा वर्ग महिला और भैरूंदा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। जैसलमेर में रामगढ़ और मोहनगढ़ पंचायत समितियों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए, जबकि जैसलमेर पंचायत समिति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हुई है। नाचना और राजमथाई पंचायत समितियां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। कोटपुतली बहरोड में भी जिला परिषद सदस्य प्रधान पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण के लिए लॉटरी निकाली जा रही है। आज आयुर्वेद दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद केवल उपचार की पद्धति नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का माध्यम भी है। उन्होंने देशवासियों से इस समृद्ध परंपरा को अपनाने का संकल्प मजबूत करने का आह्वान किया। प्रदेश में आयुष विभाग की ओर से राज्य स्तरीय आयुर्वेद दिवस समारोह जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। पाली में न्यू सिंह बोर्ड में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आमजन को संतुलित आहार, योग, दिनचर्या, ऋतुचर्या और निवारक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने आज 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य

बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले आयुष्मान भारत को इस विचार के साथ शुरू किया गया था कि प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के जैतारण के दौरे पर हैं। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जैतारण के मरुधर केसरी पावन

0: मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर जिले के जैतारण के दौरे पर हैं। वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जैतारण के मरुधर केसरी पावन धाम में दर्शन और पूजा अर्चना के बाद सेवा संकल्प बाइक रैली को रवाना करेंगे। इसके बाद श्री शर्मा जैसलमेर जिले के रामदेवरा जाएंगे। वहां वे बाबा रामदेव पैनोरेमा से मुख्य बाजार होते हुए बाबा रामदेव मंदिर तक आयोजित पद यात्रा में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बाबा रामदेव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे युवाओं से संवाद करेंगे। प्रदेश में आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग में पेंशन अदालत आयोजित की जा रही है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित पेंशन अदालत में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास पहुंचे हैं। मुख्य सचिव ने सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों के पेंशन संबंधी लंबित मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। इनमें पेंशन निर्धारण, बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। वहीं महिला स्की टीम स्पर्धा में परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान ने कांस्य पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही इन खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि इन खिलाड़ियों के कौशल, दृढ़ संकल्प और टीम भावना ने देश को गौरवान्वित किया है। पाली में पहले विश्व युद्ध के वीर योद्धा मेजर दलपत सिंह देवली का 108वां बलिदान दिवस शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मेजर दलपत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी वीरता और शहादत को याद किया गया। साथ ही विचार गोष्ठी भी रखी गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

आप में से कितने लोग हैं जिनको ये गाना अपने दिल की धड़कन लगता है, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के बीच, अंताक्षरियों में, पार्टियों में ये गाना खूब गाया है, और हाँ, किसे याद करके गाया है ये भी बताइएगा। पारिवारिक महफिलों में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला गाना

आया है ये हम नहीं बता सकते। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि फिल्म ब्लैक मेल का ये बहुत ही रोमांटिक गाना है। और इसके अलावा एक श्रोता, इन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी की हर बात कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन पहले बताई थी, जो मैंने सगाई से पहले और सगाई से शादी तक की उम्मीदें उकेरी थी और उसने पढ़ने की जिद की तो मैं मना नहीं कर पाई, आखिर मेरे हर हालात की वो जानकार थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लफ्जों में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। एक और श्रोता की बात है कि इस गीत में प्रणय और श्रृंगार के कितने मधुर आयाम खुलते हैं, प्रेम की गहन ऊष्मा से सजी इस गीत में शब्दावली डायरी लिखने की उस दुनिया में ले जाती है जब उम्र में बहुत कच्चे थे और डायरी में पूरे संसार की बातें शामिल हो जाती थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि डायरी लिखना दरअसल खुद से बातें करना है और अपने अनकहे दर्द को कागज पर उतारने का सबसे सुकूनदेह जरिया है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो संगीत और गीत हमारे जज्बात बन जाते हैं, कितनी प्यारी बात। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि उन्होंने अभी अभी 77 साल का सफर पूरा किया, उन्हें हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने भी अजीब होते हैं, जो बातें जबान तक नहीं आती उन्हें चुपचाप सहेज लेते हैं। कुछ स्याही में भीगी शामें, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ नाम, वक्त मिटता जाता है मगर पन्नों पर ठहरी यादें मिटती कहां हैं। कितनी जज्बाती बातें हमारे सारे श्रोता लिख रहे हैं। ये गाना जो अभी हमने बजाया ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना, क्या आप बता सकते हैं कि किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया था? और इसके अलावा एक और बात आपको बतानी है कि वो कौन सा सूत्र है जो आज के सारे गानों को एक डोर में पिरो रहा है? और इसके अलावा अब जो गाना आ रहा है वो इंस्टाग्राम की इस दुनिया में रीलों का शहजादा बन गया, अचानक ही इस गाने को लेकर कितने लोगों ने रीलें बना डाली, एक गाने का जैसे पुनर्आविष्कार हो गया, जैसे कि रीडिस्कवरी हो गई इस गाने की, जैसे कि दोबारा किसी को सरे राह चलते चलते कोई अनमोल मोती मिल गया हो, इस गाने ने वही कमाल किया था। क्या आपने भी इस गाने को लेकर कोई रील बनाई थी अपने दोस्तों अपनी सहेलियों के साथ? ये भी बताइएगा कि किस फिल्म का है ये गाना और किसने लिखा है।

भाई भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। ये वो गाना है जो एक वक्त पर अचानक रीलों पर छा गया था, जैसे इसकी रीडिस्कवरी हुई थी। भीगा भीगा है समा, इस जुमले से मुझे लगा कि आप सभी से पूछना चाहिए कि क्या आपके शहर में भी भीगा भीगा है समा, क्या मौसम है, यादों की बारिश हो रही है या आसमान बरस रहा है, ये बताइएगा। आज के इस कार्यक्रम को किस एक थीम ने अपने सूत्र में पिरो कर रखा है, वो बात हमारे कुछ श्रोताओं ने पहचान ली कि राजेंद्र कृष्ण के लिखे हुए गाने आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और इसके अलावा नागिन फिल्म का ये गीत है, ये तमाम लोगों ने बताया। और भीगा भीगा है समा, ये जो जुमला है ये तो जैसे जहन पर छा गया है, मैंने कहा कि रीलों पर छा गया था ये गाना। एक श्रोता लिखते हैं कि अगर किसी राह पर अकेले चल रहे हैं और कोई ऐसा साथी मिल जाए तो सफर काटना सुंदर और आसान हो जाता है। सफर कई तरह के हो सकते हैं, जिंदगी का सफर, नौकरी का सफर वगैरह। आज के गाने जिंदगी के सफर में साथ निभाने वाले गाने हैं। एक श्रोता लिखते हैं, हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है, डायरी कभी नहीं लिखी लेकिन पढ़ाई के दौरान अपने लक्ष्यों को मैं जरूर अपनी डायरी में नोट कर लेता था, ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी। इसके अलावा कार्यक्रम शुरू होने से पहले कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बातें लिखी थी। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी डायरी कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होती, वो तो हमारे बीते हुए समय की पेटी है जिसमें हम अपने जीवन के अनमोल पल सहेज कर रख लेते हैं। कभी किसी खत का अंश, कभी कोई तस्वीर, कभी किसी मुलाकात की तारीख, डायरी बहुत कुछ होती है, यादों का एक जखीरा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक छोटी मगर प्यारी बात है, हम अपनी डायरी में कुछ बातें लिख जाते हैं, कुछ आंखों में रह जाती हैं और कुछ गीत बनकर हमेशा हमारे साथ चलती हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कभी डायरी लिखते हुए लगता था ये सिर्फ मेरे शब्द हैं, लेकिन बाद में समझ में आया इन पन्नों में तो पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। किसी का इंतजार, किसी की खामोशी, आंखों में ठहरे आंसू और कुछ अधूरी बातें, सब धीरे धीरे जैसे गीत बन गए हैं। न जाने कितने श्रोता हैं जो जिनके जज्बात आज जैसे जाग उठे हैं। नागिन का गाना पुराने सोने की तरह है, खालिस सोना है, ये एक श्रोता ने लिखा। एक श्रोता लिखती है कि 13 गानों वाली फिल्म थी नागिन और एक से बढ़कर एक गाने। अपने कॉलेज के दिनों में हमने डायरी लिखी थी लेकिन अब तो सिर्फ हिसाब किताब लिखते हैं डायरी में। अरे अरे, डायरी लिखनी चाहिए भाई, हिसाब किताब से बाहर निकलिए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद कल रात हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई है। एक और श्रोता है जो कहते हैं बस यादों की बारिश हो रही है, वरना सूर्य देव का प्रकोप है, बदल आते हैं, झलक दिखाते हैं और चले जाते हैं। एक और श्रोता ने बहुत ही सुंदर बात लिखी है, वो लिखते हैं कि हम तो अपनी डायरी में मोर पंख रखा करते थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत चटख धूप है हमारे शहर में। ये जो मोर पंख है, इससे मुझे एक और बात याद आ गई कि किताबों में और डायरी में दो चीजें बहुत रखी जाती थी, एक तो मोर पंख और दूसरी विद्यापति। क्या याद आया इन दोनों बातों से, जरा बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, किस पर फिल्म आया गया, ये सब बताइए। साथ में ये भी बताइए कि आज के इस जज्बाती कार्यक्रम के जरिए कौन सी भोली दास्तान आपको याद आ गई है। 1:16 विविध भारती, सुरीला सफर, यूनुस खान के संग।

एक श्रोता लिखती हैं कि स्कूल के टाइम में मेरी एक सखी जिसे जिसके घर में मयूर पंख रखा करते थे उसने मुझे गिफ्ट दिया था। 10वीं तक मैंने संभाल कर रखा था और मोर पंख भी हम तो जब पापा को कोई सम्मानित करता और बुके में मोर पंख आते थे तो हम स्कूल में ले जाकर सहेलियों को बांटते थे। न जाने कितनी यादें आ गई जहन में। एक श्रोता लिखते हैं कि न तो कभी डायरी लिखी और न शायरी की है। 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद कोरोना काल में विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े और कई अनजाने मित्र बन गए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि विद्यापति की याद दिला दी। विद्यापति और बचपन आपस में जुड़े हुए हैं। घर में गमले में भी विद्यापति लगती थी, कॉपियों में रखा करते थे और कहते थे कि इससे पढ़ाई अच्छी होती है, विद्या बढ़ती है। कमाल की बात थी, कमाल का वक्त था। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इतने अच्छे गाने आप पेश कर रहे हैं कि हमारा जो सोने का इरादा था वो हमने टाल दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही सटीक विषय आपने डायरी का रखा है और जो गाने हैं वो बहुत ही जज्बाती हैं। एक श्रोता और हैं कहते हैं कि हम अपने कॉपी में मोर पंख के साथ चौक का पाउडर रखा करते थे क्योंकि हमें लगता था कि चौक का पाउडर रखने से मोर पंख बड़े हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। अनिता गुहा, प्रदीप कुमार, पुरानी फिल्म संजोग, एक श्रोता की बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि विद्या के पेड़ की पत्तियां बहुत रखते थे किताबों में क्योंकि हमें ये बताया गया था कि इससे विद्या आती है। एक श्रोता लिखते हैं कि हम अपनी नोटबुक में भगवान की तस्वीरें रखा करते थे। एक और श्रोता है जो कॉपी में विद्या की पत्तियां और रंग बिरंगे पंख रखा करते थे। एक और श्रोता है जो कहती है कि हम तो अपने मन की सारी बातें सिर्फ भगवान जी से करते हैं हर समय। आज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गाने बहुत अच्छे हैं और देखते हैं कि वो चुप रहें तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। गाना आज शामिल होता है कि नहीं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कोई जीवन से चला जाए तो कितने दिन विश्वास नहीं होता कि अब वो नजर नहीं आएगा। ये गीत न जाने कितनी पुरानी यादों में डुबोकर आंखों को सजल कर देता है। वो भूली दास्तां और डायरी दोनों ही गुजरे वक्त की खामोश सहेलियां हैं। डायरी के पन्ने पलटते ही कोई भूली शाम, कोई अधूरा खत, कोई पुराना गीत, किसी की आवाज अचानक यादों में लौट आती है। कुछ दास्तानें जिंदगी से मिट जाती हैं मगर डायरी के पन्नों पर उनका मौसम हमेशा ठहरा रहता है।

और श्रोता लिखते हैं, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था तो मैंने कुछ दिन तक डायरी लिखी थी, लेकिन फिर बंद कर दिया हमेशा के लिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जिन्हें हम कभी याद नहीं करना चाहते। चलिए आगे बढ़ते हैं इस गाने की तरफ। फिल्म का नाम तो बताइएगा ही, साथ में ये भी बताइएगा कि नींद कहां और आराम कहां, ये जुमला आपकी जिंदगी पर कितना फिट होता है। कितनी नींद लेते हैं आप, कितनी नींद ले पाते हैं, कितने घंटों की नींद।

जेलर फिल्म का ये गाना है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बताया। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि हम प्यार में जलने वालों को ये गाना सुनकर मन अवसाद से घिरने लगता है, लता जी की आवाज सीधे दिल में जाकर हॉन्ट करती है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अमेरिका में सिएटल में मैं ये कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश में विविध भारती से जुड़े रहने के लिए। एक और श्रोता है जो कहती है कि भाई 5-6 घंटे से ज्यादा की नींद तो हमारी पूरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा एक और श्रोता 7-8 घंटे की नींद लेते हैं। कुछ और श्रोताओं ने भी अपनी नींद का हिसाब किताब बताया होगा। एक श्रोता है जो लिखती है कि गानों की मैंने एक अलग सी डायरी बनाई है और उसमें सारे गानों के डिटेल्स, गायक, गायिका, फिल्म का नाम, संगीतकार का नाम, ये सब लिखा करती थी। ये क्लास 12th की बात है। मेरी सहेली ने कुछ गीत मांगे, वो डायरी में स्कूल लेकर चली गई और सहेली के संग उन गानों को लिखने और बोलने में इतनी मस्त हो गई कि कब क्लास टीचर आ गई ध्यान ही नहीं रहा। उन्होंने मुझे डांटा और डायरी अपने पास रख ली। वो डायरी मुझे कभी वापस नहीं मिली। आज आपने मेरी एक दुखती रग को छेड़ दिया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने के बाद शरीर कहता है भैया पड़े रहो नहीं तो पटक देंगे। हा, हा। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि भाई आपका छाया गीत रात 10 बजे आता है और वो मेरी नींद का समय होता है। 70 का दशक था, डायरी की बातें आपने छेड़ दी, एक से बढ़कर एक फिल्में आ रही थी तब उनके गाने डायरी में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी तो डायरी होती है, कुछ लोग संस्मरण लिखते हैं, कुछ अनुभव।

मेरी माता जी और श्रीमती जी टीचर रही हैं तो स्कूल में उन्हें डायरी लिखना अनिवार्य था, बच्चों के कामकाज का हिसाब किताब उसमें होता था। ये लिखते हैं कि अपने महीने का हिसाब किताब डायरी में नोट करते हैं और गुजरे जमाने में जो चीजों के दाम थे वो देखकर आज चीजों के दाम की जब वो तुलना करते हैं तो उन्हें बड़ी हैरत होती है कि वक्त कितना बदल गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कभी कभी कोई गीत के आप सुनते नहीं बल्कि वो आपके भीतर घटित होता है और मन के भीतर एक बयाबान महसूस होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि 6 से 7 घंटे सोता हूं, सुबह 5 से 8 मॉर्निंग वॉक करता हूं। उन्होंने पूरा हिसाब लिखा है, मतलब बढ़िया नींद कई लोग लेते हैं। आज का जमाना वो है जब बहुत सारी रिसर्च भी ये बताती चली जा रही है कि लोगों की नींद कम हो रही है। क्या आपको लगता है कि लोगों की नींद कम हो रही है? और ये जो ब्लू स्क्रीन है यानी जो मोबाइल लैपटॉप टेलीविजन वगैरह की स्क्रीन है, इसने हमारी जिंदगी का सुकून और हमारी जिंदगी के कीमती पल हाईजैक कर लिए हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा। और ये भी कि ब्लू स्क्रीन का प्रकोप कितना है आपके जीवन में।

गाने लिख रखे हैं, पूरे गानों के बोल हैं। तलत की आवाज के बारे में ये शोधा कहती हैं कि मिष्टी मधुर गीत के गायक तलत जी हैं। प्यार करना कोई बड़ी बात नहीं, ये सबको हो जाता है, उसे निभा ले जाना बहुत बड़ी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पढ़ाई के समय में मैं विविध भारती को मध्यम आवाज में सुना करता था। जब कोई पसंदीदा गीत आता था उसे रफ कॉपी में लिख लेता था और उसे जमा कर लेता था। शाम को खेतों पर पगडंडियों पर चलते हुए उस गाने को गुनगुनाता था। इस तरह से मुझे बहुत सारे गाने याद हो गए हैं। कुछ श्रोता हैं जो सलील चौधरी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि लकड़ी का पेन बनाकर इंक से लिखा करते थे, आजकल तो प्रोफेशनल पेन से लिखने का चलन हो गया। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1974 से 1982 तक का वक्त कॉलेज के सफर का आईना है और इन डायरियों में आर्थिक दुर्दिनों का जिक्र भी है और कुछ दर्द दिल भी। एक श्रोता हैं जो 5 घंटे सोते हैं और 11 बजे तक तो रेडियो सुनते रहते हैं रात में। इसके लिए एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम तो भाई अच्छी नींद लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि दोपहर को आधे घंटे की नींद बहुत होती है तो मैं दोपहर को एक नैप लेता हूं, इससे ज्यादा नींद नुकसान कर सकती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से लिख रहा हूं, राजमिस्त्री का काम करता हूं, रात 10 बजे सोना होता है, सुबह 4:30 बजे मैं जाग जाता हूं। और इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये बातें लिखी हैं और इससे ये साबित हो रहा है कि ज्यादातर श्रोता जो हैं वो जरूरत से कम समय सोते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत अलग अलग माध्यम, बहुत अलग अलग कारण हैं जिन्होंने हमारी नींद को हाईजेक कर लिया है, हमारी नींद को अगवा कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस जज्बाती कार्यक्रम का अगला गाना आपके लिए पेश कर रहे हैं और साथ में ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रहा है, आप सभी को कितना इंतजार है इस दिन का और 3 अक्टूबर को आप विविध भारती से क्या अपेक्षा कर रहे हैं।

एक श्रोता लिखते हैं, गम राह में खड़े थे साथ हो लिए। गम जिंदगी के साथी तो होते ही हैं। आप सभी जब जिंदगी में उदासी के, परेशानी के, गम के दिन आते हैं तो उन दिनों को किस तरह से गुजारते हैं, अपने आप को किस तरह से थामे रखते हैं, ये जरूर बताइएगा और अपनी जिंदगी के अनुभवों के जरिए बताइएगा। एक श्रोता लिखते हैं, कितने नायाब गीतों के रचयिता राजेंद्र कृष्ण हैं। मैं हमेशा ही ये कहता हूं कि गीतकारों को बहुत सलाम करने की जरूरत है जिन्होंने ये नायाब नगीने हमें दिए हैं, जो हमारी जिंदगी के कदम कदम पर हमारा साथ निभाते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस पूरे कर रही है। बहुत बहुत बधाई। आप सब लोग जिस तरह से विविध भारती के कार्यक्रम बनाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं कि 3 तारीख को भी आप ऐसे ही मनपसंद कार्यक्रम पेश कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो जरूर होगा। और इसके अलावा ये एक श्रोता है जो कहते हैं कि डायरी के पन्ने आपके व्यक्तित्व को दिखाते हैं और डायरी लिखने का शौक पुराना है, यादों को सहेजने का सबसे अच्छा जरिया है डायरी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज डायरी के ऐसे पन्नों को खोला जाएगा जिनकी खुशबू हमारे दिल के किसी कोने में आज भी महक रही है। करीब 35 साल पहले की बात है, मुझे डायरी लिखने का शौक था। तब पसंदीदा गीतों के अलावा मैं व्यंजनों की रेसिपीज भी अपनी डायरी में लिखा करती थी और ये डायरी आज तक मेरे पास मौजूद है। कितनी प्यारी बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि 3 अक्टूबर को विविध भारती से ये अपेक्षा है कि वो एक ऐसा तोहफा दें जिससे कार्यक्रम रात 12 बजे तक जारी रहे। विविध भारती के कार्यक्रम रेडियो पर 11 बजे समाप्त हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। भाई, आपको हम ये सुझाव देंगे कि आप एक काम कर सकते हैं और वो काम है ऐप पर सुनना, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए। दुनिया के कोने कोने में विविध भारती सुनाई देती है बिल्कुल 24 घंटे बिना किसी बाधा के। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये गाना सुनते हैं। किस फिल्म का है ये गाना और किस तरह के जज्बात जगाता है बताइए।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि विविध भारती पर बजने वाले गाने दिल को छू लेने वाले होते हैं और मैं अपने दुख कम करने के लिए विविध भारती के कार्यक्रम सुनती हूं और इन कार्यक्रमों को सुनकर मैं रिलैक्स हो जाती हूं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि इस गाने को सुनकर वो बहुत ही जज्बाती हो गई। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि विविध भारती अपनी यात्रा के 70 बरस 3 तारीख को पूरे करेगी और वे अपनी यात्रा के 70 बरस अगले बरस पूरे करेंगी। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि नींद का मामला तो बहुत गड़बड़ है, चाहे दोपहर की नींद हो या रात की नींद, जब लोगों के उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं और 3 अक्टूबर को बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रमों का इंतजार हम कर रहे हैं, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि 3 अक्टूबर को सुरीला सफर कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होना चाहिए, क्या बात है भाई, क्या डिमांड की है आपने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि राजेंद्र कृष्ण और मदन मोहन के जो गाने हैं वो दिल को छू लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही नायाब अलबेला गाना हम आपको सुना रहे हैं और साथ में ये भी बात कि क्या पहले के जमाने में आप डायरी लिखा करते थे और अगर डायरी लिखने का ये सिलसिला आप छूट गया है तो वो कौन सी वजह हैं कि आप आज के जमाने में डायरी नहीं लिखते, वो कौन सी बातें हैं जो आज आपको डायरी लिखने के शौक को आगे बढ़ाने से रोकती हैं। और हाँ, सुबह से आपके होंठों पर कौन सा गीत सजा हुआ है ये भी बताइए।

चंपा कली फिल्म का ये गाना कितना बेमिसाल है। एक श्रोता लिखते हैं कि थाईलैंड सिंगापुर मलेशिया की यात्रा पर गया था, तब भी पूरे समय में विविध भारती सुनते रहता था। एक और श्रोता लिखते हैं कि चल उड़ जा रहे पंछी मेरे जीवन का टूट हिस्सा है, मेरे बचपन का शहर इटावा उसका छूटना, ये गाना सब कुछ याद दिला देता है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने पिताजी को याद किया है, उन्होंने लिखा है कि जब पिताजी नहीं रहे तो एक अंकल थे जो पिताजी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने ये गाना शोक सभा में गाया था, पिताजी को ये बहुत पसंद था। आज उन अंकल की भी याद आ गई, आज वो भी इस दुनिया में नहीं है। कितनी यादें आपने इस गाने के जरिए ताजा कर दी। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि ये गीत छुप गया कोई रे राग झिंझोटी और खमाज के पुट के साथ तैयार किया गया। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि आज के जमाने में वो डायरी इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब लिखने जैसा कुछ बचा नहीं है जीवन में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि लिखते हैं कि डायरी लिखना चाहिए क्योंकि इससे पुराना जमाना हमेशा याद आता रहता है। हालांकि कभी कभी डायरी जीवन की मुसीबत बन जाती है क्योंकि इसमें आपके राज छिपे हुए होते हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि मेरी माँ चंपा कली फिल्म का ये गाना गाया करती थी, आपने उनकी याद दिला दी। सुचित्रा सेन के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और देखिए कि अब अकेलेपन का उदासी का टूटन का ये गाना आ रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में। जिंदगी में जब अकेलेपन और उदासी के पल आए तो खुद को कैसे संभाला आपने, वो कौन लोग थे जिन्होंने आपको सहारा दिया आपको संबल दिया, जिंदगी में निराशा का सामना आप कैसे करते हैं।

एक श्रोता ये लिखते हैं कि जिंदगी तो संघर्ष के पल्लू से ही बांध ली थी और उसके बाद रेडियो और बाद में कुछ अच्छे लोगों ने साथ दिया, तो कभी हार नहीं माननी पड़ी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संघर्ष के दिनों में मुझे सबसे ज्यादा मानसिक शांति और संबल रेडियो ने दिया और विविध भारती ने मुझे सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर किया। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीवन में जब भी निराश और दुखी होती हूं तो मेरी बहन हमेशा मेरे साथ खड़ी होती है, वो बहुत ही आशावादी है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अपने परिवार का धन्यवाद किया है, उन्होंने कहा कि बस धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर सब अच्छा करता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि बचपन से डायरी लिखना शुरू किया था, जब पिताजी ने डायरी गिफ्ट की थी, ये मेरी कविता

की शुरुआती दिन थे। आजकल लिखने का काम मोबाइल में हो जाता है, लेकिन डायरी लिखना छूट गया है। अपनी कुछ अच्छी कविताएं और कुछ दूसरे कवियों की कविताएं मैं डायरी में दर्ज कर लेती हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि क्रिकेट और अन्य खेलों में हैट्रिक होती है और सुरीला सफर कार्यक्रम में आप दो दिन लगातार आ चुके हैं, तो क्या आप कल हैट्रिक करने वाले हैं? भाई ये एक सस्पेंस है और इसे सस्पेंस रहने दिया जाएगा, कल इसका फैसला हो जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इसे इत्तेफाक समझिए या क्या कि जब भी मन उदास होता है यूं लगता है कि शायद कोई बात सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, तो विविध भारती और उसके सुरीला सफर कार्यक्रम में आने वाले गाने ये कहते हैं कि तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये गाना जज्बात से भरा, दिल को छू लेने वाला ये गाना, ये उदास गाना किस फिल्म का है ये गाना, ये बताइएगा।

एक श्रोता ये लिख रही हैं कि आज तो एक से बढ़कर एक गाने आपने सुनाए और गुजरा जमाना जैसे आंखों के आगे खड़ा हो गया और माँ बाबूजी की याद आ गई। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी में जब भी निराश होता हूँ तो पिताजी की बात याद आ जाती है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, रुक गए तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जब मैं स्कूल में था तो डायरी में कानून की धाराएं लिखा करता था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि गाना जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब पतिदेव दुनिया से चले गए तो पूरे समय बस यही गाना जिंदगी में गूंजा करता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने नरगिस और प्रदीप कुमार को याद किया है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जिंदगी उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है भरोसा, विश्वास वो चीज है जो परिवार को इकट्ठा रखती है। आज के इस कार्यक्रम में राजेंद्र कृष्ण के कुछ बेमिसाल गाने थे और अब तकरीबन आखिरी गाने की जब बारी आ गई है तो वही गाना जो हमारी इबारत की आखिरी लाइन था, ये गाना पेश किया जा रहा है। आज का ये कार्यक्रम

0: winning silver medal in the women's 49-kilogram weightlifting event. The International Day of Sign Languages is being observed today. The Union's Social Justice and Empowerment Minister, Dr. Virendra Kumar, said that the sign language is a powerful bridge for communication, expression and inclusion. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi, calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public health care access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला स्की टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से एआई की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
2: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
1: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
2: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में। घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज

0: कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों प्रौद्योगिकी प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
1: Look at what has emerged from the BRICS.
2: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
1: A durable institutional shape.
0: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
5: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

0: कृषि विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
2: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती हैं कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
1: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
3: माय नेम इज रमेश।
4: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूं। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था, वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूं।
3: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
1: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
6: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंत जीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले

0: 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिणाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: किसी बोल रहे हैं सदाबहार नगमे।
2: न झटको जुल्फ से पा

0: की सहेली कार्यक्रम सखी सहेली में मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार
0: और सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
1: बताइए
0: क्या
1: अभी हम जब प्रोग्राम से पहले मिले तब आप कुछ ले रहे थे, कुछ दवा थी या क्या थी, गले के लिए थी या किसी और चीज के लिए थी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी।
0: अरे यानी कि तुम ध्यान रखती हो कि मैं क्या खा रही थी।
1: बिल्कुल, मेरा पूरी तरह आपके तरफ ध्यान था।
0: अच्छी बात है, ध्यान रखना भी चाहिए। असल में क्या है सोनाली कि मौसम का बदलाव ना आपको परेशान कर देता है, जो आपके गले पे असर डालता है, आपके दिलो दिमाग पर असर डालता है और आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। तो मुझे लगता है कि मैं इन दिनों थोड़ा सा आयुर्वेद का सेवन करना पसंद कर रही हूँ।
1: आप इन दिनों कर रही हैं, मैं तो हमेशा से करती हूँ।
0: अच्छा, क्या लेती हो?
1: बहुत सारे ऐसे नुस्खे होते हैं जिन्हें खाने से ना उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और धीरे धीरे धीरे करके जो रोग है, जो बीमारी है, वो जड़ से निकल जाती है।
0: अरे वाह, तभी इतनी खूबसूरत और प्यारी सी लगती है और जो सुंदरता है तुम्हारी मुस्कुराहट की, वो भी आयुर्वेद का ही परिणाम लगती है।
1: जी, दिल से शुक्रिया। वैसे आज आयुर्वेद दिवस है तो उस पर हम जानकारी देंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया और कमेंट्स तो लिखे हैं श्रोताओं ने, पर ये भी बताएं कि आपने आयुर्वेद को अपनाया है या नहीं और किस तरह से आप अपनाते हैं।
0: सबसे बड़ी बात ये है कि आयुर्वेद दिवस के बारे में तो हमारे श्रोता लिखेंगे ही, लेकिन आपने अपने जीवन में जैसे सोनाली ने आयुर्वेद को अपना रखा है
1: जी,
0: ऐसे अपनाया है कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी है। ये बताइएगा कि आप अपने जीवन में आयुर्वेद का क्या उपयोग कर रहे हैं।
1: जी
0: ठीक है।
1: साथ ही आज एक और दिन है।

0: अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है।
1: अरे बहुत महत्वपूर्ण दिन,
0: बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। पुराने दिन याद आते हैं, बचपन के जब हम न्यूज देखते थे उसमें अब सांकेतिक भाषा में जो न्यूज हुआ करती थी वो हम भी सुना करते थे।
1: बिल्कुल, और उसे समझने की कोशिश भी करते थे। और पता है सोनाली, जब हम इस न्यूज को कई बार देखते थे ना तो हमें कुछ कुछ इशारे समझ भी आ जाते थे, है ना। और बचपन होता था तो शरारती होते थे, उन संकेतों को हम अपने घर पे भी दोहरा देते थे। जब हमारी मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे।
0: कितना मजेदार वो
1: माहौल हुआ करता था, वो आज भी हमें

0: संकेतों को हम अपने घर पे भी दोहरा देते, जब हमारी
1: हाँ
0: मम्मी हमें आवाज देती थी तो हम उस संकेत से अपनी बात कहते थे,
1: कितना मजेदार वो
0: माहौल
1: हुआ
0: माहौल हुआ करता था वो, आज भी हमें याद है
1: जी।
0: बिल्कुल, और बताइए।
1: साड़ियों का संसार, इसमें बाग प्रिंट साड़ी मध्य प्रदेश की हम जानकारी देंगे। बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारी सखियों ने इस विषय पर भी लिखना शुरू कर दिया है, और हम सखियों से पूछेंगे कि आपके पास है कि नहीं वो साड़ी, है ना,
0: या उससे जुड़ी कोई घटना याद हो कि आपने ये साड़ी ले तो ली किसी के कहने पर,
1: जी,
0: लेकिन इस साड़ी को आप कहाँ कहाँ पहन के गई, या क्या
1: कौन से कलर की है, आप
0: कैसी है, और सामने वाले ने आपको उस साड़ी में देखा या आपकी सखियों ने देखा तो क्या कहा, या आपकी पति देव ने क्या कहा,
1: ये तो पता नहीं, बताएंगी या नहीं बताएंगी हमारी सखियां।
0: बताना चाहिए, अगर आपके पति देव ने कहा कि तुम कितनी खूबसूरत हो तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा।
1: वही तो, और शब्द हमारा विचार आपके, आज का शब्द है आशा, जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। आशा का दामन हम जब थामे रहते हैं तो जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो अब हमारी श्रोताओं की आशा क्या है,
1: और नहीं व्यंजन भी है ना, आज लौकी के व्यंजन।
0: अच्छा, तो आप आज व्यंजन भी बनाने वाली हैं।
1: हाँ, और हमारे साथियों ने तो भर भर के लौकी के व्यंजन लिखकर भेज भी दिए हैं।
0: यहाँ पर मैं थोड़ा सा बचपने की ओर लौट रही
1: हूँ।
0: मैं लौकी मुझे पसंद नहीं है।
1: अरे पर लौकी का हलवा भी नहीं पसंद?
0: अच्छा, लौकी का हलवा भी बनता है?
1: हाँ, लौकी का हलवा, लौकी के लच्छे, लौकी का रायता, लौकी के कोफ्ते।
0: अरे वाह, हाँ। मुझे लगा आप लौकी की सब्जी बना के खिलाने वाली हैं।
1: और सब्जी भी उसमें चना दाल डाल दो, कुछ अलग स्टाइल से बना दो तो वो भी आपको पसंद आएगी।
0: तो चलिए हम अपने श्रोताओं को कहते हैं कि लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाए जा सकते हैं बताइए ना, ताकि हम जैसे लोगों को जो लौकी को देखते ही नाक भौं सिकोड़ते हैं उन्हें लगे कि नहीं लौकी बहुत अच्छा,
1: और लौकी मेरी फेवरेट सब्जी है।
0: मुझे भी लौकी बहुत पसंद है, पर मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने बच्चा बन गई थी।
1: ऐसे बच्चा बनना चाहिए ना।
0: हाँ, बच्चे करते हैं ना अक्सर घर में, क्या मम्मी लौकी की सब्जी बना दी,
1: मम्मियां क्या करती उसके पराठे बना के खिलाती है, पर बच्चों को लौकी जाना ही चाहिए, उनके
0: बिल्कुल
1: उन लौकी के बहुत फायदे हैं।
0: बिल्कुल, तो वो फायदे हमें बताएंगे हमारे श्रोता कि वो लौकी के क्या क्या व्यंजन बनाते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि अपने बच्चों को कितनी चालाकी से लौकी बनाकर खिला देते हैं, है ना।
1: और आप गाना सुनते हैं?
0: हाँ बिल्कुल।

0: तो तुम्हारी आंखें भी बहुत कुछ कह रही हैं कि आयुर्वेद का सेवन करने के बाद तुम कितनी चमकदार हो गई हो।
1: वैसे आज है प्रतिवर्ष 23 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ष 2026 में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और ये दिवस पंचांग के अनुसार धनतेरस यानी धनवंतरी जयंती के दिन मनाया जाता था, लेकिन तिथियों में हर साल होने वाले बदलाव के कारण भारत सरकार के आयुष मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने वर्ष 2025 से इसे हर साल 23 सितंबर यानी शरद विषु को मनाने का ऐतिहासिक और निश्चित फैसला किया ताकि इसे वैश्विक कैलेंडर पर एक स्थायी पहचान मिल सके।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस वर्ष की मुख्य जो थीम है ना वो ये है कि स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद, और इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2016 में की गई थी ताकि चिकित्सा की इस प्राचीन और समग्र पद्धति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।
1: और इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बीमारियों से बचाव और दैनिक जीवन में संतुलन स्थापित करना है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा है जिसका अर्थ है आयु का विज्ञान या जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद केवल बीमारी होने पर उपचार करने की बात नहीं करता बल्कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य को बनाए रखने और जीवन को संतुलित बनाने पर भी जोर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली। और आयुर्वेद जो है हमारी नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और जो शारीरिक सक्रियता यानी एक्टिवनेस
1: जी
0: उसको बहुत महत्व देता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम में से जो है बदलते मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली में उचित बदलाव करने की भी हमें इसी से सीख मिलती है।
1: और आयुर्वेद में भोजन को स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण आधार माना गया है। ताजा, संतुलित और व्यक्ति के आवश्यकता के अनुरूप भोजन पर जोर दिया जाता है। सही भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की नींव भी माना जाता है।
0: और आयुर्वेद स्वास्थ्य को केवल शरीर तक सीमित नहीं रखता बल्कि हमारी मानसिक शांति की इलाज करता है। अच्छी नींद आती है और तनाव कम करने वाली आदतें और सकारात्मक जीवन शैली को भी वो बहुत महत्व देता है।
1: और आयुर्वेद हमें प्रकृति के करीब रहने की प्रेरणा देता है। मौसम, वातावरण और शरीर की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बनाए रखना इसकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है।
0: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है, यानी कि जो नियमित दिनचर्या है, उचित आहार है और स्वस्थ जो आदत है उसके माध्यम से हम अपने को स्वस्थ बना सकते हैं ऐसा कहा जाता है।
1: और आयुर्वेद में रोकथाम को विशेष महत्व दिया जाता है और साथ ही आयुर्वेदिक की कई बातें जैसे समय पर भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्वच्छता रखना, मौसम के अनुसार खान पान में बदलाव करना आज भी दैनिक जीवन में अपनाई जा सकती है।
0: हाँ, और आयुर्वेद जो है हमें संदेश भी देता है कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं बल्कि शरीर, मन, आहार, दिनचर्या और

0: प्रकृति के बीच संतुलन का नाम भी आयुर्वेद है। और आधुनिक जीवन की तेज रफ्तार में आयुर्वेद की स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हमें दिनचर्या को अधिक संतुलित और जागरूक बनाने की प्रेरणा भी देती है।
1: और आज एक और खास दिन है, शरद विषु दिन है।
0: अच्छा,
1: यानी दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है और उस वक्त दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, 12-12 घंटे के होते हैं, इसलिए इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है।
0: कितना गहराई से सोचा गया है इसके बारे में, और हमारे श्रोताओं ने भी काफी बातें लिखी हैं।
1: जी,
0: है ना।
1: हमारे एक साथी कहते हैं कि आयुर्वेद दिवस हर साल 23 सितंबर के दिन मनाया जाता है, वही इस दिन से जुड़ी एक और बात कि मेरा जन्मदिन भी इसी दिन है, यानी 23 सितंबर के दिन आता है, मतलब आज ये दूरियां नजदीकी अपन गई है, अजब इत्तेफाक है। अगर दवाई की बात करें तो आज भी मैं ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बचपन में जब सर्दी खांसी की तकलीफ हो जाती थी तब पिताजी मुझे वैद्यराज के पास अक्सर ले जाया करते थे। एलोपैथी के मुकाबले आयुर्वेदिक दवाई का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन दर्द को मूल से निकाल देने की क्षमता रखता है।
0: एक श्रोता लिखते हैं कि आयुर्वेद दिवस आज ही मैंने अश्वगंधा के बीज खरीद लिए हैं जो हमारे क्षेत्र में थोड़े दिनों में उगाने की कोशिश करेंगे। जिनके मूल में से जो दवाई बनती है वो ब्लड प्रेशर में इलाज करती है, और आयुर्वेद की दवा काफी इन्हें सूट करती है। नीम के पत्तों को गर्म करके पानी, मतलब गर्म करके वो पानी ठंडा कर लेते हैं, नीम के पत्तों को पानी में उबाल लेते हैं, उसे ठंडा करके नहाते हैं तो खुजली कंट्रोल करने में फायदा रहता है।
1: यानी हर स्किन हो, फिर शरीर हो, आंखें हो, हर चीज के लिए आयुर्वेद के लिए दवा है। और घर में हमारे बहुत सारी चीजें तो घर में ही मौजूद होती है।
0: रसोई में कितनी सारी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं जी,
1: हाँ। तो हमें अपनाना चाहिए आयुर्वेद को, ताकि जो है रोग जो है पूरा मूल रूप से नष्ट हो जाए।
0: बिल्कुल सही कहा। और जो रसोई में बने मसाले हैं और जिनसे हम सब्जी में डालते हैं या जिनको हम सब्जी में डालते हैं और उनका सेवन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें हमें सेवन में लाना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाहर जाके चटपटे मसाले ढूंढते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम इस तरह से आयुर्वेद का नियमित और संतुलित सेवन करते हैं तो बहुत सारी चीजों से, परेशानियों से हमें
1: मुक्ति मिल सकता है ना। जैसे बहुत जैसा कुछ लोग एकदम से ठंडा और गरम खाते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना आइसक्रीम, यानी गरम गरम गुलाब जामुन हो उसमें भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम डाल, तो इसे भी विरोधी माना जाता है। तो छोटे छोटी बातें होती है उसे, हाँ एकाध बार ठीक है, साल में से एकाध बार किसी पार्टी में खाया, पर हर बार वही आदत है। कुछ लोग जो होते हैं खाना खाते समय कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उससे भी हमारा ना हाजमा बिगड़ सकता है।
0: बिल्कुल बिगड़ता है। और हम सोचते थे जब छोटे थे कि खाना खाने के बाद तो आइसक्रीम खानी ही चाहिए, खाना पच जाता है, ऐसा हम बेवकूफ में कहा करते थे, कहा जाता था, लेकिन जब हम इसकी गहराई में गए तो पता चला कि वो हमारे शरीर के लिए कितना गलत करती है कि आपने गरम गरम भोजन किया और उसके बाद आप ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ले रहे हैं। तो ये जो सर्द गर्म का बेमेल हम भोजन करते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचाता है। कभी कभार आपने कहा करना भी वैसे गलत है, पर चलिए आपने कभी कभार आपकी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हर बार बॉडी भी जो है रिएक्ट कर देती है ना।
1: और अब गीत सुन ले।
0: हाँ, नहीं तो हमारी श्रोता भी रिएक्ट कर देंगे।

0: तो सोनाली, कुछ कहना चाह रही थी तुम कि हमारे श्रोता लगातार हमें संदेश भेज रहे हैं और काफी अच्छे संदेश भेज रहे हैं।
1: एक सांकेतिक भाषा दिवस पर एक हमारी सखी ने बहुत अच्छा संदेश लिखकर भेजा है। ये लिखती है कि सांकेतिक भाषा केवल हाथों की भाषा नहीं, दिलों को जोड़ने का माध्यम है। जहाँ शब्द साथ छोड़ देते हैं, वहाँ भावनाएं इशारों की भाषा में अपना रास्ता बना लेती है। ये भाषा हमें सिखाती है कि संवाद के लिए आवाज ही जरूरी नहीं, समझने वाला दिल और महसूस करने वाली संवेदना भी जरूरी है। अतः हम केवल सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश ना करके बल्कि उन भावनाओं को भी समझे जो शब्दों के बिना कही जाती है, क्योंकि सच्चा संवाद आवाज से नहीं संवेदना से होता है।
0: क्या बात,
1: कितनी सुंदर, दिल को छू लेने की बात
0: अभिव्यक्ति दी है। और जब बात इशारों की कर रही थी ना, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था, इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। बहुत खूबसूरत हुनर है ये भाषा जो सांकेतिक भाषा के रूप में हमारे सामने आई है कि इशारों में आप अपनी बात से मतलब अपनी बात समझा देते हैं और सामने वाला समझ भी जाता है। तो ये आज ही के दिन मनाया जाता है दिन भी, और ये दिन दुनिया भर में सांकेतिक भाषाओं के महत्व को और जो श्रवण बाधित समुदाय के जो भाषाई अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित किया गया है, उन लोगों के लिए जो थोड़ा सुनने में जिनको दिक्कत होती है।
1: सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं बल्कि भावनाओं, विचारों और ज्ञान और संवाद को व्यक्त करने वाली एक पूर्ण भाषा है। अलग अलग देशों में और क्षेत्रों में सांकेतिक भाषाओं के अपने व्याकरण और शब्दावली और अभिव्यक्ति के तरीके हो सकते हैं।
0: और इस दिन का मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज में ये समझ विकसित करना है कि सुनने या बोलने में कठिनाई रखने वाले लोगों को भी समान अवसर, सम्मान और प्रभावी संवाद का पूरा अधिकार है।
1: जी, और शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सार्वजनिक जीवन में सांकेतिक भाषा की उपलब्धता उनके लिए भागीदारी को अधिक सुगम बनाती है।
0: हाँ, और संवाद की कठिनाई जो व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस करा सकती है, इसलिए सांकेतिक भाषा इस दूरी को कम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है।
1: और ये बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि श्रवण बाधित बच्चों को उनकी समझ के अनुरूप भाषा में शिक्षा मिले तो वे ज्ञान और कौशल को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, और सांकेतिक भाषा को केवल श्रवण बाधित समुदाय तक सीमित रखना भी उचित नहीं है सोनाली। यदि परिवार, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य कर्मी और समाज के अन्य लोग इसके बुनियादी संकेत सीखें तो रोजमर्रा के संवाद में भी कई बाधाएं कम हो सकती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और स्कूलों और संस्थानों में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। जहाँ शब्द आवाज नहीं बन पाते, वहाँ संकेत संवाद।

0: पुल बन जाते हैं।
1: और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस हमें ये भी संदेश देती है कि जहाँ हर व्यक्ति को अपनी बात कहने और दूसरे की बात को समझने का अवसर मिले, ऐसे दिन को बिल्कुल मनाया जाना चाहिए।
2: एक साथी ने भी हमारे लिखा है कि किसी के लिए हाथों की हल्की सी मुद्रा सिर्फ इशारा हो सकती है, लेकिन जो सुन नहीं सकते उनके लिए वे इशारे नहीं बल्कि शब्द, वाक्य, संवाद और संवेदनाएं हैं। सांकेतिक भाषा ने कई लोगों को सिर्फ अपनी बात कहने का माध्यम नहीं दिया बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार और दूसरों की जिंदगी बदलने की ताकत भी दी है।
1: बहुत सुंदर। और अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।
2: सुनते हैं।

0: आपका जब साथ मिलता है ना, तो मेरा भी यही हाल होता है
1: कि हमें हो करना पड़ता है।
0: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे योग गुरु आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है। वे कहते हैं कि आपकी रसोई भी एक आयुर्वेदिक प्रयोगशाला है। तमाम मसालों में कुछ न कुछ आयुर्वेदिक गुण होते हैं। हल्दी, धनिया, नमक, गरम मसाले, सरसों का तेल, देसी घी आदि में बहुत आयुर्वेदिक गुण होते हैं। तो वहीं एक साथी कहते हैं कि मुझे चाय पीने का बहुत शौक है, तो मेरे घर पर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी चाय को आयुर्वेदिक बना देती है। चाय में तुलसी के पत्ते, लौंग, गिलोय, अदरक, इलायची, दालचीनी पीस कर बनाती है। चाय की चाय और आयुर्वेदिक फायदे भी होते हैं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है कि आप आयुर्वेद को इस रूप में
0: अपनाते
1: रहे
0: हैं। और सर्दियों के मौसम में या फिर गले में कुछ खराश हो, तब तो इस तरह की चाय जो होती है ना, रामबाण हो जाती है हमारे लिए।
1: बिल्कुल सही कहा। और

0: ध्यान होगा सोनाली तुम्हें कि बचपन में हमारी जो माँ है हमें जब जैसी खांसी होती थी या कफ होता था तो अदरक कूट के शहद के साथ काली मिर्च मिला के ना चम्मच से चटा देती थी
1: हाँ,
0: कि लो
1: साथ ही
0: हल्दी का दूध पिला देती थी। तो इस तरह से कितने ही मसाले हमारी रसोई में मिलते हैं।
1: और जो आजकल के बच्चे ना नाक भौं सिकोड़ते हैं कि हम घी नहीं खाएंगे, भले ही वो फिर वो बटर खाएंगे या फिर बाहर का जो मेयोनीज वगैरह वो खाते हैं और जो केक में जो क्रीम होती है वो खाते हैं, पर घी खाने के नाम से कतराते हैं। पर देसी घी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी त्वचा के लिए, आंखों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी दादी माँ, नानी माँ या हमारी माँ जो हमें खिलाती थी वो खाना बहुत हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और वही जो हमें एक इस तरह का शौक हुआ है कि हम खूबसूरत दिखें, सिर्फ खूबसूरत दिखें
1: जी,
0: है ना, या दुबले पतले इस तरह का जो आजकल एक मार्केट चलन आ गया है उसके पीछे भाग रहे हैं। दुबला होना बहुत अच्छी बात है, स्वस्थ रहना उससे भी अच्छी बात है, और खूबसूरत दिखना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खान पान छोड़ देना ये सबसे बड़ी मूर्खता है।
1: और अगर अच्छा खान पान रखेंगे ना तो हम दिखेंगे ही सुंदर, तन से भले ही ना दिखे पर मन से तो हम जरूर दिखते हैं।
0: और तन से भी दिखेंगे, क्यों ना दिखेंगे, जब आप अच्छा भोजन लेंगे तो
1: बाल अच्छे होंगे,
0: तो शरीर
1: अच्छी होगी,
0: रिएक्शन अच्छा ही होगा। और अब एक अंतराल ले लेते हैं।
1: बिल्कुल।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: कार्यक्रम है सखी सहेली।
0: और आज सखी सहेलियां कौन है?
1: मंदाकिनी जी
0: और सोनाली जी। तो चलिए साड़ी की दुनिया में चलते हैं, जहाँ आप मुझे एक साड़ी गिफ्ट करने वाली हैं।
1: हाँ बिल्कुल है मेरे पास में, और आपके लिए मैं लेकर आऊंगी।
0: बाग प्रिंट साड़ी? क्या बात है,
1: मध्य प्रदेश की ये सुंदर साड़ी है, बाग प्रिंट साड़ी। और भारत की पारंपरिक साड़ियों की दुनिया में बाग प्रिंट अपनी अनूठी ब्लॉक प्रिंटिंग, प्राकृतिक रंगों और पारंपरिक डिजाइनों के कारण विशेष स्थान रखता है। और ये कला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ कस्बे से जुड़ी हुई है। पीढ़ियों से कारीगर इस कला को हाथों की मेहनत और बारीकी से आगे बढ़ाते हुए आए हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और बाघ प्रिंट का नाम मध्य प्रदेश के बाघ कस्बे से जुड़ा है, जैसा अभी आपने बताया भी। और ये जो क्षेत्र है अपनी पारंपरिक कपड़ा छपाई कला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भी है। और ये भी माना जाता है सोनाली कि इस कला पर राजस्थान और गुजरात की पारंपरिक ब्लॉक प्रिंटिंग परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा है।
1: और समय के साथ स्थानीय कारीगरों ने अपनी विशिष्ट शैली विकसित की है। और इस कला की सबसे बड़ी विशेषता है कि आधुनिक मशीनों की जगह हाथ से तैयार किए गए लकड़ी के ब्लॉक और पारंपरिक रंगाई छपाई की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है।
0: हाँ बिल्कुल। और बाघ प्रिंट की साड़ी तैयार करना केवल कपड़े पर ब्लॉक लगाने का काम भर नहीं है, बल्कि इसमें कई चरण शामिल होते हैं। जैसे कपड़े की तैयारी क्या होती है, सबसे पहले सूती या रेशमी कपड़े को अच्छी तरह धोकर और साफ करके छपाई के लिए तैयार किया जाता है, और इससे कपड़े पर रंग अच्छी तरह बैठ जाता है।
1: और कारीगर शीशम या अन्य उपयुक्त लकड़ी पर पारंपरिक डिजाइन उकेर कर ब्लॉक तैयार करते हैं। प्रत्येक ब्लॉक का डिजाइन अलग हो सकता है।
0: हाँ, और परंपरागत जो बाघ प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का जो है वो विशेष महत्व माना गया है। लाल और काले रंग इसकी पहचान माने जाते हैं। रंगों को तैयार करने और कपड़े पर स्थायी रूप से बैठाने के लिए पारंपरिक प्रक्रियाओं का भी पालन किया जाता है।
1: और कारीगर रंग लगे लकड़ी के ब्लॉक को कपड़े पर सावधानी से दबाता है। एक छोटी सी गलती भी पूरे पैटर्न को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसमें अनुभव और हाथ की सटीकता बहुत महत्वपूर्ण होती है।
0: सोचिए थोड़ा

0: में आपने कम या ज्यादा दबा दिया सोनाली उस ब्लॉक को, तो सारा जो डिजाइन है वो फैल जाएगा, कलर जो है वो फैल जाएंगे। और छपाई के बाद कपड़े को पारंपरिक तरीके से धोया जाता है, कई चरणों से जब वो निकल जाता है तो रंगों में गहराई और चमक आती है।
1: और पारंपरिक रूप में इसमें काला, लाल और सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। लाल रंग साड़ी को जीवंतता देता है और काला रंग डिजाइन को उभारता है, और सफेद या हल्का रंग पूरे पैटर्न को संतुलित करता है।
0: और आज के समय की अगर हम बात करें तो बाग प्रिंट नए रंगों से भी बनाए जाते हैं। जो लोग लाल काले से परहेज रखते हैं उनके लिए भी नए कलर्स हैं, जिससे ये पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक भी लगती है और बहुत ही आकर्षक भी लगती है साड़ी।
1: और इसके प्रिंट देखें तो इसमें फूल और पत्तियां, बेल बूटे, ज्यामितीय आकृतियां और पारंपरिक भारतीय अलंकरण का भी इसमें जो चित्र बनाए जाते हैं।
0: और
1: इन डिजाइनों की खूबसूरती यह है कि बहुत अधिक चमक दमक के बिना भी साड़ी को आकर्षक बना देते हैं।
0: हाँ, हर साड़ी थोड़ी अलग हाथ से बनने के कारण प्रिंट में हल्का सा अंतर दिखाई देता है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती का हिस्सा है। और बदलते फैशन के साथ बाग प्रिंट का प्रयोग सिर्फ साड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुपट्टों में, कुर्तों में, स्टोल, शर्ट, स्कर्ट और अन्य परिधान भी इससे बनाए जाने लगे हैं।
1: और फैशन डिजाइनरों ने पारंपरिक बाग प्रिंट को आधुनिक और नए रंगों के साथ प्रस्तुत किया है। इससे युवा पीढ़ी में भी इस हस्तकला के प्रति रुचि बढ़ी है। और बाग प्रिंट केवल कपड़े पर की जाने वाली छपाई नहीं, बल्कि अनेक कारीगर परिवारों की आजीविका और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी कला है। इसे जीवित रखना स्थानीय कारीगरों के कौशल को सम्मान देना भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ की जो है आर्थिक उसको मदद बढ़ाता है, है ना, अर्थ का अर्थ प्रधान उस पर भी काम करता है। जब हम हाथ से बनी ऐसी साड़ी खरीदते हैं जो हमें केवल वस्त्र नहीं खरीदते बल्कि उसके पीछे छिपे कारीगर के श्रम को देखते हैं, समय को देखते हैं, तो हम उनको सम्मान भी देते हैं उनके अनुभवों को।
1: जी, और बाग प्रिंट साड़ी में मध्य प्रदेश की मिट्टी की खुशबू, कारीगरों की उंगलियों की कला और भारतीय परंपरा की सुंदर छाप दिखाई देती है। लकड़ी के ब्लॉक से कपड़े पर उभरते फूल पत्ते केवल डिजाइन नहीं होते, वे हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत की कहानी भी कहते हैं।
0: और इसीलिए बाग प्रिंट साड़ी को पहनना मानव परंपरा को अपने आंचल में सहेजना है। एक ऐसी परंपरा जिसमें प्रकृति के रंग, कारीगरों की मेहनत और भारतीय हस्तकला की आत्मा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं।

0: तो इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना। तो हमारी सखियों ने क्या लिखा कि साड़ी को पहनने के बाद उन्हें क्या कहा किसी ने?
1: उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर लगती हो। एक सखी ने लिखा है कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ और रहने वाली एक मेरी सहेली भोपाल से बाग प्रिंट के सूट और साड़ियाँ लाकर बेचती है। मैंने भी कई सूट लिए और साड़ी अभी तक नहीं ली है। तो भाई साड़ी भी ले लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी होती है।
0: हाँ, इसको मन में मत रखिए और फिर बताइए कि उस साड़ी को पहनने के बाद लोगों ने आपसे क्या कहा। वही एक श्रोता लिखती है कि मैं बाग प्रिंट की साड़ियों के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी MP से हूँ और मेरे पास प्रिंट की साड़ियां हैं और सूट्स, बेडशीट्स, हर चीज है और मुझे पसंद भी है क्योंकि मेरे घर में बहुत सा कलेक्शन आपको मिलेगा। तो इनके घर चले
1: और ले लेते हैं।
0: वही ना। और मेरी एक फ्रेंड है जिसने बाग मंच करके एक अपना शॉप खुला हुआ है, उसके पास अगर आप जाएंगी तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या लूं क्या छोड़ूं। ऐसा लगेगा हर चीज आपकी पसंद की है। इतना कंफर्टेबल फैब्रिक होता है कि एक बार आप पहनेंगी तो कभी उसे छोड़ ही नहीं पाएंगी।
1: वही एक सखी ने लिखा है कि बाग प्रिंट कला का इतिहास सदियों पुराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस कला को खत्री समुदाय के शिल्पकारों द्वारा लगभग 400 वर्ष पहले शुरू किया गया था, जो सिंध से आकर बाग नदी के किनारे बस गए। इस नदी के पानी में पाए जाने वाले विशेष खनिजों के कारण इन साड़ियों के रंगों में एक अनोखी चमक और पक्कापन आता है।
0: बिल्कुल सही कहा सोनाली, और मुझे तो अब आशा ही नहीं विश्वास भी है कि हम भी जल्द ही बाग प्रिंट की साड़ी खरीदने वाले हैं या तुम मुझे गिफ्ट देने वाली हो।
1: बिल्कुल, मुझे भी आशा है कि ये साड़ी बिल्कुल मैं खरीद लूंगी और पूरा विश्वास है कि आप तक पहुंच जाएगी।
0: अरे वाह, तभी तो कहते हैं कि दुनिया आशा और विश्वास पर ही टिकी है। हमारे एक श्रोता लिखते भी है कि आशा एक छोटा सा शब्द है लेकिन अपने अंदर पूरी दुनिया समेटे हुए है। जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, रास्ते धुंधले पड़ जाते हैं और मन थकने लगता है, तब यही आशा भीतर से कहती है अभी सब खत्म नहीं हुआ, एक नई सुबह बाकी है। आशा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता तलाश लेती है और यह हमें इंतजार करना सिखाती है, प्रयास करते रहने का हौसला देती है और टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेने का भी एक माध्यम है आशा।
1: आशा हमारे विचारों की वो रोशनी है जो कठिन परिस्थितियों में भी हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। जब रास्ते कठिन लगने लगते हैं तब आशा हमें विश्वास दिलाती है कि परिस्थितियां बदल सकती है और आने वाला कल बेहतर हो सकता है। सकारात्मक विचारों से जुड़ी आशा मन में उत्साह, धैर्य और आत्मविश्वास पैदा करती है। इसलिए जीवन में कितनी भी चुनौतियां आए हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आशा ही नए सपनों और नई शुरुआत की पहली किरण है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि आशा का सामान्य अर्थ उम्मीद, भरोसा या किसी अच्छी बात की पूरी होने की इच्छा है। किसी काम के पूरे होने की संभावना पर विश्वास रखना, भविष्य में कुछ अच्छा होने की चाह रखना, ये मन की भावना है और जिंदगी में उम्मीद के साथ जिंदगी जीने की चाहत बढ़ाती है। आशा दिल है छोटा सा और छोटी सी आशा।
1: एक हमारे साथी कहते हैं, आशा है तो जीवन में उजाला है, आशा है तो हर मुश्किल का रास्ता है। आशा केवल एक विचार नहीं बल्कि विषम परिस्थितियों में मुस्काने और आगे बढ़ने की अदम्य इच्छा शक्ति है। निराशा चाहे कितनी भी गहरी हो, आशा की एक किरण निराशा के पूरे पर्वत को पिघलाने का सामर्थ्य रखती है। जब मेहनत और धैर्य थकने लगते हैं तब आशा ही हमें अपनी मंजिल तक पहुँचाने का हौसला देती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और क्या लिखते हैं हमारे श्रोता?
1: आशा उस विश्वास का नाम है जो टूटते हुए मन को फिर से संभाल लेता है। कभी ये किसी अपने के दो शब्द से मिलती है, कभी किसी अनजान की मुस्कान में, तो कभी अकेलेपन में स्वयं से की गई बातचीत हमें आशा सिखाती है कि ठहराव अंत नहीं होता, कभी कभी यही ठहराव किसी नए सफर की तैयारी होता है।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कई बार हम ठहर जाते हैं ना जिंदगी में तो हम उदास हो जाते हैं, अरे जिंदगी तो हमारी
1: बोरियत हो गई,
0: उबाऊ हो गई, जिंदगी तो यही ठहर गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि अगले ही पल हम नए सफर की ओर निकल भी सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ खुशहाल होंगे। आशा उम्मीद की एक ऐसी किरण है जो निराशा का तमस यानी अंधकार चुटकियों में गायब कर सकती है। जैसे विविध भारती तुम आशा विश्वास हमारे, हम धरती तुम आकाश की प्रसारण तरंगे, जो सदा साथ रहती है हमारे, जब तक सांस है तब तक आस है।
1: क्या बात है। एक साथी कहते हैं कि वास्तविक आशा केवल निष्क्रिय इच्छा नहीं बल्कि संघर्ष से जन्म लेती है। जब हमारा धैर्य और हमारी क्षमताएं कठिन दौर से गुजरती है तब आगे बढ़ने की ललक ही आशा कहलाती है। जिस प्रकार शरीर को जीवित रखने के लिए

0: लेने साज जरूरी है, ठीक उसी प्रकार मन को जीवंत रखने के लिए आशा अनिवार्य है। आशावादी व्यक्ति कभी हार नहीं मानता, वह हर असफलता को नई शुरुआत का अवसर मानता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को कभी टूटने ना दे, क्योंकि एक बेहतर कल की शुरुआत हमें आज की उम्मीद से होती है।
1: और अब हमारे श्रोताओं को आशा है कि हम एक गीत उनको सुनाएंगे।

0: हमारी भी छोटी सी आशा यही है सोनाली कि आज लौकी के जो व्यंजन है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं।
1: एक सखी ने लिखा है कि हमारे प्रांत में लौकी सात्विक भोजन में आता है, छठ पूजा के पहले दिन इसे खाया जाता है। इसकी सब्जी, इसकी पकौड़ी, लौकी को घिसकर गेहूं के आटे में मिलाकर इसके पराठे बनते हैं, घिसकर इसके कोफ्ते बनाए जाते हैं, बड़े टुकड़ों में काटकर उबालकर इंस्टेंट अचार भी तैयार होते हैं। कार्तिक मास की एकादशी में इसका हलवा और खीर बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाया जाता है।
0: क्या बात है, यानी लौकी इतनी स्वादिष्ट भी होती है और महत्वपूर्ण भी होती है। एक ही लौकी की थाली पीठ बनाने की विधि बताइए। बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता है। इसे बनाने के लिए कद्दू की हुई लौकी, गेहूं का आटा, बेसन, ज्वार का आटा, कटा प्याज, मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, बड़ा चम्मच सफेद तिल और अजवाइन जीरा, छोटा चम्मच और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सभी नमक स्वादानुसार चाहिए। हींग चाहिए, कटा हुआ धनिया, तेल या घी सेकने के लिए। एक बड़े कटोरी में कद्दू की हुई लौकी ले, लौकी का पानी नहीं निचोड़ना क्योंकि इसे पानी से आटा गूंदा जाएगा। इसमें सभी सामग्री मिलाकर नरम आटे जैसा गूंद लें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। एक साफ सूती कपड़े को गीला करके चकले पर फैलाएं। आटे की एक लोई लें और उंगलियों में थोड़ा सा पानी लगाकर कपड़े पर थाली पीठ को गोलाकार में फैलाएं। बीच में अपनी उंगली में 3-4 छोटे छेद कर दें। अब तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा लगाएं। कपड़े वाले थाली पीठ को कपड़े सहित तवे पर उल्टा पलट लें और धीरे से कपड़े को हटा लें। इसे दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लें और दही और हरी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं।
1: अब थाली पीठ आपने बनाना सिखाया है तो मैं लौकी का रायता बनाना बताऊंगी।
0: अरे,
1: एक सखी ने हमारे लिखकर भेजा है, लौकी का रायता बहुत ही स्वादिष्ट और ठंडक देने वाली डिश है जिसे आप सिर्फ 20 मिनट में बना सकते हैं। 250 ग्राम लौकी को छीलकर कद्दूकस कर ले, ताजा दही 2 कप फेटा हुआ, भुना जीरा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच सादा नमक, स्वादानुसार हरी मिर्च 1-2 कटी बारी और धनिया बारीक कटा हुआ। तड़के के लिए तेल या घी, जीरा, हिंग, राई बनाने की विधि। कद्दूकस की हुई लौकी में थोड़ा सा पानी डालकर बर्तन या कुकर में नरम होने तक उबाल ले। उबली हुई लौकी का अतिरिक्त पानी निचोड़ ले और पूरी तरह से ठंडा होने दे। एक बाउल में ताजा दही ले, उसमें फेंट ले। फेंटे हुए दही में उबली हुई लौकी, हरी मिर्च, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक डालकर अच्छी तरह मिलाए और एक छोटे पैन में तेल घी गर्म करके उसमें तड़का लगाए और उसके ऊपर रायते के ऊपर डाल दे और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया डालकर ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है, और इसके साथ ही मैं आपको लौकी का स्वादिष्ट हलवा भी खिलाऊंगी सोनाली, है ना। ये कहते हैं कि कद्दूकस कर लें लौकी को, दूध और घी के साथ इसे पकाया जाता है। लौकी ले लें, देसी घी ले लें, दूध ले लें, चीनी ले लें, मावा ले लें, ड्राई फ्रूट चाहिए, इलायची पाउडर है, फूड कलर है, आपको अगर चाहिए तो कम मात्रा में लें थोड़ा सा। और लौकी को तैयार करने के लिए सबसे पहले उसको धोकर छील लें। छीलने के बाद चक्कर जरूर देख लें, कड़वी तो नहीं है, पता चलेगा
1: जरूरी
0: है। कड़वा हलवा खा रहे हैं हम। अब लौकी को मोटे कद्दूकस से, महीन नहीं, मोटे कद्दूकस से कद्दूकस कर ले। कद्दूकस तभी करें जब हलवा बनाना हो, वरना लौकी काली पड़ सकती है। हाथों हाथ करना है। लौकी को भूने एक भारी तले की कढ़ाई में 1-2 चम्मच देसी घी गर्म करें। इसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालें और मध्यम आंच पर पकाएं 5-7 मिनट तक। इसका पानी सूख जाना चाहिए। दूध डालकर पकाएं। भुनी हुई लौकी में गर्म दूध मिलाएं। इसे मध्यम तेज आंच पर पका लें। जब तक दूध पूरी तरह सूख नहीं जाए, लौकी अच्छी तरह गल नहीं जाए, बीच बीच में चलाते रहे, हलवा नीचे नहीं लगना चाहिए। चीनी, फूड कलर और मावा मिलाएं। जब दूध सूख जाए तब इसमें चीनी और मावा डाल दें। चीनी डालने के बाद मिश्रण थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, इसलिए इसे गाढ़ा होने तक फिर से थोड़ी देर पकाएं। ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, अंत में घी में हल्के हुए तले हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दें और स्वादिष्ट और रसीली लौकी का हलवा आपको तैयार मिलेगा। इसे घी से ग्रीसिंग की हुई थाली में डालकर चाकू से काटकर चौरस टुकड़ों में कर लें ताकि वो चक्की का आकार दे दे और गर्मा गर्म परोसे। स्टोर करने के लिए आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं और ठंडा भी खा सकते हैं।
1: और इसी तरह एक साथी ने इसी तरह जैसा हलवा बनाया वैसे ही खीर बनाने की भी रेसिपी लिखकर भेजी कि जैसे हलवे को हम बहुत ज्यादा सुखा लेते हैं तो उसको ज्यादा सुखाए नहीं तो उसकी खीर बन सकती है।
0: यहाँ पर ये हो सकता है कि लौकी को थोड़ा महीन कद्दूकस कसले है ना, ताकि लौकी खीर में कन्वर्ट हो जाए, है ना।
1: और जो हमने जो आपने हलवा की रेसिपी बताई उसे और ज्यादा सुखा लिया तो उसकी बर्फी भी बहुत अच्छी बनती है।
0: कई बार क्या होता है, माए इडली बनाती है ना, उसमें भी लौकी डाल देती है ताकि बच्चों को
1: सांभर में
0: भी है। और जब इडली हम पकाते हैं ना तो कद्दूकस की भी लौकी उसके अंदर भर देती है ताकि जो इडली भी खाई जाएगी
1: और
0: लौकी भी पेट में पहुंच जाएगी बच्चों के। ये चालाकियां माँ को करनी पड़ती है।
1: पराठे बनाती है, पकौड़ी बनाती है और ना जाने कितने कितने तरीके से दलिया में डाल देगी, खिचड़ी में डाल देगी, सांभर में डाल देगी, पर बच्चे को

0: तो सोनाली, हमारे श्रोता तो हमसे खींचे हुए नहीं है,
1: और अगर कोई लौकी का हलवा लौकी के व्यंजन खिला देंगे तो कोई कैसे खींचेगा।
0: वही तो हमने कहा, वो खींचे हुए नहीं है। लेकिन हाँ, उन्हें ये पता है कि अब जो है हम आगे और उनके साथ गुफ्तगु नहीं कर सकते हैं। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: सोनाली पाठक का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं टीवी और फिल्म अभिनेता संजीव शर्मा से जी श्याम की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज हमारे स्टूडियोज में एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत यहाँ पर उपस्थित है और उनका अनुभव और खास करके जो रेडियो के साथ इनका संबंध है, हमारी जो पहले बातचीत हुई है उसमें, तो ये बिल्कुल साबित होता है कि ये हमारे जितने श्रोता सुन रहे हैं ये आप ही की तरह हैं, आप में से ही निकले हैं, और जब आपसे मुखातिब हैं तो निश्चित रूप से आपकी अपनी बात ही कहेंगे। और जहाँ तक इनके काम की बात है तो बातचीत में आगे आपको पता चलता ही रहेगा। जैसे ही आपको इनका काम पता चलेगा तो इनका चेहरा भी आपके सामने नजर आ जाएगा, और वो चेहरा इतना खूबसूरत है जो आप

0: हमेशा देखना भी पसंद करेंगे और साथ ही साथ आने वाले दिनों में भी इन्हें आशीर्वाद भी देंगे और एक दर्शक के रूप में इनके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम जो है श्री संजीव शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्टूडियोज में स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू सो मच श्याम जी, थैंक यू सो मच विविध भारती, ईच एंड एवरीबडी और आप जितने सभी लोग हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी कई सालों की मुराद पूरी हुई। शाहरुख खान सर ने अपनी फिल्मों में कहा है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि सारी कायनात मजबूर हो जाए वो आपको देने के लिए। तो टीवी फिल्म वेब सब करने के बाद एक तमन्ना ये थी कि रेडियो पे काश एक बार मौका मिले मुखातिब होने का। तो आज ऊपर वाले ने शायद मेरी वो प्रार्थना सुन ली। मिस्टर नितिश अरोड़ा से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक पर, उन्होंने पूछा मुझसे कि आप रेडियो करना चाहेंगे, मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है। तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीज़ों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज

0: रेडियो करना चाहेंगे? मैं कहा हाँ बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर बातें आगे बढ़ी और आज मौका है कि आज मुंबई विविध भारती में मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप सभी टैलेंटेड लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उन सबके विषय में बैठा हुआ हूँ और आज मेरा इंटरव्यू है। तो बहुत ही स्पेशल फील कर रहा हूँ, बहुत ही अलग महसूस कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से मन में एक द्वंद्व चल रहा था, कुछ चीजों को लेकर चलता है, सभी की लाइफ में चलता है, लेकिन आज यहाँ आकर मैं इतना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ कि एक दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम आएगा तो मैं अपने कानों से अब सुनूंगा कि विविध भारती पर संजीव शर्मा यानी मैं ईश्वर का बंदा है, जो एक फैमिली मैन है, जो अपने गुरु का भक्त है, जो अपने दोस्तों का दोस्त है और जो अपने प्रोड्यूसर्स, अपने डायरेक्टर, अपने को एक्टर्स का यार है, दोस्त है। तो आज वो यहाँ बैठ के अपनी आवाज कोशिश करेगा कि अच्छे से एक मैसेज, अच्छे से अपने बारे में कुछ बातें, कुछ अच्छे संगीत, कुछ म्यूजिक, कुछ गाने। तो यहाँ पर एक मौका मिला है उसको पेश करने का और थैंक यू श्याम जी, आपके सामने बैठने की हिम्मत कर पा रहा हूँ। इतनी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं कि मुझे लग रहा है मैं रेडियो पे बैठा हुआ हूँ और मैं सामने से बात कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। विविध भारती को इतने प्यार से आपने याद किया है और आज साथ भी मिल गया है विविध भारती का।
0: विविध भारती की एक लाइन मुझे भी मैडम होता है कि सुरीली धड़कन, जब से पैदा हुए हैं सर कानों में वही आवाज
1: जी,
0: वही आज भी याद है कि हवा महल का म्यूजिक, सैनिक भाइयों के लिए प्रोग्राम जयमाला, छाया गीत
1: जी,
0: और कृषि भाइयों के लिए प्रोग्राम। तो ये सब चीजें जो हमारे कान में बचपन से ही, जैसे कहते हैं ना कि मतलब गुरु कुछ मंत्र कहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आवाज जो है ना रेडियो की, स्पेशली विविध भारती की, तो आज भी उन लोगों की आवाज कहीं ना कहीं मन में घूमती रहती है। और पेश है सैनिक भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम। ये तो मरने के बाद ही खत्म होगा, लेकिन जब तक जीवित हैं मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं या वो लोग जिन्होंने विविध भारती को सुना है अब तक, क्योंकि अब तो काफी चेंजेस हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता सर कि ये ऐसी चीज है जो आप कभी आसानी से भूल पाएंगे। और आज वहीं उसी जगह पर बैठकर, उसी स्टेशन पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी किस्मत है कि मेरी यहाँ बैठकर मैं बोल पा रहा हूँ, बोलने की हिम्मत जुटा पा रहा हूँ।
1: क्या बात है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि आपके पुराने दौर को याद करने की कोशिश करते हैं, करवाने की कोशिश करते हैं। ये सफर जो यहाँ तक पहुँचा है आपका, जाहिर है हर तरह से कभी अड़चने भी आती हैं, कभी कई लोग मिल जाते हैं, जो पूरी कायनात मिल जाती है, जैसा भी आपने कहा, वो चीज दिलाती है, वो आपका जो सोचा हुआ काम है वो दिलाता है, जो सोची हुई बात है वो करने के लिए आपको सहयोग देता है। तो शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, जन्म से करते हैं शुरुआत अगर करनी है तो बिल्कुल। कहाँ जन्म हुआ आपका?
0: सर मेरा जन्म हुआ गाजियाबाद में, जो यूपी में है, दिल्ली एनसीआर में आता है, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ।
1: और पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी? बचपना कहाँ बीता आपका?
0: बचपन सर गाजियाबाद में बीता, बेसिक शिक्षा भी वहीं हुई 8वीं तक। उसके बाद मेरे पापा जो बैंक में थे, उनके ट्रांसफर होते रहते थे, तो फिर मौका मिला उनके साथ विभिन्न शहरों में जाने का, वहाँ की स्कूल और कॉलेज में पढ़ने का। उसके बाद मैं वापस आया गाजियाबाद, मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की।
1: किस विषय में किया आपने?
0: सर मैंने बीकॉम किया था, एक सपना देखा था कि सिविल सर्विस करने का, उसके लिए फिर मैंने एमए हिस्ट्री ज्वाइन किया, फिर हिस्ट्री को अध्ययन किया पूरा, एग्जाम दिए, सब कुछ किया, बट समहाउ क्या होता ना, राहें आपकी अलग अलग लिखी होती, लेकिन मलाल नहीं है कि हाँ मैंने ये नहीं किया, हाँ
1: नहीं, लेकिन किया। इतिहास की आपने जब बात की जी, तो आपके जितने सीरियल्स हैं
0: जी,
1: जो धारावाहिक हैं, वो ऐतिहासिक न भी कहें तो पौराणिक तो है ही, पुरानी चीजों से जुड़े हुए, जो आपको पसंद था, आपने वो एग्जाम के लिए तैयारियों के लिए किया था जरूर, लेकिन वो आपके अंदर था और वो आपको मिलना था, तो वो दूसरे किरदारों के रूप में, माइथोलॉजी के रूप में, एक स्क्रीन पर जो है घर घर पहुंचने के रूप में आप तक पहुंचाए हो।
0: आपने मेरी बात को बिल्कुल सही पकड़ लिया एकदम, कि वो कहता है ना समथिंग हैपन फॉर समथिंग, मतलब
1: बिल्कुल
0: कुछ होता है किसी चीज के लिए, तो वही शायद जिंदगी में लिखा था। क्या लोग उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फर्क लगता है कि सोशल सीरियल में और माइथो में डिफरेंस क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, किसी जर्नलिस्ट सर ने पूछा था मुझसे, तो पता नहीं कहां से मेरे अंदर एक आंसर आया कि सर क्या होता है कि जो सोशल सीरियल होते हैं ना, उसमें सोशल लाइफ हम जो जी रहे हैं वही कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम माइथो करते हैं और जब हम उस यूनिफॉर्म, उस ड्रेस को पहनते हैं, उस गेटअप में, उस मुकुट में, उस महल में जो बना हुआ होता है, जो सामने भगवान विष्णु खड़े हैं, भगवान महादेव खड़े हैं, मतलब एक अपीयरेंस ऐसा होता है कि उससे हम लगता है कि यार ये चीज जो मुझे अभी फील हो रही है, ये चीज रियलिटी में कैसी होगी, शायद ऐसी ही होगी, तो एक अलग ही युग में चले जाते हैं, एक अलग ही माहौल होता है वो, एक माइथो मतलब एक पुराना भक्ति में एक माहौल होता है कि यस सामने प्रभु खड़े हैं, ये खड़े हैं, नारद जी खड़े हैं, वी आर डिस्कसिंग एन ऑल, पार्वती, जैसे मैंने अभी शिव शक्ति मैंने किया था, तो पार्वती डॉटर का किरदार उन्होंने किया, तो वो एक अनुभूति ही अलग होती है सर, वो माइथो करने की, वो बहुत पेनिंग भी होता है, आपका जो कॉस्ट्यूम होता है बहुत, कभी चुभ रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, गर्मी होती है, कई बार एसी नहीं चल रहा होता, लेकिन फिर भी आप एक मुस्कान

0: साथ वहाँ खड़े होते हैं और अपनी मतलब अदाकारी को वहाँ निभा रहे होते हैं, और जैसे ही कट होता तो आप ओहो ये चुप
1: लेकिन
0: जैसे ही एक्शन
1: आपके मुस्कान जो है ईश्वर ही है, बिल्कुल आप उसी तरह से मुस्कुराते हैं। अच्छा ये बताइए कि
0: जी
1: सामाजिक जो है, फिल्में हो या फिर धारावाहिक, तो जो समाज में घट रहा होता है हम स्वयं भी उसे देखते हैं, उसके साथ में वाबस्ता होते हैं हम, तो हम उन किरदारों को कर सकते हैं,
0: जी
1: लेकिन जो किरदार देखे नहीं
0: देखे
1: हैं,
0: ही नहीं।
1: माइथोलॉजी के जो किरदार्स हैं, वो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो देखे हुए नहीं रहते, तो
0: देखो
1: उन्हें करने के लिए कैसी अलग से तैयारी क्या करनी पड़ती है, क्या भाव आता है? अगर आप शिव जी का पार्ट कर रहे हैं किसी एक धारावाहिक में, तो शिव जी की तरह फील करना, शिव जी की तरह दिखना, वो तो मेकअप से और वगैरह जो पहले से हमारे पास छवियां हैं
0: जी
1: उन छवि के आधार पर, लेकिन जब आप परफॉर्म करते हैं तब क्या डिफरेंस रहता है, आपको क्या लगता है तब?
0: इसका जवाब मैं आपको ऐसे देना चाहूंगा श्याम जी, के जब हम एक पुलिस वाले का करेक्टर करते हैं, अगर हम कोट पैंट पैंट शर्ट पहने तो हमारे वो एक फीलिंग अलग होती है, जब वो यूनिफॉर्म हम लोग जो पहनते हैं तो वो जो फील आता है ना, वैसा ही फील आता है जब आप माइथो में एक करेक्टर
1: कॉस्ट्यूम्स
0: का, हाँ,
1: पहनते हैं।
0: कॉस्ट्यूम है, एक माहौल है। और मेरे साथ तो सर ये थोड़ा सा मतलब मेरा गुड लक ये रहा है कि मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ हूँ और काफ़ी विषयों की मेरी जानकारी भी है अपने धर्म के बारे में भी, हालांकि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है, आप बचपन से जिस माहौल में रह रहे होते हो तो उसमें आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जानने के लिए, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, देखी होती हैं, आपने फोटोग्राफ देखे होते हैं, आपको पता, हाँ यार ऐसे ही होगा। लेकिन जब आप उस गेटअप को, उस करेक्टर को धारण करते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, कि वो एक ऑटोमेटिकली आपकी जो शैली है, जो आपका जो एक मन है ना, मैं उसको एक शब्द क्या दूं, कि आपका ना एवरीथिंग गेट चेंज, यू नो, हर चीज बदल जाती है, आप वैसे ही बिहेव करने लगते हो, क्योंकि आपको बस उस गेटअप निभाने की एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं यार मैं इसके साथ एक न्याय करने वाला हूं, मतलब मैं इसको धारण किया हुआ है। एक एक्टर का पूरी कोशिश होती है कि वो जो अपने व्यूअर्स हैं, उनको जो देखने वाले हैं, उनके साथ वो न्याय कर सके,
1: बिल्कुल,
0: तो उनको लगे हाँ यार ये आदमी बिल्कुल मतलब महादेव लग रहा है, या मतलब भगवान विष्णु के उसमें रूप में, या मेरी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी एक्टर उस कैरेक्टर को करते हैं उन सबकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उसके साथ ऐसा ही न्याय करें, धूमिल ना वो छवि जो है,
1: ये जिम्मेदारी बड़ी होती है,
0: बहुत बहुत बड़ी
1: और
0: जिम्मेदारी है।
1: सामाजिक फिल्में जो हैं या जो दूसरी कमर्शियल फिल्में आती हैं या धारावाहिक आते हैं, उसमें आपका मैनरिज्म भी काम करता है,
0: एग्जैक्टली
1: आपका अपना अंदाज भी काम करता
0: अंदाज
1: है,
0: काम आप
1: और उसमें आप थोड़ा इनोवेटिव भी हो सकते हैं और होते भी हैं, लेकिन इसमें आपके पास में वो छूट नहीं होती,
0: वो बिल्कुल नहीं होती सर, कोई इम्प्रोवाइजेशन का कोई चांस ही नहीं होता कि अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे ही। श्लोक जो है,
1: जी जी,
0: अगर आपको संस्कृत में बोले तो श्लोक को आप श्लोक की तरह ही बोलेंगे,
1: बिल्कुल,
0: आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते,
1: नहीं कर सकते, अलग अलग अंदाज में नहीं कह सकते।
0: जी जी, जैसे मेरा करेक्टर था भगवान वाल्मीकि का रामसिया के लवकुश में, कहानी स्टार्ट होती है सेकंड एपिसोड से मेरे ही आश्रम से।
1: अच्छा।
0: जब सीता जी एंटर करती हैं जंगल में और मैं उनको लेने जाता हूँ, तो उससे पहले उन्होंने भगवान वाल्मीकि की कथा बताई है
1: जी।
0: हम जब शूट कर रहे थे उसको, तो उसका प्रोमो शूट कर रहे थे, उसमें उन्होंने मुझे एक श्लोक लिख के दिया, वो श्लोक था पहली बार जब भगवान वाल्मीकि ने पहला जो संस्कृत श्लोक बोला था, तो वो मुझे पढ़ने को दिया। और सर एक एज एन एक्टर एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो श्लोक जैसा है उसको वैसे ही पढ़ा जाए, उसका उच्चारण वैसे किया जाए, तो उसके लिए मैंने कम से कम नहीं तो सर 100-150 बार उसको पढ़ा। मेरी वाइफ ने मुझे पूरा उसका जो एक एक प्रोनाउंसिएशन है वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजा, बाकी लोगों से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग मंगाई कि इसको बोला कैसे जाए, फिर मैंने उसको कॉपी करके या उसको समझ के तब मैंने वो शॉट दिया। भगवान वाल्मीकि का पहला श्लोक था जो संस्कृत में निकला था, वहीं से श्लोकों की शुरुआत हुई थी ऐसा माना जाता है।
1: क्या बात है, चलिए शुरुआत तो हमारी भी हो गई है बातचीत की
0: जी।
1: लेकिन हमारे अपने कार्यक्रम में, आप सुनते हैं कार्यक्रम, आपको पता है
0: जी,
1: कि इस कार्यक्रम में बातचीत के साथ साथ हम आपकी पसंद के गाने भी सुनते हैं और सुनवाते हैं
0: जी जी।
1: तो बताइए कि इस मौके पर कौन सा पहला गीत होगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका पहला धारावाहिक कौन सा था, ये पहला जो स्टेज का या जो भी परफॉर्मेंस का जो मंच था आपका वो कौन सा था, वो हम बाद में करेंगे
0: जी जी।
1: फिलहाल पहला गीत इस कार्यक्रम का कौन सा होगा जो अपने श्रोताओं को आप सुनाना चाहेंगे?
0: सर मुझे ना पुराने गीत बहुत पसंद है, वो पुराने नहीं है, वो आज भी नए हैं बेसिकली।
1: बिल्कुल।
0: तो जो पहला सॉन्ग है जो मैंने सुना जब मुझे समझ हुई थोड़ी सी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के, कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो।

0: संजीव शर्मा जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम बात करेंगे आपके पहले परफॉर्मेंस की, जो पहला परफॉर्मेंस आपका था वो कहाँ पर और कैसे, और इस क्षेत्र में जो आपकी रुचि हुई वो किस तरह से हुई।
1: सर, मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ना सब लोगों में बचपन से होती हैं। हर कोई आदमी गाना गाना चाहता है, गाना सके लेकिन गुनगुनाता जरूर है। एवरीबडी इज एन एक्टर। हम घर पे छोटी मोटी एक्टिंग करते रहते हैं, कभी पेट में दर्द हो गया, बचपन में करते थे। तो एक्टर तो हम सभी हैं और सिंगर भी हम सभी हैं और डांसर भी हम सभी हैं। तो ये कुछ विधाएं हैं जो हमेशा से, हम ड्राइंग भी बनाते थे, हम जादू भी दिखाते थे, तो कुछ विधाएं हैं जो बचपन से रहती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो वो कहता ना, एक लिखा होता है कि आपकी लाइन के आपको कहाँ जाना है, विधाता ने डिसाइड करके भेजा होता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आप उसी राह पे चलते हैं, आप कई जगह इधर उधर भटकते हैं लेकिन अंत में आप वहीं पहुंचते हैं जहां आपको जाना होता है। ये सत्य है जीवन का। मैं भी चाहता था सर, लेकिन शुरुआत ऐसे हुई सर कि मैं जब 8th क्लास में था, उससे पहले हम सब करते रहते हैं एक्टिंग डांस वन सब। तो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारी एक टीचर हैं, अभी भी हैं, बलबीर कौर जी, उनका नाम मैं लेना चाहूंगा स्पेशली, क्योंकि वही जो कहते हैं ना, कीड़ा जो उन्होंने डाला दिमाग में वो ही।
0: अच्छा, ये जो अच्छे काम जितने होते हैं उसके पीछे ये कीड़ा कहाँ से आ जाता है?
1: सर, एक कहावत है ना कि
0: रुचि जगाई,
1: कि मतलब हाँ, मतलब रुचि जगाई या किसी ने पिंच किया या किसी ने मतलब
0: उस और प्रेरित
1: आपको चूज किया, तो वो एक आम भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा।
0: हाँ नहीं, बड़ा अच्छा है ये कीड़ा,
1: तो अच्छा रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो सर वो हमें कॉमर्स पढ़ाया करती थी और बहुत स्ट्रिक्ट थी वो, और उनको देख के मतलब सामने मतलब पैर कांपने लगते थे। शैतान तो हम शुरू से थे।
0: अभी तो नहीं है ना?
1: अभी भी कभी कभी। और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति को शैतान होना चाहिए। तो काम न करना, कुछ न करना, सजा मिलती रहती थी, कभी हैंडसेप कर लो, कभी कुछ कर लो। हमारे स्कूल में एक 26 जनवरी को एक कुछ प्रोग्राम होते हैं ना स्कूल में, जैसे होते हैं, तो प्रोग्राम का आयोजन हो रहा था, तो मैडम जो है बलबी मैम, वो एक नाटक का मंचन कर रही थी, निर्देशन कर रही थी उसका। नोबडी वॉज इंटरेस्टेड बेसिकली, तो वो उनको पकड़ पकड़े खींचना पड़ा। तो मेरी क्लास में आई, देखा ऐसे करके, अच्छा ए यू संजीव शर्मा कम आउट, क्या हो गया, आउट आउट। देखा बहुत सारे 10-12 लोग जो लाइन में खड़े हो गए, क्या चल रहा है, ऑडिशन चल रहे हैं, अच्छा ये लाइन बोल के दिखाओ। हमने एक लाइन बोली, अच्छा ठीक है तुम रुको, जो अच्छे लगे उनको रख लिया, बाकी को भेज दिया। हम एक नाटक कर रहे हैं बहू की विदा, उसमें ऐसे ऐसे दहेज के ऊपर कहानी है और तुम्हें लड़की का भाई बनना, तुम्हारी एक ही लाइन है। ओके मैडम, मरता क्या ना करता। रिहर्सल शुरू हुई सर, वो एक लाइन करते करते करते करते पता नहीं, आई डोंट नो, वो जो मेन रोल था ना, जो एक बुजुर्ग है जो ससुर का कैरेक्टर कर रहे थे, तो उनका बहुत बड़ा रोल था। वो करते करते पता नहीं क्या हुआ, मैडम बोली ससुर का रोल आप करोगे। मैंने कहा मैडम मतलब ये क्या, ये हो नहीं सकता, तो मतलब मैं तो एक लाइन के लिए आया था। नहीं नहीं नहीं नहीं, अब तो ये तुम ही करोगे। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या देखा, आई डोंट नो सर। वो 8th क्लास में मैंने एक बुजुर्ग का कैरेक्टर किया जो दहेज का लालची होता है, पूरे बाल सफेद करके, मूछ वूछ लगा के, सब अरेंजमेंट करके, और बहुत प्रशंसा मिली सर। डर भी बहुत लगा, पैर कांपते थे, लेकिन वो मैडम को चेहरा देखते बिल्कुल नहीं भाई, मैडम यहाँ मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आई एम सो सॉरी, बट वो आपका ही प्यार था जो आज मैं यहाँ

0: बैठा हुआ हूँ, आपकी गाइडेंस थी
1: वो बहुत अच्छा लगा सर, सबको बहुत अप्रिसिएशन मिला, मार्क्स भी अच्छे मिले। उसके बाद 3-4 साल तक, मतलब 9th 10th 11th 12th तक कोई वो नहीं था, लेकिन मन में यह था कि नहीं यार, जब फिल्में देखने जाते थे कि तो मेरे फ्रेंड्स लोग बोलते थे, क्योंकि मैं अलग बैठता था, मैं आज भी सच में फिल्म देख रही हूँ तो मैं किसी के साथ नहीं बैठता हूँ, मैं अकेला बैठता हूँ, बहुत गौर से फिल्म देखता हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स कहते थे पंडित जी तुम तो सोच रहे होंगे कि अगर मैं होता तो कैसे करता। मैं एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर मगर मैं यहाँ होता तो मैं कैसे कर रहा हूँ।
2: क्या बात।
1: तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो चीज़ें हो गई, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मतलब शादी हो गई, फिर क्या हो गया,
2: तो सब अच्छा हुआ ना,
1: सब अच्छा ही हुआ। वो नहीं होता सर आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
2: हाँ ये बात सही है।
1: उन सबके प्रेरणा से, उन सबके सपोर्ट से एक दिन मौका मिला मुंबई आने का। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे तैयार किया इसके लिए, एक साल पहले तैयारी कराई, मतलब मेरा वेट लॉस, मेरा लुक वगैरह सब, एवरीथिंग चेंज, मेरा फोटोशूट वगैरह। तो फिर मैंने एक कदम रखा सर, पूरे हिम्मत जुटा के, मैं छुट्टियों में आता था, आई वॉज डूइंग जॉब बेसिकली, छुट्टियों में मैं आता था, ऑडिशन देता था, लुक टेस्ट देता था। पहला जो मुझे सीरियल मिला उसका नाम था दो हंसों का जोड़ा, और बेसिकली दैट वाज अ कैमियो कैरेक्टर। तो जब मैं आया था मुझे ये नहीं पता था कि कैमियो क्या होता है या मेन रोल क्या होता है या ये, तो ये तो अब पता लगा है। तो मेरे को जब प्रोडक्शन से कॉल आया, राशि प्रोडक्शन का वो पहला सीरियल था मेरे लिए, उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले संजीव जी आप कैमियो करते हैं क्या? मैंने कहा वो क्या होता है? बोले मतलब ये कुछ दिनों का काम होता है और एक इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है। मैं कहा टीवी पे आएगा ना? बोले हाँ बिल्कुल। मैं कहा तो ठीक है मैं करूंगा। तो इसे समझ नहीं थी कि मतलब क्या होता है, ठीक है एक बार आना दिखना है क्या होता है। वो 2-3 दिन का काम था शायद, वो हफ्ते भर पूरा चला, वो पूरा सिक्वेंस था। एक जो डांस कॉम्पिटिशन का जज होता है, जो विलेन होता है, वो मैंने करेक्टर किया, वो हफ्ते भर चला सर, बड़ा अच्छा लगा करके, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली, पैसे भी मिले। फिर उसके बाद एक और ऑडिशन मैंने देने गया, तो विक्रम भट्टी की फिल्म थी हॉन्टेड करके, तो बहुत छोटा करेक्टर मतलब ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात क्या थी सर, मेरे लिए करेक्टर से मायने नहीं था, मेरा था कि मैं उन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूँ जिनको मैं देखता था कि यार ये लोग टीवी पे आते हैं या ये लोग ये काम करते हैं, वैसे ही जैसे आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ विविध भारती में, और मैं आप सब लोगों को सुनता हूँ, पहले भी और लोगों को सुनता था, तो मैं सोचता यार ये लोग कैसे काम करते, तो आज मुझे पता लग रहा है कि ऐसे काम होता है। तो वही फीलिंग मेरे लिए तब थी, आप डायरेक्टर के सामने बैठे हो, आप एक्टर्स के सामने बैठे हो, वो चीज़ कैसे हो रही है, शॉट कैसे ले रहे हैं, डायलॉग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें ना मेरे लिए वो लर्निंग पीरियड था। जब मैं पैसे या मेरे लिए करेक्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो बस मैं वापस जाता जॉब करता, जब छुट्टी मिलती तो मेरी टिकट ऑलरेडी बुक रहती, मेरी फैमिली कहती थी कि यार अब छुट्टियों का टाइम आया हुआ है, अब तुम बॉम्बे चले जाओगे, ये भी एक फेज था। फिर धीरे धीरे करते करते मैंने शिफ्टेड टू मुंबई, और उसके बाद फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो जब आप पूछेंगे कैसे तो मैं बताऊंगा फिर।
2: हाँ मैं पूछूंगा जरूर आपसे, लेकिन अभी रोक दूंगा अपनी बात को।
1: जी जी,
2: क्योंकि मैं गाना पूछूंगा आपसे।
1: गाना सर एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, तेरे मेरे सपने। वो एक फैमिली की जो एक ड्रीम होता है ना कि जब आप आगे बढ़ते हैं, वो एक सपने बुनते हैं, उस पर जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है, और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो एक ही रंग हो जाता, कोई लक्ष्य ही नहीं है, सबका लक्ष्य ये है कि हम उस सपने को पूरा कर लें। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है।

0: श्रोताओ, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, जहां पर हम बातचीत कर रहे हैं एक्टर संजीव शर्मा जी से। संजीव जी अपनी बातें बता रहे हैं, बड़े ही प्यार के साथ बता रहे हैं, और उसी प्यार को आगे लिए चलते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: संजीव जी, फिर जब आपको ऐसा लगा कि ये रोल मेरा जो है पहला रोल, मैं इसको मान सकता हूँ जिसमें आपने थोड़ा बड़ा किरदार निभाया हो, ऐसा कोई धारावाहिक?
1: सर, मेरे 4 ऐसे सीरियल हैं जिनको मानता हूँ कि वो एक मार्क है मेरी लाइफ के लिए अभी तक। और सबसे बड़ी बात है सर कि वो जो 4 सीरियल हैं मुझे सेम प्रोडक्शन ने दिए।
0: अच्छा,
1: ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ सिद्धार्थ तिवारी सर का, अमोल जी का, राहुल तिवारी सर का, ये जिनके प्रोडक्शन ने मुझे 4 बड़े सीरियल दिए सर। बाकी उससे पहले मैं काम कर ही रहा था, लेकिन वही 3 मंथ्स 6 मंथ्स मतलब ठीक है। लेकिन वो जो सीरियल हुआ, जैसे राधा कृष्णा, बहुत फेमस सीरियल था सर, स्टार भारत का, तो उसमें मेरा करेक्टर था अक्रू जी, बेसिकली कंस के सेनापति होते हैं।
0: अच्छा।
1: और विलन साइड में हम 2 ही लोग थे, कंस और अक्रूर।
0: अच्छा।
1: और दूसरी साइड पे भगवान कृष्ण, बलराम जी एंड सो ऑन। ये भी मुझे एक्सीडेंटली मिला, मतलब पहले कोई और कलाकार कास्ट हो गए थे, फिर कुछ हुआ, फिर मेरी एंट्री हुई उसमें दोबारा थे। बट मैं बहुत विलिंग था उसको रोल को करने के लिए,
0: क्योंकि वो नेगेटिव रोल नहीं लगा आपको?
1: नहीं सर, वो नेगेटिव नहीं था एक्चुअली, मुझे लगता तो नाम सोचेंगे अक्रूर, तो इज दैट क्रूर एंड अक्रूर?
0: हाँ, क्रूर,
1: क्रूर नहीं है,
0: क्रूर नहीं है।
1: हाँ, ये मुझे लगा
0: कि अक्रूर है वो।
1: हाँ, वो अक्रूर है।
0: अच्छा अच्छा।
1: अक्रूर जी महाराज जी का मंदिर भी है राजस्थान, उनका कई जगह वर्णन आता है, तो मुझे लगा ये नेगेटिव करेक्टर है। लेकिन हाँ, शुरू में क्या होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब वो नेगेटिव नहीं है, बट वो इस जो राज सिंहासन है
0: जी जी,
1: जिसपे कंस बैठे हुए हैं, इससे पहले उनके पिताजी बैठते थे, तो वो क्योंकि कृष्ण के नाना है और वो कृष्ण के मामा है, तो वो जो राज सिंहासन के प्रति जो मेरी आस्था है, मैं उसको निभा रहा हूँ। कई बार क्या होता है, आपका राजा कई बार गलत होता है, आप समझाने का प्रयास करते हैं, जो आपका जो बॉस होता है, ऐसे मत करो प्लीज, लेकिन आप उसे बंधे हुए उससे। लेकिन एक टाइम ऐसा होता है कि जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती है, फिर आप कहते हैं कि ठीक है, मैं अब अपनी ड्यूटी करूंगा जो मुझे करना चाहिए। तो अक्रूर जो करेक्टर है वो उस सिंहासन से बंधा हुआ है, वो जो मथुरा का जो सिंहासन है वो उसके प्रति उनकी आस्था है, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। लेटर ऑन जब सब चीजें विफल हो जाती हैं, कंस पूरा प्रयास करता है कि भगवान कृष्ण को मार दिया जाए या कुछ भी कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो लेटर ऑन फिर सब दानव खत्म हो जाते हैं, सब असुर खत्म हो जाते हैं, तो अंत में अक्रूर ही बचते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कंस उनसे बोलता है कि नाउ, अब सब तो चले गए भाई, सबको कृष्ण ने खत्म कर दिया, अब दिस इज योर ड्यूटी, अब आप जाओगे और उन दोनों भाइयों को बंदी बना के लेके आओगे। अक्रूर कहते ओके, नो प्रॉब्लम यार, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, आप महाराज हैं। तो जब जाते हैं सर वहां पे मिलने, तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम बहुत छोटे बच्चे हैं, कहते यार इतने बड़े छोटे बच्चे और ये तो इंसानियत ही नहीं है। तो वो फिर भी प्रार्थना करते हैं कि भैया आपको एक वहां पे दंगल टाइप है, द्वंद्व युद्ध है वहां पे, तो महाराज कंस ने आपको इनवाइट किया है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, चल तो चलते हैं। उनका मन नहीं मान रहा होता, लेकिन वो बोला कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। तो वो कहते हैं कि यार मतलब आई एम सो सॉरी, कि मतलब मैं आपको बता दूं कि वो बेसिकली आपको मारने की तैयारी कर रहा है।

0: करता, बट मैं नहीं चाहता कि आप जाए। फिर वहां पर जो है भगवान कृष्ण को अपने विराट रूप दर्शन देते हैं कि मैं ये हूँ, तो वहां पर अक्रूर की भावनाएं बदल जाती हैं, उससे पहले वैसे शुरू हो जाती है क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इतने चमत्कार हो रहे हैं तो कोई ना कोई शक्ति तो है, तो वो फिर कृष्ण में हो जाते हैं। तो फिर वो उनको क्रूर वॉज द रीजन कंस को मारने की, जो भगवान कृष्ण बलराम को लेके जाते हैं और वहां पे फिर द्वंद्व युद्ध होता है, तो वहां पे कंस को मार दिया जाता है। तो ये एक करेक्टर जो मुझे बताया गया, तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने किया।
1: कैसा प्रतिसाद मिला उस करेक्टर का आपको?
0: बहुत सर, बहुत, मतलब मुझे इतना फेम मिला कि जो अक्रूर के जो वंशज हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो किया, मुझसे बात करते थे, मतलब बहुत बड़ी बात थी।
1: हमारे श्रोताओं के लिए भी ये जो कथा है ये अनसुनी है, और इसके अलावा भी जो दूसरे तीन और हैं, चार थे,
0: एक रामसिया के लवकुश जो कलर्स पे था, उसे मैंने लॉर्ड वाल्मीकि का करेक्टर किया
1: जी,
0: तो दैट वाज अ पैरेलल लीड करेक्टर। सीरियल की कहानी है कि जब सीता जी को वन में छोड़ दिया जाता है तो वहां पर वाल्मीकि जी उनको आश्रम में ले जाते हैं, वहीं पर ये लवकुश का जन्म होता है, तो इस कहानी वहां से स्टार्ट होती है। तो इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर, वंडरफुल करेक्टर, एवरीथिंग वॉज गुड। मतलब उसमें सर मुझे इतना, आई डोंट नो, अपने देश में तो मुझे पता नहीं लोगों ने बहुत अप्रोच किया, लेकिन मुझे इंडोनेशिया से, मुझे बाली से, जहाँ पर हिंदुज्म है जहाँ पर, वहाँ लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, मुझसे बातें की, मुझे बहुत एडमायर करते थे, मेरे बहुत पोस्टर बना के भेजते थे। और उसके बाद गुरु पूर्णिमा पे जो है मेरे पीछे सॉन्ग लगा के उसको एक रील बना के मुझे भेजते थे, तो देट वॉज एन स्पेशल फीलिंग फॉर मी।
1: तो आपको ऐसा नहीं लगने लगा कि जब आप इस तरह किरदारों के बीच में रहते हैं, उन्हें निभाते हैं, इस तरह के सेट्स होते हैं, भावनाएं होती हैं, जो डायलॉग्स संवाद जो हैं वो भी उसी तरह के होते हैं, आपका माहौल पूरा का पूरा भक्तिमय होता है?
0: बिल्कुल सर।
1: तो एक तरह से तो ये आपके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक व्यक्तिगत रूप से आपने जैसा कहा कि आप आस्था और विश्वास वाले व्यक्ति हैं,
0: जी जी,
1: तो आपके लिए तो अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ये भाव बढ़ता हुआ आपके जो एक्टिंग का जो कैरियर है उसमें कुछ बाधा तो नहीं बनता, क्योंकि आप उस रूप में ही दिखते हैं, तो कोई दूसरा कैरेक्टर जो है, एक अभिनेता भी आप हैं और आप अलग अलग किरदार करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, जैसे कि अभी आने वाले सीरियल की बात हम करेंगे उसमें भी आपने किया है, तो ये जो छवि है जो आपके साथ में रहती है, भक्तिपूर्ण छवि, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाती?
0: देखिए सर, काम तो कभी आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, आपका जो काम है जिसे आप शिद्दत से करते हैं, काम आपको चुनता है, आप काम को नहीं चुनते,
1: हम नहीं चुनते,
0: करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है। अगर आप बहुत सारी स्टोरीज बॉलीवुड की उठा के देखें कि पहले कोई करेक्टर कोई और करने वाला था लेकिन कोई और कर रहा होता है, जैसे आप गब्बर का अगर एग्जाम्पल लें, गब्बर वॉज अ बिगेस्ट करेक्टर ऑफ द बॉलीवुड, उसको पहले कई लोगों ने रिजेक्ट किया, फिर वो अमजद साहब के हिस्से में आया तो वो उनके लिए लिखा हुआ था। सेम एज ए जंजीर है, बहुत सारी फिल्में आप उठा के देखिए कि पहले किसी और को सुनाई गई थी लेकिन फिर किसी और ने किया, तो एक्चुअली रोल आपको, करेक्टर आपको ढूंढ रहा होता है, और आपको जो मिलता है आप उसे करना भी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं द गुड साइन फ्रॉम द गॉड कि भाई ये आप ही के लिए है और आप ही करोगे।
1: इसके लिए खास बात यह है कि उस प्रक्रिया में बने रहना,
0: बने रहना,
1: और उसके प्रति आपकी श्रद्धा भी होनी चाहिए, काम के प्रति, और उस काम की निरंतरता भी बनी रहनी चाहिए, इसलिए आपको ये अलग अलग जो किरदार हैं ये मिलते हैं,
0: क्योंकि काम ही आपको ढूंढता रहता है।
1: ये बात तो है, और कुछ गीत भी हैं जो कभी आपको ढूंढते हैं, कभी आप गीतों को ढूंढते हैं, तो ढूंढिए कोई अच्छा गीत।
0: इट इज अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त

0: एक बार फिर स्वागत करते हैं संजीव शर्मा जी आपका। बहुत अच्छी जो है लाइन्स आपने बड़े ही सुर में गाई अभी थोड़ी देर पहले, और फिर गीत भी हमने सुनवाया। क्या यही प्यार है? प्यार तो है। अच्छा ये बताइए, जो जीवन का व्यक्तिगत प्यार जो होता है, परिवार का आपने इस दरमियान बहुत बार जिक्र भी किया है अपनी बातचीत में कि आपको बहुत संभालते भी हैं और उनका भी सहयोग रहता है, तो बताइए अपने प्यार जो है आपका, आपका जीवन जो है।
1: देखिए, निजी पत्नी से इश्क और अदाकारी, वंडरफुल फैमिली आई हैव, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई, मेरी सिस्टर, दे ऑल लव मी, और धर्म पत्नी तो उन्हीं की गाइडेंस है जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरा बेटा शौर्य द वंडरफुल का है। यही चाहिए होता सर जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी फैमिली हो जाए, मनचाहा जीवन साथी मिले, और जो काम आप करना चाहते हैं उसमें आप लगे हुए हों, और ईश्वर साधना, गुरु का आशीर्वाद, दोस्तों का प्यार, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ चाहिए होता। यही एक अच्छी जिंदगी जीने का मूल मंत्र है।
0: क्या बात है। तो जो आपके धर्म पत्नी है उनका नाम?
1: उनका नाम उषा शर्मा है, और वर्तमान में वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो स्कूल है मुंबई में, वहाँ पे वो कार्यरत हैं।
0: और बेटा क्या कर रहा है आपका?
1: सर मेरे बेटे ने अभी 12th पास की है, और वो अभी कॉलेजेस सर्च कर रहा है, साइंस साइड उसने ली हुई है।
0: तो मम्मी तो उनके टीचर हैं, तो गाइडेंस तो मिली।

0: जाएगा बिल्कुल
1: सही।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और इधर आपके तरफ आने का कोई इरादा है? किन्हीं विधाओं से जुड़े हैं आपके बेटे?
0: नहीं सर, उनका यह है कि मैं रिसर्च में जाना, मुझे साइंस में।
1: आप भी ऐसा कोई दबाव नहीं डालते?
0: नहीं, मैं दबाव नहीं डालता सर। मेरा कहना है कि एक्टिंग ऐसा फील्ड है कि जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनसिक्योर टाइप रहता है जब तक आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो समहाउ आपको एक बैकअप प्लान चाहिए। लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बैकअप आप रख के आइए। मतलब एटलीस्ट आपने एजुकेशन ऐसी की हो कि कल को बाई चांस, भगवान न करे, वैसे मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ सबको काम मिले, सबका मेहनत सफल हो, बाई चांस नहीं हो पाया तो एटलीस्ट आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं अपने एजुकेशन के द्वारा। मैंने भी अच्छी एक एजुकेशन ली हुई है, लेकिन आप बैकअप तो रहेगा ना कि हाँ यार ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैं कोई जॉब तो कर लूंगा या मैं कोई बिजनेस तो चला लूंगा।
1: अच्छा, ये इतने सारे धारावाहिक किए हैं आपने, उसके बाद आपकी कौन सी इच्छा थी कि किस तरह का किरदार आपको निभाना है, कौन सी फिल्म आपको करनी है, किस तरह की फिल्म आपको करनी है?
0: सर आप यकीन मानेंगे, जब मैं शुरू में आया था तो जो भी मुझे देखता था ना, ये कहता था यार यू आर वेरी नेगेटिव आईज, नेगेटिव फेस, यू आर डिफरेंट काइंड ऑफ आईज, अलग ही लुक है आपका एक। मतलब शायद इसलिए कई बार मुझे एड मेरे हाथ से निकल जाते हैं, तो मैं कहता हूँ यार ये आंखें नेगेटिव नहीं, अगर ये आंखें नेगेटिव होती या मेरा फेस नेगेटिव होता तो मैंने जो इतने बड़े बड़े सीरियल किए हैं ये मुझे कैसे मिलते। तो आई वाज सरप्राइज कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ तिवारी, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ विजन ही हैज, नहीं नहीं यार ये करेक्टर तो आप ही करोगे। और सच मानिए उनकी सोच इतनी आगे है कि जो भी मैंने करेक्टर किया, जैसे मैंने हिमवान अभी किया था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल करेक्टर। सर मैं इतना रोया हूँ ना उस सीरियल में, इतना रोया हूँ कि मैं एक बेटे
1: हिमवान आपने
0: शिव शक्ति में मैंने जी, जिसे पार्वती दोबारा जन्म लेती हैं सती बनने के बाद, तो मेरी दो बेटियां गंगा और पार्वती, इतने आंसू बहाया ना मैंने उसमें, क्योंकि एक तो मेरे को बेटी नहीं है, मेरे एक बेटा है, तो इतने आंसू मैंने बहाया ना सर उसमें। मतलब वो जो फीलिंग थी एक डॉटर्स की, तो वो शायद उसने कहीं ना कहीं हेल्प की उस चीज को समझने में। मैं कहता सर पता नहीं आप कैसे मेरे को पॉजिटिव करेक्टर देते हो, मेरा मन करता है मैं नेगेटिव करेक्टर निभाऊं। पता नहीं उनका क्या विजन रहता है, बट जब जो भी वो करेक्टर देते हैं वो एक अलग ही लेवल पे जाता है।
1: लेकिन आपको भी लगता है कि आप नेगेटिव कैरेक्टर जो है अच्छे से निभा पाएंगे?
0: सर अब तो मैं सारे करेक्टर अच्छे से निभा सकता हूँ अब तो मुझे, क्योंकि जो आदमी सीरियल में रो सकता है सर वो कुछ भी कर सकता है। सबसे मुश्किल है रोना और किसी को हंसाना।
1: क्या बात
0: है ना, गुस्सा दिलाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को रुला देना और किसी को हंसा देना ये सबसे मुश्किल काम है,
1: सबसे कठिन है।
0: और सबसे मुश्किल काम है, आप फिर भी वो रुला सकते हैं, आप अपनी भावनाओं से किसी को इमोशनल कर सकते हैं,
1: किसी बात से कर सकते हैं,
0: किसी बात कर सकते हैं, या कोई सिचुएशन ऐसी कि सामने वाला इमोशन हो जाए, या किसी को आप हंसा सकते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, ये हर किसी के बस की नहीं है। बाकी नेगेटिव ये वो तो सब कर लेंगे, लेकिन ये चीज बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेरा एक मन है नेगेटिव करेक्टर करूं, फिर ये है कि जो करूं अच्छा करूं।
1: नहीं वो तो आप करेंगे ही। अच्छा ये मिर्जापुर 3 जो है
0: जी जी,
1: इसके बारे में बताइए कुछ, कैसा कैरेक्टर है
0: मिर्जापुर 3? सर एक्चुअली ये बाय चांस मेरे को मिली, किसी और चीज के लिए मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था उनकी कास्टिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बोला सर मिर्जापुर की हम लोग कास्टिंग कर रहे हैं, उसमें करेक्टर है ब्रिज करके, तो आप करेंगे? मैं कहा आई एम नॉट फिट इन दैट, मुझे लगता नहीं कि मैं, क्योंकि मेरा फेस वगैरह मिर्जापुर की जो करेक्टराइजेशन है मुझे लगता है कि मैं उसे फिट बैठ पाऊंगा। बोले नहीं नहीं आप एक बना के भेजिए। तो हमने कहा ठीक है चलो, हमने पढ़ा वड़ा। अब मेरे साथ गुड लक के आजा ने, जो मेरी फैमिली है ना पूरी, बेटा वाइफ, ये लोग बहुत बड़े क्रिटिक थे मेरे, तो ये लोग बताते हैं कि क्या अच्छा किया क्या अच्छा नहीं किया, तो ये लोग व्यूअर्स की तरह देखते हैं। सो मैंने बनाया सर भारी मन से कि नहीं ठीक है चलो कर लेते हैं, बनाया भेजा। कुछ दिन बाद उनका जवाब आया सर कि ये बहुत अच्छा है और हम आपको लॉक कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, ये भी सर 2 दिन का करेक्टर है, मैंने कहा चल 2 दिन कर लेते हैं, मिर्जापुर का एक नाम हो जाएगा। मैं सर सेट पे पहुंचा, सब चीज हो गई, मैं सब सेट पे पहुंचा, मैंने किसी पूछा भाई डायरेक्टर साहब कौन से वाले हैं, तो दे वॉज अ चिल गाय, मतलब बाल बाल कोए हुए छोटे से, मतलब थोड़े बड़े क्यूट से बड़े प्यारे से, हिज नेम इज मिस्टर गुरमीत सिंह। बोले सर ये है डायरेक्टर, जो मेरे को मिलवाने ले गया तो बोले सर ये पूछे थे डायरेक्टर साहब कैसे हैं, गुरमीत जी बड़े स्टाइल से, आई एम द डायरेक्टर। तो उन्होंने सर मुझे इतना कंफर्ट कर दिया ना, मुझे लग नहीं रहा कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के सामने खड़ा हूं और मुझे एक्ट करना है। उसमें जो गोलू का करेक्टर कर रही हूं, वो सब लोग मेरे सामने बैठे थे और मेरा पहला सीन था, मैं बहुत डर लग रहा था भाई, मिर्जापुर पहले 2 सीजन हो चुके हैं, 3rd सीजन में आप सक्सेसफुल बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो मैंने सर से पूछा, मैं कहा गुरमीत जी कैसे? बोले जैसे आप चाहो, जैसे आपको फील लगे, जो आपको करेक्टर में जम रहा हो आप वैसे ही करना, बाकी इधर उधर होगा तो मैं बता दूंगा। सर किया मैंने और उनके इस बात ने मुझे बड़ी हेल्प की, इवन अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गोलू ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बिल्कुल कंफर्टेबल करा के। पहला सीन था सर मेरा, मेरी पहली एंट्री थी, और उसके बाद सर शॉट खत्म हुआ, मैं कहा ओके सर, गुमी सर कभी आगे कभी हो तो याद कीजिएगा। बोले आगे क्या मतलब? मैंने कहा मतलब इट वॉज फॉर 2 डेज ना। बोले नहीं नहीं आपको किसने बताया? यही सुना था। बोले नहीं नहीं भाई, तो उन्होंने अपने जो एसोसिएट हैं उनकी टीम में सौरभ, उनको बोला कि आप बाहर जाइए, इनको समझाइए भाई, अभी तो लखनऊ जाना है, बनारस

0: तो मैंने कहा हाँ, वो सरप्राइज, मैं कहा अरे ये
1: कंटिन्यूटी में है,
0: हाँ मतलब आपको किसने बोला 2 दिन गए तो, ये तो बहुत काम है आगे। तो मैं एक डिफरेंट सोच में था, अरे ये कैसे हो गया। तो सौरभ मुझे बता रहे हैं कि संजीव जी 4-5 दिन लखनऊ में होगा, फिर बनारस में होगा, मुंबई में तो आपका हो गया है, तो स्टोरी ये है ऐसे। वो मुझे स्टोरी सुना रहा, मैं अपनी ही कल्पना में होगी, अच्छा अरे यार भैया तो बढ़िया हो, अच्छा हो जाए तो बनारस में लखनऊ में आता, ये तो गुड करेक्टर बनाना लिमकाना। तो फिर मैंने बोला उनको सौरभ, मैंने कहा प्लीज मैं ना पार्ट 2 देख लूंगा भाई, दिस इज द बेस्ट आइडिया, आप ना पार्ट 2 देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि करेक्टर कहाँ से उठा क्या करा है। और मैं वैनिटी में आके मतलब यार तो मजे आ गए, तो ये
1: काम करने में मजा आया क्या,
0: हाँ मतलब फिर लगा यार इज अ करेक्टर बेसिकली, और करेक्टर का नाम इज अ ब्रिज बेसिकली, जो गुड्डू पंडित का सपोर्टर है, इज अ बाहुबली है, और वो हमेशा मीटिंग्स में अरेंज करता है उनकी, और बहुत अच्छे डायलॉग्स मुझे दिए गए हैं इसमें, और वैसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सब जैसे हैं वैसे ही आए तो मजा आ जाएगा। लुक बहुत अच्छा दिया गया है, इज अ गुड करेक्टर, 3 एपिसोड में मेरा काम है उसमें, और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे वाली सीरीज में भी, शायद गुरमीत जी ने चाहा तो आगे भी काम बनेगा,
1: बिल्कुल बनेगा, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं।
0: जी जी जी।
1: और आपसे कुछ लेना चाहते हैं, आपकी पसंद का गीत।
0: देयर वाज अ सॉन्ग जो सिचुएशन पे है कि ये हौसला कैसे रुके, द फिल्म डोर, बहुत टचिंग सॉन्ग मुझे लगता है कि चाहे राहों में कितने कांटे हों, कितनी चीज आपको रोक ले, लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिख दिया ना, आप वहां पहुंचोगे जरूर, बट आपको हौसला नहीं हारना है, आपको गिव अप नहीं करना है।
1: ये बात जीवन में जो है मायने रखती है,
0: ये मेरे अकेले के साथ नहीं, सभी के साथ होता है, लेकिन हमें ये सीखना है कि हमें गिव अप नहीं करना है, लगे रहना है। तो जैसे मेरी फैमिली कहती है, मेरी वाइफ कहती है कि सोच ऐसे बनाओ कि यस आई एम डूइंग,
1: करना है कि ये कर रहा हूं,
0: डूइंग, और ये मैं कर रहा हूं और ये मैं करूंगा और ये ऐसा होगा, कि मन को अपलिफ्ट करती है
1: बिल्कुल।
0: तो ये हौसला कैसे रुके,

0: तो मिर्ज़ापुर में अच्छा काम लगा सर, अच्छा एक्सपीरियंस था करने का, और बहुत अच्छे से शूट भी हुआ। आई होप कि आगे भी अच्छे अच्छा काम मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल मिलेगा। और फिल्मों के बारे में भी कुछ बताइए, आपने कुछ छोटे बड़े
0: जी,
1: किरदार किए हैं, कौन कौन सी फिल्में रही हैं?
0: फिल्मों का सर मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है मुंबई का, जो पहला प्यार होता है वो होता है फिल्में। हर आदमी यहाँ एक्टिंग मतलब फिल्में ही करने आता है। हाँ, मतलब शुरू से एंड तक फिल्में ही रही है ना। उसके बाद ये फिर टीवी आया, फिर सीरियल्स आए, नाउ इज टाइम ऑफ वेब सीरीज एंड ऑल। हर आदमी का एक चाह होती है दिल की कि मैं फिल्म जरूर करूँ, क्योंकि फिल्में ताऊ उम्र तक याद रखी जाती हैं। सो मेरी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि मैं भी फिल्म ही करने आया था। तो फिल्म की सर पहली फिल्म थी हॉन्टेड, बहुत छोटा करेक्टर था, आया और गया पता ही नहीं लगा। खैर एनी वे, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस विद द डायरेक्टर, विक्रम भट्ट जी की फिल्म थी, है बड़ा सीखने को मिला उसमें। फिर मैंने सर फिल्म की एक पद्मावत, पद्मावत में आई प्लेड अ ट्रांसजेंडर, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई कि बहुत ज्यादा करेक्टर बचा नहीं उसमें। लेकिन एक्सपीरियंस ये था सर कि जो उसके क्रिएटर हैं, जो डायरेक्टर हैं संजय लीला भंसाली, उनके साथ खड़े रहना, उनको देखना, उनके काम का तरीका, उनके सेट्स, उनकी ज्वेलरीज और वेशभूषा और जो म्यूजिक, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं सर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा अनुभव था। एंड स्टैंडिंग विद दीपिका एंड शाहिद कपूर, तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था। और मेरे ट्रांसजेंडर का उसमें करेक्टर था जो बहुत ज्यादा विजिबल नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, मुझे अच्छा लगा। 1 वीक मेरा काम चला उसमें, मेरा नाम उसमें हजूरिया करके एक करेक्टर मुझे दिया था उन्होंने। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू वर्किंग विद सच अ लीजेंड पर्सन्स, उनको देख के काम करते। तो उसके बाद मुझे किसी के साथ काम करने में डर नहीं लगा, क्योंकि मैं इतने बड़े आदमी के साथ, इतने बड़े मास्टर के साथ काम कर चुका था, चाहे थोड़ा सा सही, लेकिन मुझे फिर उसका किसी के सामने डर नहीं लगता था। नहीं, ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हो ही जाएगा। फिर मैंने एक फिल्म की सर, वो भी एक्सीडेंटली मुझे मिली, उसका नाम था गुड न्यूज, अक्षय कुमार जी और दिलजीत दोसांझ जी का। एक के लिए ऑडिशन दिया था, एकदम से कॉल आया कि आप फ्री हो क्या, शाम को यशराज जाना है। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मेरा एक मॉक टेस्ट हुआ, बोले ठीक है कल से शूट है आपका, आप आइए। मैं पहुंचा सर, एक सीन है उसमें अक्षय पाजी और दलजीत जी का, एक फाइट सीन है रेस्टोरेंट में। आई प्लेड द मैनेजर, किया सर मैंने वो फर्स्ट डे अक्षय कुमार जी, मैं तो उन्हें देखते रहेगा, क्योंकि मैंने कभी अक्षय कुमार जी को देखा ही नहीं था। रिसेट किया, आओ भाजी अच्छा लगा ना। मैं कहा सर मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मतलब मैं अक्षय पाजी के सामने खड़ा हूँ। तो एनी आओ रिहर्सल वगैरह हुई, उनका मजाक के अंदाज है जो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार थोड़ा सा अलग सा लगा। मैं कहा यार मेरा मतलब हंसी उड़ा दी, मैं कहा कल पता नहीं कैसे शूट होगा। मुझे पता था उनका बिंदास अंदाज है। तो मैं घर गया, मैं सुबह जब रेडी हो रहा था आने के लिए, तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा यार वो कल पाजी ने ना थोड़ा ज्यादा ही मतलब मुझे लगा कि मेरा मजाक से उड़ाया। शी सेड कि ठीक है अगर इतना ही ईगो है तो फिर घर बैठ जाओ, डोंट गो फॉर शूट, अगर इतना ही तुम्हें बुरा लग रहा है तो। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। मैं कहा ठीक है जो होगा करेंगे। गया मैं सर, नेक्स्ट डे अक्षय सर का जो बिहेवियर था ना वो एकदम अलग ही था। हाँ भाजी क्या हाल है, और आओ शूट करते हैं, सब क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है। तो वो जो उनका अंदाज था ना, वो मुझे लगा नहीं यार वो एक कंफर्ट देने का एक उनका एक तरीका है
1: तरीका
0: जो उन्होंने किया मुझे रिहर्सल के दौरान। और मुझे वियर्ड जरूर लगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब उसका इम्पैक्ट आया ना सर, सब मजाक है बिंदा एकदम काम करो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से काम करो। और सर वो सीन मैंने किया, बड़ा अच्छा सीन था वो। मैं जब सिनेमा में देखने गया उसमें, तो लोग उस पे हंसे उस सीन पे, तो मुझे लगा नहीं यार आई रियली थैंक्स टू अक्षय कुमार सर के, अब उनके बिना ये सीन नहीं हो पाता। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस था। फिर मैंने एक फिल्म की थैंक गॉड, उसमें भी एक सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कुलप्रीत सिंह के बीच में करेक्टर है, लगा ही नहीं कि मैं मतलब कि इतने बड़े लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, कि मेरे लिए तो बहुत बड़े सर वो।
1: लेकिन आप भी तो टीवी के स्टार हैं।
0: बड़े कलाकारों में सर मैंने ये देखा है कि वो आपको इतना कंफर्ट देते हैं। एक्चुअल सबका मोटो क्या होता है कि चीज को अच्छी बनाना, वो किसी की वजह से खराब नहीं होनी चाहिए, और किसी का पता नहीं कौन कब कहाँ पहुंच जाए।
1: आपके पास भी अनुभव काफी है, आप भी इन बातों का अनुसरण करेंगे हम सोचते हैं सर।
0: बिल्कुल सर, मैं आज भी करता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ
1: और करते रहेंगे।

0: लगाओ और अच्छा काम आपको मिलेगा, आपको पता है इस बात का यकीन आपको हमेशा रहता है
1: बिल्कुल,
0: और बेहतर रूप में अलग अलग स्क्रीन्स पर ओटीटी का हो, टेलीविजन का हो या फिल्म का हो, हम आपको देख पाएंगे, उसमें आपके अच्छे काम की प्रशंसा कर पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आने वाले दिनों में जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, उन तमाम बातों में आपको सफलताएं मिले, ऐसी कामना भी करता हूं। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बेहतरीन बातें, बेहतरीन यादें जो है हमारे श्रोताओं के साथ साझा की है, शेयर किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं एक छोटी सी बात बोल दूं
0: जी, जरूर,
1: कि जितनी बातें आपने की है, मैं ऊपर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सारी बातें श्याम जी की सुन ले और उसे अप्लाई करते
0: हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल एक बात आपकी और सुन लेते हैं, एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे।
1: जी सर, दंगल सॉन्ग कि माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी, दंगल दंगल, जिसमें हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ने का, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हारना नहीं, आगे बढ़ते रहना है, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बट यू हैव टू डू।

इसी के साथ आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। हम आपको तयशुदा कार्यक्रम नहीं सुनवा पाए, इस बात का हमें खेद है।

FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के ठीक 5 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

नमस्कार सखियों, आकाशवाणी के अपने प्रिय कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी प्यारी रेडियो सखी अर्चना उपाध्याय और हर बार की तरह आज भी आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसी बातें जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं, कुछ ऐसी जानकारियां जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं और कुछ ऐसे विचार जो हमारे जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का संचार करते हैं। सखियों, जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन इस सुंदर जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमारी अपनी भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने घर को साफ रखते हैं, अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाते हैं, अपने काम और ज्ञान को समय के साथ बदलते हैं, लेकिन एक सवाल, क्या हम अपने मन को भी उतनी ही सजगता से संभालते हैं? इन्हीं विचारों के साथ आज के कार्यक्रम में हमारे तीन महत्वपूर्ण विषय हैं। पहला विषय है स्वच्छता ही सेवा है, दूसरा अपने स्किल्स को अपडेट करते रहिए, और सखियों आज अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है और सांकेतिक भाषा का भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इसके विषय में भी हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली चर्चा से। सखियों, हमने ये बात तो कई बार सुनी है, स्वच्छता अपनाइए, लेकिन आज मैं इस बात को थोड़ा अलग तरीके से आपके सामने रखना चाहती हूँ। स्वच्छता केवल आदत नहीं, सेवा भी है। जरा सोचिए, जब हम अपने घर के बाहर कूड़ा नहीं डालते तो हम केवल अपना घर साफ नहीं रख रहे होते हैं, हम अपने पड़ोसी की मदद कर रहे होते हैं। जब हम सड़क पर प्लास्टिक की थैली नहीं फेंकते तो हम केवल सड़क को साफ नहीं कर रहे होते हैं, हम सफाई कर्मी का थोड़ा थोड़ा काम आसान कर रहे होते हैं। और जब हम सार्वजनिक स्थान को गंदा नहीं करते तो हम अपने बाद आने वाले व्यक्ति के लिए एक बेहतर वातावरण छोड़ रहे होते हैं। यानी हमारी छोटी सी जिम्मेदारी किसी दूसरे के लिए बड़ी सुविधा बन सकती है, यही तो सेवा है। सखियों, ज़रा गौर कीजिए, स्वच्छता की शुरुआत कहाँ से हो? अक्सर हम सोचते हैं कि स्वच्छता सरकार की जिम्मेदारी है, नगर पालिका नगर निगम की जिम्मेदारी है, सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं? हम खुद अगर कूड़ा फैलाएंगे और सफाई की उम्मीद करेंगे तो समस्या पूरी तरह से समाप्त कैसे होगी? इसलिए सखियों, स्वच्छता की पहली शुरुआत होती है अपने घर से, अपने व्यवहार से और अपनी सोच से। गीला और सूखा कचरा, अलग अलग प्लास्टिक का अनावश्यक इस्तेमाल करना, कूड़े का उपयोग करना, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा ना फेंकना और दूसरों को भी प्यार से समझाना, ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा हो सकता है। सखियों, हम महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस मामले में हम अन्य सभी से ज़्यादा समझदार होती हैं, क्योंकि घर की बहुत सी आदतें बच्चों तक माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार से पहुंचती हैं। अगर बच्चा देखता है कि माँ कूड़ा हमेशा सही जगह पर डालती है, पानी व्यर्थ नहीं बहने देती है, घर को साफ रखने के साथ साथ आसपास की स्वच्छता का भी ध्यान रखती है, तो बच्चा खुद ही बिना किसी बड़े भाषण के सीख जाता है। सखियों, बच्चों को केवल ये मत कहिए कि कूड़ा मत फैलाओ, कभी उन्हें साथ लेकर कूड़ा सही जगह पर डालिए, क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम, हमारे

व्यवहार को ज़्यादा सीखते हैं। सखियों, स्वच्छता का संबंध केवल सुंदरता से नहीं है, इसका संबंध हमारे पर्यावरण से और हमारे स्वास्थ्य से भी है। कचरा जहाँ तहाँ पड़ा रहेगा तो गंदगी बढ़ती जाएगी, मच्छर और कीड़े पनप सकते हैं, नालियाँ जाम हो सकती हैं, प्लास्टिक और अन्य कचरा मिट्टी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए स्वच्छता वास्तव में स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा का एक माध्यम भी है। तो सखियों, आइए आज एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। हम खुद गंदगी नहीं फैलाएंगे,

इसलिए स्वच्छता वास्तव में स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा का एक माध्यम भी है। तो सखियों, आइए आज एक छोटा सा संकल्प लेते हैं। हम खुद गंदगी नहीं फैलाएंगे, जहाँ तक संभव होगा स्वच्छता में सहयोग करेंगे और दूसरों का भी सम्मान करेंगे और सम्मानपूर्वक उनको जागरूक करेंगे और अपने बच्चों को स्वच्छता को जीवन की आदत बनाना सिखाएंगे। क्योंकि स्वच्छ भारत केवल सरकार के प्रयासों से नहीं बल्कि हम सभी की आदतों से बनेगा सखियों। और सच कहें तो स्वच्छता भी सेवा है, स्वच्छता भी संस्कार है और स्वच्छता भी देश के प्रति हमारी सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। सखियों, चर्चा हमारी आगे भी रहेगी जारी, लेकिन अब है मनोरंजन की बारी। तो चलिए सुनते हैं एक मधुर गीत। गीत के बाद हम आपको बताएंगे अपने स्किल्स को कैसे अपडेट करें। पहले सुनते हैं ये गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
3: सखियों, उम्मीद करती हूँ गीत आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे विषय की ओर, अपने स्किल्स को अपडेट करते रहिए। सखियों, आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है। कुछ समय पहले जो काम कागज और फाइलों से होता था, आज वही काम कंप्यूटर पर हो रहा है। जहाँ पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय में घंटों बैठना पड़ता था, आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से कुछ ही क्षणों में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। सखियों, आजकल के समय में डिजिटल भुगतान है, ऑनलाइन एजुकेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है, ऑनलाइन मीटिंग और काम करने के नए नए तरीके हैं। तो ऐसे समय में एक बहुत ज़रूरी बात है, हमें अपने ज्ञान और स्किल्स को समय के साथ अपडेट करते रहना चाहिए। सखियों, बात करें कि स्किल्स क्या है। स्किल्स यानी कौशल, किसी काम को बेहतर तरीके से करने की हमारी अपनी क्षमता। ये केवल नौकरी पाने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये हमारे आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी महिला को खाना बनाने का अच्छा हुनर आता है, अगर वो इसके साथ साथ डिजिटल माध्यम से अपने काम को प्रस्तुत करना, फ़ोटो वीडियो बनाना, कस्टमर से बातचीत करना और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लेना सीख लेती है, तो उसका वही हुनर एक नए अवसर में बदल जाता है। इसी तरह किसी को सिलाई आती है, किसी को अच्छा पढ़ाना आता है, कोई लिखने का शौक रखता है, किसी को बोलने संवाद करने की कला आती है, किसी को खेती या बागवानी का अच्छा ज्ञान है। इन सभी स्किल्स को समय के साथ नए तरीके से विकसित किया जा सकता है। महिलाओं के लिए तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि महिलाएं जीवन में अनेक भूमिकाएं निभाती हैं। घर, परिवार, बच्चे, नौकरी, व्यवसाय, समाज, इन सब के बीच कई बार महिलाएं अपने विकास के लिए समय ही नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगी सखियों, अपने लिए सीखना कभी बंद मत कीजिए। उम्र सीखने में बाधा नहीं होती है। अगर आज आपको कोई नई चीज़ सीखने में एक महीना लगता है तो सीखिए। अगर शुरुआत में कठिन लगता है तो धीरे धीरे सीखिए, लेकिन सीखना बंद मत कीजिए, क्योंकि कोई भी नई स्किल हमारे ज्ञान को ही नहीं, हमारी आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। सखियों, आज के समय में कुछ बेसिक डिजिटल स्किल्स लगभग हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, जैसे मोबाइल का सुरक्षित और सही उपयोग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन

ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी, ईमेल का यूज़ करना, वीडियो कॉल, ऑनलाइन फॉर्म भरना, डिजिटल दस्तावेजों को संभाल कर रखना और अब AI जैसे नई तकनीकी साधनों को समझना। सखियों, हर किसी को विशेषज्ञ बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय के साथ बदलती टेक्नोलॉजी से पूरी तरह अनजान रहना भी हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इसलिए रोज़ाना सिर्फ 20 से 30 मिनट सीखने के लिए निकालना भी बहुत उपयोगी हो सकता है। एक दिन एक नया शब्द, एक दिन एक नया फीचर, एक दिन एक नई डिजिटल स्किल्स, धीरे धीरे यही छोटी छोटी सीख बड़ी क्षमता बन जाती है। सखियों, कभी कभी हम खुद से कहते हैं कि अब हमारी उम्र सीखने की नहीं है, लेकिन क्या ज्ञान की भी कोई उम्र होती है? एक माँ अपने बच्चे से मोबाइल चलाना सीख सकती है, एक बच्चा अपनी दादी से पारंपरिक ज्ञान सीख सकता है, एक युवा अपने माता पिता से अनुभव सीख सकता है और एक महिला किसी भी उम्र में नई स्किल सीखकर अपने जीवन में नया आत्मविश्वास ला सकती है। इसलिए सखियों, आप अपने आप से कहिए, मैं सीख सकती हूँ, मैं बदल सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। यही सोच हमें हमेशा युवा बनाए रखती है। सखियों, समय हो चला है मनोरंजन का, तो चलिए सुनते हैं एक और मधुर गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: सखियों, उम्मीद है ये गीत भी आपको बहुत पसंद आया होगा। सखियों, आज अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। सखियों, पहले आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसे एक निश्चित पहचान देने के लिए अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाने लगा है। 2026 की थीम है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन शैली और बीमारियों से बचाव के लिए दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। सखियों, आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा और जीवन पद्धति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये केवल बीमारी का उपचार करने पर ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार और शरीर मन के संतुलन पर भी जोर देता है। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद की उपयोगिता और इसके सिद्धांतों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है। आज आयुर्वेद को भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में भी लोग स्वस्थ जीवन शैली और संदर्भ के समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि किसी भी बीमारी का स्वास्थ्य का समस्या में उपचार

के लिए योग चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है। आयुर्वेद को भी सही जानकारी और प्रशिक्षित विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में ही अपनाना चाहिए। आइए अपनी प्राचीन परंपरा, प्राचीन ज्ञान को समझें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। सखियों, आज अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस भी है। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बधिर तथा कम सुनने वाले लोगों के अधिकारों एवं समान भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सांकेतिक भाषा केवल हाथों के इशारों का माध्यम नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण भाषा है जिसके माध्यम से लोग अपने विचार, अपनी भावनाएँ और अनुभव व्यक्त करते हैं। समावेशी समाज वही है जहां हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, सीखने का और आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। इसलिए हमें सांकेतिक भाषा के प्रति सम्मान और समझ विकसित करनी चाहिए तथा बधिर व्यक्तियों से संवाद करते समय धैर्य और संवेदनशीलता रखनी चाहिए। आइए हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां संवाद की कोई दीवार किसी व्यक्ति की प्रतिभा और सपनों के बीच बाधा ना बने। सखियों, सुनते हैं एक और मधुर गीत।

सखियों, आज की हमारी इस सुंदर बातचीत में हमने तीन महत्वपूर्ण बातें समझी। स्वच्छता हमें सिखाती है अपनी जिम्मेदारी निभाना, समाज की सेवा है। स्किल्स हमें सिखाते हैं समय बदलता है, इसलिए भी हमें सीखते और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आज अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है, तो उसके बारे में भी हमने जाना। तो आज से हम तीन छोटे संकल्प क्यों ना लें। पहला, हमने अपने आसपास स्वच्छता रखने में अपना योगदान करेंगे। हम हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे और हर छोटी छोटी खुशियों को पहचानेंगे, दूसरे के जीवन में खुशी बांटने का प्रयास करेंगे और आयुर्वेद को अपनाएंगे। क्योंकि जीवन हमेशा हमारे मन के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जीवन को देखने का हमारा नज़रिया हमारे हाथ में ज़रूर होता है। सखियों, याद रखिए, मुस्कुराना एक समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन मुस्कुराहट हमें समस्या का सामना करने की ताकत ज़रूर देती है। इसलिए स्वच्छ रहिए, सीखते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहना सीखिए। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मुझे दीजिए अनुमति। मैं हूँ आपकी अपनी अर्चना उपाध्याय। आप सुन रहे थे आकाशवाणी का प्रिय कार्यक्रम महिला जगत। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सीखते रहें और अपने आसपास भी सकारात्मकता फैलाते रहें। मुस्कान बांटिए, सेवा कीजिए और सकारात्मक सोच के साथ जीवन को सार्थक बनाइए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। मेरा नाम है ओम प्रकाश नरुका और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे पर हम सुनते हैं हम सभी का फेवरेट शो हेलो फरमाइश। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हेलो, नमस्कार मैम, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल अच्छे हैं
0: जी। आपका शुभ नाम?
1: मेरा नाम करिश्मा है, मैं अलवर से हूँ।
0: जी करिश्मा जी, आप अलवर से बात कर रहे हैं। तो करिश्मा जी, आप करते क्या हैं?
1: मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करती हूँ।
0: ओके मैम, तो बताइए आप आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: आज मुझे जब भी नीट का एक गाना सुनना है तुमसे ही।
0: तो मैम बताइए, ये गाना किसी को डेडिकेट करेंगे या फिर खुद के लिए चलवाएंगे?
1: सेल्फ लव।
0: सेल्फ लव, क्या बात है। और बताइए मैम, सब कुछ कैसा चल रहा है? लाइफ कैसी चल रही है?
1: बहुत अच्छी चल रही है।
0: बहुत अच्छी, चलिए बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आपसे सुन के अच्छा लगा कि लाइफ बहुत अच्छी चल रही है।
1: थैंक यू।

0: हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी में। कैसे हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ सर। मैं नंदू प्रजापति ग्राम अलापुर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी नंदू जी, क्या करते हैं सर आप?
1: सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, सीटी की तैयारी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा मुझे बताइए, आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं और एक स्टूडेंट हैं, तो हमारे युवाओं को कुछ सीख देना चाहते हैं आप?
1: सीख तो यही धैर्य रखेंगे, पढ़ाई में रेगुलर करते रहें, वो धैर्य रखते रहें,
0: जी सर
1: लक्ष्य जरूर मिल जाएगा सभी को।
0: जी बिल्कुल। तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते टाइम उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है, तो ऐसे
1: हाँ सर,
0: में कभी डिप्रेशन या ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? मतलब एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को संभालना पड़ता है।
1: सर इसके लिए तो धैर्य और मेडिटेशन योगा वगैरह करते हैं
0: जी
1: इसके लिए, तो योगा सर।
0: जी सर बिल्कुल, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा। चलिए बताइए आपकी फरमाइश क्या है।
1: सर बाजीगर मूवी का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।

0: हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी में।
1: सर जी नमस्कार।
0: कैसे हैं सर आप?
1: नमस्ते सर,
0: ओके
1: आप
0: okay.
1: कैसे हैं?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका नाम?
1: मेरा नाम उदयलाल टेलर है और मैं जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत जगह है उदयपुर।
1: जी सर,
0: कैसा मौसम चल रहा है इस
1: राजस्थान
0: समय उदयपुर में?
1: उदयपुर में सर अभी मौसम सूखा चल रहा है, बारिश बहुत ही कम हुई है और झीलों में भी पानी नहीं के बराबर आया है। और अभी गणेश
0: जी
1: उत्सव जोर जोर शोर से चल रहे हैं
0: जी सर,
1: और
0: तो हमारे
1: शाम होते ही रात को 10-11-12 बजे तक तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो हमारे शहर उदयपुर में ही है।
0: जी सर, वो तो बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। और वैसे जाहिर सी बात है कि उदयपुर बहुत सुंदर सिटी है, तो
1: जी
0: हमारे
1: सर,
0: श्रोताओं को बताएं कुछ ऐसी जगह जहाँ पर वो प्लान कर सके घूमने के लिए।
1: घूमने के लिए तो उदयपुर की किसी भी दिशा में आप चले जाइए, कुछ न कुछ तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। सर्वप्रथम
0: जी
1: तो जिले हैं, सिटी पैलेस है और कुंभलगढ़ का किला है
0: बहुत खूबसूरत है।
1: और सज्जनगढ़ का किला है, हल्दी घाटी का मैदान है जहाँ पर महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था और भगवान जगन्नाथ स्वामी का और भगवान एकलिंगनाथ जी का भव्य मंदिर है जो महाराणा साहब ने 500 साल पहले बनवाया था।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका आज का फरमाइश?
1: सर दो रास्ते फिल्म से सुनेंगे, ये रेशमी जुल्फें शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जी
0: जी, धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: सर, हमें भी अच्छा लगा। आपका नाम जान सकते हैं सर?
0: जी, मेरा नाम है ओम प्रकाश नरू का।
1: अच्छा, ओम प्रकाश जी,
0: जी

0: हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी में
1: नमस्कार।
0: जी। आपका गुड नेम?
1: नेहा मलिक।
0: नेहा मलिक जी। नेहा जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं अलवर, राजस्थान से बात कर रही हूँ।
0: अलवर से बात कर रहे हैं। तो नेहा जी, आप करते क्या हैं?
1: अभी मैं इंडिगो एयरलाइंस में वर्किंग हूँ। मुझे यहाँ 3 साल हो गए हैं जॉब करते हुए।
0: ओके।
1: और अभी यहाँ पे मैं घर आई हुई थी, तो बस घर वालों के साथ बैठ के चाय

0: पी रहे थे, तो सोचा
1: जी
0: आकाशवाणी पे एक कॉल की फरमाइश कर दी जाए।
1: तो आपकी आज की फरमाइश बताइए।
0: कहो ना प्यार है सॉन्ग जो है ऋतिक रोशन का, वो आप सुना दीजिए।
1: जी ये सॉन्ग किसी को डेडिकेट करते हैं आप या फिर
0: खुद के लिए मेरा यहाँ पर मतलब ऐसा मंथली आना रहता है, तो आकाशवाणी से बहुत पुराना जुड़ाव है, इसलिए बीच बीच में रहता है कि हाँ शाम को जब हम चाय पी रहे हो तो वो गाने सुने जो हम खुद चाहते हैं, तो बस
1: जी
0: यही चीज
1: बहुत
0: है।
1: अच्छी बात है।

0: हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका सर। कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर।
0: जी सर, आपका शुभ नाम?
1: सुशील कुमार शर्मा।
0: जी सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: मैं माचड़ी से बात कर रहा हूँ सर।
0: ओके सर, क्या करते हैं
1: आप? आप सुनाओ, क्या हाल है सर?
0: जी, हम
1: आप
0: बहुत अच्छे हैं सर।
1: मैं स्कूल में काम करता हूँ सर।
0: स्कूल में काम करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आपके वहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है इस समय?
1: सर गर्मी पड़ रही है, वैसे ठंडी हो गई हो रही है अभी तो।
0: ओके सर,
1: वे गर्मी पड़ती है बहुत जल्दी। बढ़िया चल रही है। आज
0: ओके
1: वो गाना सुना है, दिल के टुकड़े टुकड़े पत्थर।
0: किसी को डेडिकेट कर रहे हैं क्या सॉन्ग सर?
1: नहीं सर,
0: जी सर, चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: सर मैं तो आप FM प्रोग्राम सुनने चाहता हूँ सर।
0: ओके सर, बहुत अच्छी बात है। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका सर। कैसे हैं आप?
2: हाँ भैया, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: ओके सर, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: जी, तो बताइए सर, छत्तीसगढ़ में इस समय कैसा मौसम है?

0: अभी जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ हल्की हल्की बारिश हो रही है।
1: अरे वाह, देखिए प्रकृति का भी क्या खूब खेल है। यहाँ पर तो इतनी तेज धूप पड़ रही है और वहाँ पर बारिश हो रही है।
0: दिन भर यहाँ भी धूप रहा है भैया, अभी थोड़ा सा अभी आधे घंटे पहले कुछ चेंज हुआ है।
1: ओके अच्छा,
0: जी
1: यहाँ तो सर बहुत तेज धूप है, लू चल
0: जी
1: रही है, लगा लो।
0: जी
1: जी तो बताइए, आपके छत्तीसगढ़ में ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम घूमने आ सकते हैं?
0: बस्तर और सरगुजा का वनांचल क्षेत्र है, जंगलों से काफी घिरा हुआ है, तो रास्ते काफी
1: खूबसूरत
0: आनंदित
1: लगते
0: होते
1: हैं।
0: हैं।
1: जी
0: और इसके अलावा जो कुछ माता मतलब माताओं का शक्तिपीठ भी है, जो बम्लेश्वरी माता है
1: जी
0: इधर डोंगरगढ़ में, इधर रतनपुर में महामाया है,
1: जी
0: दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी है,
1: जी सर
0: और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं हमारे बेमेतरा से 70 किलोमीटर दूर एक 11वीं शताब्दी का भी भोरमदेव का प्राचीन मंदिर है, तो वो भी काफी अच्छा है।
1: जी सर अच्छा बताइए सर, आपकी आज की फरमाइश क्या है?
0: एक गजल सुना देते फिल्म प्रेम गीत से, होठों से छू लो तुम
1: जी
0: मेरा गीत अमर कर दो।

0: हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: आपका गुड नेम?
1: आपके मेरा नाम अलका है। हाँ
0: ओके, अलका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं अलवर से बात कर रही हूँ, शिवाजी पार्क से।
0: ओके, आप अलवर से बात कर रहे हैं। तो अलका जी, क्या आप हमारा

0: कार्यक्रम सुनते हैं
1: जी? आपका कार्यक्रम सुनते हैं और हमें बहुत पसंद है, और आप मोस्टली तो आपकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है हमें।
0: ओके जी, बहुत अच्छी बात है, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा
1: जी।
0: आप करते क्या है अलका जी?
1: आई एम हाउसवाइफ एंड मोस्टली मुझे म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है।
0: ओके,
1: तो मेरी पसंद का एक गाना लगाओगे आप?
0: हाँ बिल्कुल जी,
1: शुक्रिया। गाना है सिलसिला मूवी का देखा एक ख्वाब
0: जी। ये गाना किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: डेडिकेट मेरे हस्बैंड को।
0: आपके हस्बैंड के लिए जी। आपके हस्बैंड का नाम?
1: कौशल।
0: क्या करते हैं आपके हस्बैंड?
1: एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं।
0: गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है।

तो नमस्कार साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। बने रहिए इसी तरह हमारे साथ आकाशवाणी के युवाणी कार्यक्रम में। मैं था आपका रेडियो दोस्त ओम प्रकाश नरुका।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: साथ मैं वैष्णवी। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट

0: स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जैगवार, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% स्वदेशी सामग्री होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता बढ़ेगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ त्रिपक्षीय बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देश बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन्होंने महत्वपूर्ण घरेलू कर क्षमता का निर्माण किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को ऐसी युवा शक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी, जिम्मेदारी, करुणा, सह अस्तित्व और देशभक्ति की भावना से प्रेरित हो।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त हो। साथ ही वे आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति ने वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे प्रेरित रहें और अपने दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभा सकें। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और एक अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायल विद्यार्थियों के बेहतर उपचार की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाउरुम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुम निंगा तियास को हराया। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारतीय उल्लक मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्केट स्पर्धा में महिला टीम और पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं आज के शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:10 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन शेखावत से शिव कुमार शर्मा की बातचीत। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती। 7:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। 8:15 पर आप सुनेंगे लोक

सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट के कैप्सूल। 10:20 पर सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम। रात 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और आज की हमारी सभा समाप्त होगी रात 11:05।

लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 6:05 पे आप सुनेंगे वंदनवार। 6:30 पे सुनिए झरोका। 6:35 पे आप सुनेंगे रामचरित मानस गान। 6:45 पे सुनिए संगीत सरिता। कल सुबह 7 बजे आप सुनेंगे नमस्कार अलवर। 7:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। 8 बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:15 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। 8:30 पे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से रिले किए जाएंगे। 9:10 पे आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला आकाशवाणी दिल्ली से। 9:45 पे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन शेखावत से शिव कुमार शर्मा की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और जब बात हो स्वास्थ्य को प्राकृतिक संतुलित और स्थायी तरीके से संवारने की, तो आयुर्वेद का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। आज है आयुर्वेद दिवस, तो क्यों ना इस पर आयुर्वेद पर ही बात की जाए। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति क्या है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम फोन लाइन से जुड़े हैं डॉक्टर पवन सिंह शेखावत से, जो कि वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हैं, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बुद्ध विहार अलवर में इस समय तैनाती है। पवन सिंह जी नमस्कार।
2: धन्यवाद सर।
1: सर सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद दिवस ये क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका?
2: सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा मेरी ओर से नमस्कार, और सभी को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद दिवस

0: वो 2016 से शुरू किया गया
1: जी
0: और धन्वंतरी जयंती के दिन जो है वो आयुर्वेद दिवस पूर्व में मनाया जाता रहा है। लेकिन भारत सरकार की ओर से वर्ष 2025 से एक निश्चित तिथि जो है वो सुनिश्चित की गई और वो 23 सितंबर थी, और आज हम 11वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं।
1: एक बात और हमारे मस्तिष्क में आती है कि जो आयुर्वेद क्या है, क्योंकि हर चिकित्सा पद्धति का अपनी एक अवधारणा होती है, कॉन्सेप्ट होता है। तो हम
0: जी,
1: आयुर्वेद की बात करें तो सर इसकी अवधारणा क्या है और ये कैसे काम करती है?
0: आयुर्वेद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु और वेद।
1: जी
0: आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब शास्त्र। तो जो शास्त्र हमें स्वस्थ शतायु जीवन जीने के तरीके सिखाता है वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद का मुख्य जो उद्देश्य है वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणाम आतुरस्य विकार प्रशमन चय है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य है, और आयुर्वेद दुनिया की एकमात्र चिकित्सा पद्धति है जो स्वास्थ्य रक्षण पर बात करती है, जो रोग को रोग होने से पहले ही रोकने के लिए बात करती है।
1: सर, हर वर्ष कोई ना कोई थीम होता है आयुर्वेद दिवस पर। इस बार का
0: जी
1: जो
0: सर,
1: थीम है वो है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद।
0: जी सर,
1: तो भविष्य में आयुर्वेद की क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं?
0: सर इस बार आयुर्वेद दिवस पर जो आयुष मंत्रालय ने जो थीम दी है वो है स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद। इस स्वस्थ भविष्य के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि स्वास्थ्य एक संपूर्ण विश्व के सामने एक चुनौती बन गया है, और
1: जी
0: दिन प्रतिदिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, संक्रामक जो रोग हैं उन पर भी जो है वो पूरी तरह से जो है अब उनसे भी निजात पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ साथ बहुत सारी जो हमारी आधुनिक एंटीबायोटिक्स दवा हैं वो रेजिस्टेंट हो रही हैं, उनका असर बहुत कम हो रहा है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए आज संपूर्ण विश्व जो है वो पुनः भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की ओर आकर्षित है, और आयुर्वेद जो है वो एक शाश्वत जीवन दृष्टि का आधुनिक विज्ञान है जो प्रमाण अनुसंधान और नवाचार से जोड़कर ऐसा स्वास्थ्य मॉडल भविष्य के लिए विकसित करना चाहते हैं जिससे कि पूरे दुनिया को समग्र स्वास्थ्य उपलब्ध कराया जा सके।
1: जी शेखावत साहब, जब आयुर्वेद की हम बात करते हैं तो उसमें दिनचर्या और ऋतुचर्या की बात होती है, तो
0: जी
1: आयुर्वेद में इन दोनों का क्या महत्व है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए।
0: हम अगर किसी भी तरह की जो तकलीफ हमें आज के समय में जो परेशानियां होती हैं जिन्हें हम बड़ी बड़ी समस्या के रूप में गिनते हैं प्राय, लेकिन अगर हम उनके मूल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारी दिनचर्या, हमारी रात्रिचर्या, हमारी ऋतुचर्या, हमारे धारणी अधारणी वेग, योग प्राणायाम, जो भी हमारे स्वस्थ व्रत से संबंधित जो विषय हैं, हम इन विषयों की आयु के वेद में जो हमें सिद्धांत बताए हैं इनकी अवहेलना करते हैं, और इनकी अवहेलना करने के उपरांत ही हम बड़ी बड़ी बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। जैसा हमारे यहाँ शास्त्र में बताया गया कि दिनचर्या का एक बिंदु है कि हमें रात्रि जागरण नहीं करना है,
1: जी
0: लेकिन आज के समय में सामान्यतः जीवन शैली में ये आ गया है कि लोग लगभग रात को 12-1 बजे से पहले नहीं सो रहे हैं। तो इस तरह से करके वो मध्य रात्रि तक जो जागरण हो रहा है इससे शरीर में वात दोषों का प्रकोप बढ़ता है, इंडाइजेशन की स्थिति पैदा होती है, हाइपरटेंशन की स्थिति पैदा होती है, और वो हमें अनेकों सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक रोग शरीर में होते हैं वो वायु वात दोष से ही होते हैं, और इस तरह से किडनी फेल्योर की समस्या, क्योंकि बीपी बढ़ता है फिर उसके बाद में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम किडनी फेल्योर की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये जो एक सामान्य सा जो सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है कि हमें ठीक समय पर सोना चाहिए,
1: जी
0: हमने इस बिंदु की अवहेलना करी तो बहुत घातक परिणामों की तरफ हम जाते हैं।
1: सर, आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे जो कहते होंगे हमें नींद नहीं आती या हमारे काफी समस्याएं हैं, तो ये रात को जो सोने की समस्या है इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप पे? क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग सो नहीं पा रहे हैं ठीक प्रकार से?
0: सर आधुनिक जीवन शैली में एक बहुत ही ज्यादा कंपटीशन वाली चीजें बढ़ गई हैं, और जिसकी वजह से हर समय जो है आदमी एक तनावपूर्ण जीवन शैली में जी रहा है। जो आयुर्वेद में एक संयमित जीवन शैली के लिए बताया जिसमें कि दिनचर्या में आपको बिल्कुल एक व्यवस्थित जीवन जीना है, कार्य अपने सभी करने हैं लेकिन एक व्यवस्थित जीवन जीना है। लेकिन आज के समय में मोबाइल स्क्रीन्स का जो अत्यधिक यूज बढ़ा है, मोबाइल वगैरह का, तो उससे भी लोग रात को घंटों स्क्रीन टाइम बढ़ा लेते हैं, और जो नींद का समय होता है उस समय वो सोते ही नहीं है, तो फिर वो अनियमित जीवन शैली कारण धीरे धीरे करके अनिद्रा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है लोगों के साथ।
1: जी जी ऐसा कुछ ही समय पहले हमने कुछ युवाओं से बात की जिनको जेन जीज कहा जाता है आजकल, तो
0: जी
1: उनसे
0: सर,
1: हमने बात की, हमने कहा आप पूरी रात तो जगते हैं और पूरा दिन सोते हैं तो इससे स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो उनका ये कहना था कि शरीर को क्या पता कि

0: उतने ही घंटे सोते हैं और उतने ही घंटे जागते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जिनका ये तर्क है?
1: नहीं, ये तथ्य बिल्कुल सही नहीं है। शरीर को सब कुछ पता है। अगर हम ठीक समय पर प्रातःकाल हमारा उठना, फिर जिस समय हमारा खाने का समय होता है भोजन का, ये सब पूरी रूटीन की दिनचर्या अगर हम एक क्रम से करेंगे, तभी हमारा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से जो है तन और मान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। और जो लोग इसकी अवहेलना करते हैं, तो हर एक बिंदु पर हम घातक बीमारियों की तरफ बढ़ते हैं।
0: सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही कंपटीशन का जमाना है, तो ऐसे में तनाव और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो व्यक्ति का ज्यादातर खराब हो चुका है, तो ऐसे में कुछ
1: जी
0: उपाय बताइए कि किस प्रकार से मानसिक तौर पर स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: सर, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में बताया, जिस तरह से तन की तीन तरह की प्रकृति होती हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक इसी तरह से हमारे मन की भी तीन तरह की प्रवृत्ति होती हैं, सत्व, रज और तम। तो यहाँ पर अगर हमारी सात्विक प्रवृत्ति अच्छी होती है, तो हम निश्चित रूप से किसी भी तरह के मानसिक विकार से बच पाते हैं। और इस सात्विक प्रकृति को अच्छा रखने के लिए हमें सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक विचार और आयुर्वेद सद्व्रत सिद्धांतों का पालन करना होता है, जो आयुर्वेद में वर्णित है। अगर हम इनकी अनुपालना करते हैं, तो निश्चित रूप से हम एक संयमित और स्वस्थ मानसिक जीवन जी पाते हैं।
0: अक्सर ये चर्चा होती है कि कौन सी चिकित्सा पद्धति ज्यादा बेहतर है, तो हम आयुर्वेद की बात करें तो किन सामान्य बीमारियों में सबसे ज्यादा प्रभावी आयुर्वेद को आप मानते हैं?
1: सर, सभी चिकित्सा पद्धतियों का अपना एक स्थान है, लेकिन आयुर्वेद जो है उसका विशेष स्थान इसलिए है, और आज हजारों वर्षों पूर्व भी इस चिकित्सा पद्धति की पुनः संपूर्ण जो विश्व इसकी ओर आकर्षित है, उसके पीछे आयुर्वेद के शास्त्र सिद्धांत ही हैं, जो आज भी लोगों को स्वस्थ आयु जीवन प्रदान करने में सक्षम है। तो आयुर्वेद की जितनी भी जो दिनचर्या के विषय हैं, अगर हम इनका कहीं भी और उल्लेख नहीं मिलेगा, और अगर हम इन सबकी पर्याप्त जानकारी रखकर इसके अनुसार आयुर्वेद जीवन शैली को अपनाते हुए हमारे जीवन को बढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से हम होने वाले जो सीजनेबल डिजीज हैं या और भी बहुत सारे रोग हैं, उनसे हम सामान्य रूप से वैसे ही बच जाते हैं।
0: जी
1: अगर कोई हमें रोग होता भी है, तो उन रोगों के स्थायी समाधान के लिए जो है वो आयुर्वेद जाता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के लक्षणों का उपचार ना करके रोग के कारणों का उपचार करता है। तो स्थायी समाधान जो है वो आयुर्वेद से लोगों को प्राप्त होता है।
0: जी
1: प्राय आयुर्वेद में सभी तरह के जीवन शैली के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से लेकर इन्फेक्शन डिजीज तक, सभी में आयुर्वेद बेहतर काम करता है। और हम सभी इन लोगों ने अभी पूर्व में देखा कि कोविड में जब संपूर्ण दुनिया में हाहाकार मच रहा था, तो
0: हम्म,
1: आयुर्वेद ने ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी किस तरह से बेहतर सेवा प्रदान की है।
0: आजकल देखने में आया कि लोगों में धैर्य की बहुत कमी है, पेशेंस नहीं रहा है, तो ऐसे में जैसे कि एलोपैथी में होता है कि सरदर्द हुआ, गोली ली और वाला सरदर्द ठीक हो गया, तो इसी प्रकार से आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ज्यादा समय लगता है, तो इस बारे में थोड़ा सा आप समझा दीजिए कि आयुर्वेद किस प्रकार से भिन्न है और क्यों बेहतर है।
1: सर, आयुर्वेद को लेकर जो आम जन में है कुछ मिथ हैं, जैसा कि आम आदमी को लगता है कि आयुर्वेद में परहेज बहुत ज्यादा है, और इस दृष्टि से कई बार लोग बाग आयुर्वेद चिकित्सा को नकार देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल देके अगर बात करें हम, कि
0: जी
1: अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति को सामान्य कोई जुकाम या प्रतिशाय सामान्य दिक्कत हुई है, अगर दोनों ही स्थिति में एक व्यक्ति वहां आयुर्वेद ट्रीटमेंट लेता है और एक अगर एलोपैथिक उपचार लेता है, तो आप देखेंगे कि अगर एलोपैथिक चिकित्सा में कोई भी उसने एंटीबायोटिक ली है, कोई पेन किलर लिया है, कोई एंटी एलर्जिक लिया है, लेकिन इन सबको लेने के उपरांत यदि वो व्यक्ति लगातार कोल्ड ड्रिंक का सेवन करेगा, लगातार कोई ठंडे शीतल पेय पिएगा, या फिर वो एसी वगैरह में रहेगा, तो उस समय वो क्या ठीक हो पाएगा? वो ठीक नहीं हो पाएगा।
0: जी
1: ठीक इसीलिए आयुर्वेद में इन सब चीजों को परहेज की संज्ञा दी जाती है, कि जो बीमारी का कारण है। दरअसल क्या, आयुर्वेद में परहेज नहीं, जो बीमारी का मूल कारण होता है उसका निवारण किया जाता है, कि भाई आपको इससे बचना है, और
0: जी
1: बिना उससे बचे आप किसी भी पद्धति में जल्दी ठीक नहीं हो सकते। एक सामान्य प्रतिशाय का व्यक्ति भी अगर कुछ भी नहीं करेगा, कोई दवा भी नहीं लेगा, लेकिन शीतल ठंडे पदार्थों का त्याग करके हल्का गुनगुना पानी भी अगर वो 3 दिन तक लगातार पिएगा, तो भी वो 3 दिन में बहुत जल्दी ठीक हो सकता है।
0: अंत में अब हमारे तमाम श्रोता जो इस समय आपको सुन रहे हैं, उनको एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: मेरा आज आयुर्वेद दिवस के अवसर पर संपूर्ण श्रोताओं को यही संदेश है कि हमारे यहाँ हमेशा कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। तो आप इसको केवल कहने तक ही सीमित ना रखें, अपने जीवन में ढालें, क्योंकि इस दुनिया में स्वास्थ्य से बहुमूल्य चीज कोई नहीं है, और स्वास्थ्य जो है

0: वो आपको आयु के वेद के अनुसरण करने से ही प्राप्त होगा। आज भी अगर आप निश्चित रूप से आयुर्वेद के स्वास्थ्य संरक्षण सिद्धांतों को अपनाएंगे तो मैं आपको बड़े ही विश्वास के साथ कहता हूं कि आप बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे और निश्चित रूप से आपके घर में बहुत सारा आर्थिक धन जो कि स्वास्थ्य सेवाओं पे आज के समय में खर्च हो रहा है और आप और तन और मन से परेशान हो रहे हैं, उससे आपको निजात मिल पाएगी।
1: जी डॉक्टर पवन सिंह शेखावत जी, आज आपने इस महत्वपूर्ण दिवस पर जो वक्त निकालकर हमसे फोन लाइन के जरिए बात की, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी, आपका बहुत बहुत आभार सर कि आज आपने मुझे आकाशवाणी के समस्त श्रोताओं से जुड़ने का इस विशेष दिन पर यह अवसर प्रदान किया। धन्यवाद सर।
2: अभी आपने सुनी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर वरिष्ठ आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर पवन शेखावत से शिव कुमार शर्मा की बातचीत। लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में द ट्रेन फिल्म से गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत से सवारा है आरडी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे।

0: सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानों, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए डिजिटल पीपीओ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वेद दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन और एशियाई खेलों के पांचवें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। प्रधानों, जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के लिए ये लॉटरी निकाली गई। हर श्रेणी में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। जिला निर्वाचन अधिकारियों के निर्देशन में ये प्रक्रिया पूरी की गई। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में केवल 4 सीट अनारक्षित रही है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिले में अलग अलग कोटे से कुल 11 महिला प्रधान बन सकेंगी।
1: जो डायरेक्शन आए थे उसके अनुसार जिला परिषद सदस्य के 57 वार्ड्स के लिए आज रिजर्वेशन की प्रक्रिया हमने की है लॉटरी के माध्यम से, और जो पॉपुलेशन के बेसिस पे के साथ साथ पंचायत समिति प्रधान की 22 प्रधान है उनकी जो रिजर्वेशन है उनको हमने लॉटरी के माध्यम से की है। इसके अलावा पंचायत समिति सद के वार्ड्स है, टोटल 386 वार्ड्स की जो रिजर्वेशन है उनके पॉपुलेशन के अनुसार और लॉटरी के बेसिस पे एससी एसटी ओबीसी और साथ साथ महिलाओं के सीट की रिजर्वेशन आज हमने संपन्न की है।
0: प्रदेश में अभी पंचायत चुनावों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, किंतु आरक्षण तय होने के साथ ही चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं और संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ने के आसार हैं। उदयपुर की 20 पंचायत समितियों में से केवल एक सीट अनारक्षित हुई है, वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति वर्ग से प्रधान बनेगा। हनुमानगढ़ जिले की 10 पंचायत समितियों में अलग अलग वर्गों के लिए प्रधान पद आरक्षित किए गए हैं। जिला परिषद और पंचायत समितियों के बाद कल उपखंड स्तर पर वार्ड पंच और सरपंचों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में पानी की समस्या दूर करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश में 10 अंतर्राज्यीय जल बंटवारा समझौते हुए हैं, इनमें से 4 राजस्थान से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री आज ब्यावर जिले के जैतारण में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी, यमुना, नर्मदा, किशाऊ बांध परियोजना समझौते से प्रदेश में पानी की कमी दूर होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में स्टेट वन इलेक्शन के तहत नगरीय निकाय चुनावों से समय और श्रम दोनों की बचत हुई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव के बाद सहकारिता चुनाव करवाने की बात भी कही। इसके बाद मुख्यमंत्री रामदेवरा पहुंचे। श्री शर्मा ने बाबा रामदेव पैनोरमा से मंदिर तक पदयात्रा में शिरकत की। जयपुर में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग तथा पुलिस और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेंशन अदालत लगाई गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य भवन में 13 पेंशनर्स को पीपीओ प्रदान किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सीएमएचओ कार्यालयों में उपस्थित पेंशनर्स से संवाद भी किया। मुख्य सचिव ने कहा कि पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए डिजिटल पीपीओ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जिलों में भी पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरजीएचएस योजना के तहत अधिक ओपीडी भार वाले बड़े अस्पतालों में पेंशनर्स के लिए अलग काउंटर बनाया जाए। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि राजस्थान का पेंशन सिस्टम देश की बेहतरीन पेंशन सिस्टम में से एक है। पेंशनर्स के अधिकारों और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। इसके लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं।
2: पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स हैं, इसको टाइम बाउंड पीपीओ जारी करने के लिए आज नवाचार किया गया है और डिजिटल पीपीओ जारी करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात भी कहा गया था पुलिस डिपार्टमेंट में कि हम लोग रिटायर होते हैं चित्तौड़ से और बसते हैं जैसलमेर में, तो हमारा पीपीओ इंटरऑपरेबल रहना चाहिए, तो उसी ट्रेजरी के साथ जोड़ा जाए। वो भी आज बजट डिवीजन ने ये बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ पीपीओस का भी उन्होंने व्यवस्था किया है, तो एक ट्रेजरी से दूसरा ट्रेजरी में ट्रांसफर होगा। और पेंशन फॉर्म भरने में सिंप्लीफिकेशन काफ़ी किया है और पेंशन ग्रीवेंसेस टाइम बाउंड मैनर में लिए जा रहे हैं।
0: वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति

0: राज्य के दो दिन के दौरे पर है। लोकसभा सांसद भृतहरि महताब की अध्यक्षता वाली इस समिति ने आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान राज्य में आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा की गई और विभिन्न विकास संकेतकों की प्रगति पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अनुसार संजीव भाटिया को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया है। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, जिसमें आयुर्वेद की उपयोगिता, समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली में इसकी भूमिका पर विचार साझा किए गए। आयुर्वेद विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने कहा कि सूर्य नमस्कार को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, जिससे विद्यार्थी बचपन से ही योग और प्राणायाम का अभ्यास कर सके। उन्होंने कहा कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हर बीमारी के इलाज में कारगर है।
1: आयुर्वेद जो है वो तुरंत कारीगर होता है, ये क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए भी काम में आता है, ये इंटीग्रेशन के माध्यम से भी काम में आता है कि आप अलग अलग जो पद्धतियां हैं, जैसे इसमें योग है, व्यायाम है, आहार है, तो एक होलिस्टिक जो अप्रोच हमारा होना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो शरीर में है वही बाहर है, और जो बाहर है पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और ये सारा जो ब्रह्मांड और हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो बाहर के पंच महाभूत अच्छे होंगे, जो पृथ्वी है, आप, तेज, वायु, आकाश, ये अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे।
0: आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों सहित अन्य कार्मिकों को समारोह में सम्मानित किया गया। स्टार्टअप इंडिया पहल ने पिछले एक दशक में देश में उद्यमशीलता का एक नया अध्याय खोला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्टार्टअप्स की शुरुआती वित्तीय और मार्गदर्शन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी सीड फंड योजना और पोर्टल चलाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं केंद्र सरकार की जनउपयोगी पहल स्टार्टअप इंडिया के बारे में।
2: देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करीब एक दशक पहले स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई। साल 2016 से शुरू हुई इस नीतिगत पहल ने भारत की उद्यमशीलता और नवाचार पर परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। दिसंबर 2025 तक 2 लाख से ज्यादा DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ भारत दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में मजबूती से खड़ा है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली NCR इस परिवर्तन में अग्रणी रहे हैं। साथ ही 50% से ज्यादा स्टार्टअप्स अब Tier 2 और Tier 3 शहरों से आ रहे हैं। ये देश के ग्रामीण और शहरी विभाजन को पाट रहे हैं। इससे ग्रामीण आजीविका को समर्थन मिल रहा है। साथ ही महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहे हैं। स्टार्टअप्स रोजगार सृजन के साथ ही नवाचार और वैश्विक बाजार एकीकरण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। न्यूज डेस्क से सलेहा गाजी।
0: सवाईमाधोपुर जिले में पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत तकनीकी सहायता से 200 से ज्यादा गुमशुदा मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिन्हें पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय ने उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि साइबर सेल और पुलिस की विशेष टीम ने इन्हें तकनीकी माध्यम से ट्रैक किया।
3: सवाईमाधोपुर पुलिस द्वारा समस्त सवाईमाधोपुर में जितने भी हमारे मोबाइल फोन CAI पोर्टल पे जिसने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, उनमें से करीब 260 मोबाइल फोन को हमने बरामद किया है। तथा हमारा आगे भी सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिसका भी फोन खोया है वो CAIR पोर्टल पे अपने मोबाइल को जरूरी दर्ज कराए। इसमें जो हमारी मुख्य भूमिका रही है, इसका पूरा श्रेय जाता है सवाईमाधोपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम को।
0: और अब बात खेल जगत की। जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के पांचवें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। वहीं जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा

0: महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लो की भारतीय तिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीते हैं। प्रदेश में मॉनसून विदाई का दौर शुरू होने के साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। बारिश का सिलसिला थमने के साथ ही गर्मी और उमस ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। जैसलमेर में पिछले कुछ दिनों से पारा 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कल अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री मापा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर प्रधानों, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आज आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, पेंशन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए डिजिटल पीपीओ जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेद दिवस के मौके पर प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। और एशियाई खेलों के 5वें दिन भारत ने 5 मेडल अपने नाम किए। स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से झुंझुनू जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है संदीप केड़िया ने। नगरीय निकाय चुनाव में जिले के 19 निकायों में अध्यक्ष पदों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें कांग्रेस ने 10, भाजपा ने 8 और एक निकाय में निर्दलीय प्रत्याशी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। उपाध्यक्ष पदों के चुनाव में कांग्रेस ने 9, भाजपा ने 6 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4 निकायों में जीत दर्ज की। खेतड़ी नगरपालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा की गीता देवी सैनी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुकी थी। जिले में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इससे पहले अभियान की तैयारियों को लेकर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि 17 अक्टूबर तक चलने वाले अभियान में आमजन, किसान, महिलाओं, युवाओं और विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अभियान को केवल औपचारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रखने की बात कही। अभियान के तहत जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने दीप जलाकर देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। अलसीसर ग्राम पंचायत के सरोवर परिसर में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। महिलाओं ने मंगल गीत प्रस्तुत किए। विश्व ओजोन दिवस पर कंजर्वेशन रिजर्व बीड झुंझुनू में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर ओजोन परत के संरक्षण, पौधरोपण और ऊर्जा बचाने का संदेश दिया। इसके बाद बीड क्षेत्र में पौधे लगाए गए। विद्यार्थियों ने वन क्षेत्र का भ्रमण कर स्थानीय वनस्पतियों, पक्षियों और वन्य जीवों के बारे में जानकारी ली। क्षेत्रीय वन अधिकारी अमित कुमार सैनी ने पर्यावरण संरक्षण में समाज की भागीदारी की आवश्यकता बताई। जिले में युवाओं को विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से जोड़ने के लिए जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में क्विज में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी और माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण की समीक्षा की गई। शिक्षा, सामाजिक न्याय, RCT, ITI और पॉलिटेक्निक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से युवाओं का पंजीकरण कराने के लिए कहा गया है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिले के चिकित्सा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। CMHO डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर ने चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति और दवाओं तथा जांचों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मरीजों को दवा बाहर से खरीदने या जांच बाहर से कराने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। सरकारी आपूर्ति नहीं होने पर नियमानुसार स्थानीय स्तर पर दवा उपलब्ध कराने को कहा गया। मरीजों को जांच रिपोर्ट व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। कोलसिया स्थित टाई एंड डाई क्लस्टर में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत इसमें 80 से अधिक कारीगरों ने भाग लिया। उन्हें योजनाओं की सुविधाओं और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पारंपरिक उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में AI और डिजिटल माध्यमों की भूमिका भी समझाई गई। नशा मुक्त राजस्थान और स्वच्छ भारत अभियान के तहत शेखसर और तोलियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक

0: विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम हुए, विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के साथ बाल अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई, उन्हें नशे से दूर रहने और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। स्पर्श अभियान के तहत प्रभारी सचिव नवीन जैन ने करीब 1300 विद्यार्थियों और शिक्षकों से संवाद किया। उन्होंने साइबर सुरक्षा, सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल और बाल शोषण से बचाव जैसे विषयों की जानकारी दी। अभियान के समन्वयक डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि वर्ष 2019 में शुरू हुआ यह अभियान अब तक 21 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच चुका है। झुंझुनू शहर में नगर परिषद की ओर से साफ सफाई और रखरखाव के काम किए जा रहे हैं। सड़क किनारे जमा मिट्टी और मलबा हटाने के साथ ही डिवाइडरों की सफाई की गई। नगर परिषद आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि सड़कों के पैचवर्क और नालियों के फेरो कवर से जुड़े काम भी किए जा रहे हैं। पिलानी स्थित CSIR केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन किया गया। संस्थान की स्वदेशी तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। झुंझुनू जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आवता पंचायत चुनाव में प्रधान, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो, पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल BPO जारी करण री कोशिश करी जा रही है। आयुर्वेद दिवस रे मौके प्रदेश में न्यारी न्यारी ठोणा स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम रखी चिया। और एशियाई खेलां रा पांचवां दिन भारत 5 तमगा जीत्या। नामी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू चांदी रो तमगो जीत्यो। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रदेश में पंचायत चुनाव बाबत प्रधान, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य सारू आज आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। इन तेत हर श्रेणी में महिलाओं सारू आधी सीटा आरक्षित रखी ची है। जयपुर जिला री 22 पंचायत समितियां में केवल 4 सीट अनारक्षित रही है। जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि जिला में न्यारा न्यारा कोटाओं 11 महिला प्रधान बन सकेला।
2: जो डायरेक्शन आए थे उसके अनुसार जिला परिषद सदस्य के 57 वार्ड्स के लिए आज रिजर्वेशन की प्रक्रिया हमने की है लॉटरी के माध्यम से, और जो पॉपुलेशन के बेसिस पे के साथ साथ पंचायत समिति प्रधान की 22 प्रधान है उनकी जो रिजर्वेशन है उनको हमने लॉटरी के माध्यम से की है। इसके अलावा पंचायत समिति सद के वार्ड्स है, टोटल 386 वार्ड्स की जो रिजर्वेशन है उनके पॉपुलेशन के अनुसार और लॉटरी के बेसिस पे SC ST OBC और साथ साथ महिलाओं के सीट की रिजर्वेशन आज हमने संपन्न की है।
1: प्रदेश में फिलहाल पंचायत चुनाव रो ऐलान नहीं करी चियो है, पण आरक्षण तय भेवन सा गई चुनाव लड़वारी मर्जी राखण वाला री हलचल बधवार आसार है। उदयपुर री 20 पंचायत समितियां में केवल 1 सीट अनारक्षित रही है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और प्रतापगढ़ में अनुसूचित जनजाति तबका रो उम्मीदवार प्रधान बनेला। हनुमानगढ़ जिला री 10 पंचायत समितियां में न्यारा न्यारा तबका सारू प्रधान पद आरक्षित करी चिया है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि सरकार प्रदेश में पानी री परेशानी आगीकरण सारू सगला जरूरी जतन कर रही है। वह आज ब्यावर जिला रा जैतारण माए राखी जाए एक कार्यक्रम माए बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि हाल ही माए देश माए न्यारा न्यारा राज्य बीच पानी रा बंटवारा जुड़िया 10 करार करी चिया है, जा मायू 4 राजस्थान नु जुड़िया है। श्री शर्मा कहो कि ERCP यमुना नर्मदा किशाऊ बांध परियोजनाओं जुड़िया करार हूं प्रदेश माए पानी दे कमी दूर फैला। मुख्यमंत्री कहो कि राज्य में वन स्टेट वन इलेक्शन रिसोच रातेत कराई चा नगरीय निकाय चुनाव समय और श्रम दोनों री बचत भी है। वह पंचायत चुनाव पाछे सहकारिता चुनाव करावन री बात ही कही। इन पाछे मुख्यमंत्री रामदेव राय बाबा रामदेव पेनारोमाऊ मिंदर ताई निकाली जी पैदल यात्रा में शामिल हुआ। श्री शर्मा बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना कर अर्चना

0: सारी खुशहाली री कामनाई कीनी। जयपुर में आज चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग री पेंशन अदालत लगाई ची। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास स्वास्थ्य भवन में पेंशन लेवन वाला 13 जना ने पीपीओ दीना व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए राज्य रा न्यारा न्यारा सीएमएचओ दफ्तर में मौजूद पेंशनर सागे बातचीत कीनी। ई मौके मुख्य सचिव कहो के पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल पीपीओ जारी करन री कोशिश करी जा रही है। वे आरजीएचएस रातेत मरीजा री 32 तादाद वाला अस्पताल माए पेंशन लेवन वाला सारू न्यारा काउंटर बनावन रा हुकम ई दीना। खबर नवी सागे बातचीत करता थका मुख्य सचिव कहो के राजस्थान रो पेंशन सिस्टम देश रा बेहतरीन पेंशन सिस्टम माए शामिल है। वे कहो के पेंशन लेवन वाला रा हक और उनरा स्वास्थ्य री हिफाजत ते करण सारू राज्य सरकार लगातार काम कर रही है।
1: पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स हैं, इसको टाइम बाउंड पीपीओ जारी करने के लिए आज नवाचार किया गया है और डिजिटल पीपीओ जारी करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात भी कहा गया था पुलिस डिपार्टमेंट में कि हम लोग रिटायर होते हैं चित्तौड़ से और बसते हैं जैसलमेर में, तो हमारा पीपीओ इंटरऑपरेबल रहना चाहिए, तो उसी ट्रेजरी के साथ जोड़ा जाए। वो भी आज बजट डिवीजन ने ये बताया कि इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ पीपीओस का भी उन्होंने व्यवस्था किया है, तो एक ट्रेजरी से दूसरा ट्रेजरी में ट्रांसफर होगा। और पेंशन फॉर्म भरने में सिंप्लीफिकेशन काफ़ी किया है और पेंशन ग्रीवेंसेस टाइम बाउंड मैनर में लिए जा रहे हैं।
0: लोकसभा सदस्य भर्तहरी मेहताब री सदारत वाली वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति राज्य रो 2 दिन रो दौरो कर रही है। समिति आज मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और राज्य सरकार रा न्यारा न्यारा महकमा रा आला अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। इस दौरान राज्य में आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रो जायजो लियो चियो। भारतीय जनता पार्टी न्यारा न्यारा राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेश सारू पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियां री नियुक्ति कीनी है। पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन रे मुजब संजीव भाटिया ने राजस्थान रा प्रभारी बनाई चिया है। सतीश पुनिया ने जम्मू कश्मीर और पंजाब रा प्रभारी बनाई चिया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। आयुर्वेद दिवस रे मौके आज प्रदेश में आई न्यारी न्यारी छोड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाई चिया और जाग जगावन रा कार्यक्रम राखी चिया। जयपुर में राखी चिया राज्य स्तर रा जलसा में आयुर्वेद री उपयोगिता, समग्र स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली में आयुर्वेद री भूमिका रे बारा में विचार करी चियो। ई मौके आयुर्वेद विभाग रा प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार कहो के सूर्य नमस्कार ने स्कूलां री पढ़ाई रो हिस्सो बनायो जा सके है, जिणो विद्यार्थियां ने बालपणा उई योग और प्राणायाम रो अभ्यास करन रो सुबीतो मिल सके है। वे कहो के परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद हर बीमारी रा इलाज में कारगर है।
2: आयुर्वेद जो है वो तुरंत कारीगर होता है, ये क्रॉनिक एलिमेंट्स के लिए भी काम में आता है, ये इंटीग्रेशन के माध्यम से भी काम में आता है कि आप अलग अलग जो पद्धतियां हैं जैसे इसमें योग है, व्यायाम है, आहार है, तो एक होलिस्टिक जो अप्रोच हमारा होना चाहिए। आयुर्वेद का सिद्धांत है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, मतलब जो शरीर में है वही बाहर है और जो बाहर है पूरे विश्व में है, ब्रह्मांड में है, वही हमारे शरीर के अंदर है। और ये सारा जो ब्रह्मांड और हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो बाहर के पंच महाभूत अच्छे होंगे, जो पृथ्वी है, आप, तेज, वायु, आकाश, ये अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे रहेंगे।
0: कार्यक्रम रे दौरान आयुर्वेद रा हलका माय बेहतरीन काम करन वाला वैद्यां और नर्सिंग कर्मचारियां समेत दूजा कर्मचारियां रो मान करी चियो। स्टार्टअप इंडिया पहल लारला 10 साल माय देश माय उद्यमशीलता रो नुवो पाठ शुरू कीनो है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय रा तहत स्टार्टअप री शुरुआती माली और मार्गदर्शन जुड़ी जरूरत पूरी करण सारोई सीड फंड योजना और पोर्टल चलाया जा रहा है। पेश है केंद्र सरकार री खास पहल स्टार्टअप इंडिया रे बारा में एक रिपोर्ट।
3: देश में करीब 10 साल पहले कारोबार ने बधावो देवण सारू स्टार्टअप इंडिया री शुरुआत करी जी ही। साल 2016 में शुरू हुई नीतिगत पहल देश री उद्यमशीलता और नवाचार माथे बदलाव लावण वालो असर डालियो है। दिसंबर 2025 ताई 2 लाख हूं बत्ता डीपीआई

0: ITU માન્યતા મિલ્યોડા સ્ટાર્ટઅપ સાગે ભારત દુનિયારા સબુ મોટા સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ રા તોરુ મજબૂતીઓ સામી આયો હે બંગલુરુ હૈદરાબાદ મુંબઈ અર દિલ્હી NCR ઈ બદલાવ માય અગાડી રહ્યા હે ઈ સાગે આધા ઉપત્તા સ્ટાર્ટઅપ સબ ટીયર 2 ઓર ટીયર 3 શહેરા માય પનપ રહ્યા હે ઇણુ ગાવાઈ હલકા માય કામ કમાઈ ને વધાવો મિલ રહ્યો હે ઈ સાગે મહિલાવારી અગવાઈ વાલા સ્ટાર્ટઅપ ક્ષેત્રીય રૂપો સંતુલિત વિકાસ રા ખાસ ચાલક રા તોરુ સામી આ રહ્યા હે સ્ટાર્ટઅપ્સ નોકરી ધંધા રા મોકા બધાવણ સાગે નવાચાર ઓર વૈશ્વિક બાજાર ને એક કરણ ને વધાવો દે રહ્યા હે ન્યૂઝ ડેસ્ક કુ સાલેહા ગાઝી
1: સવાઈ માધોપુર જિલ્લા માં પોલીસ ગમ્યોડા મોબાઈલ ફોન રી બરામદગી સારું ખાસ અભિયાન ચલાર 272 ગુમશુદા મોબાઈલ બરામદગી ના હે એસપી જ્યેષ્ઠા મૈત્રેય બરામદ મોબાઈલ ફોન વારા અસલી માલિકા ને સોંપતી ના વે બતાયો કે સાયબર સેલ એર પોલીસ રી ખાસ ટીમ તકનીક કામ લેર એ મોબાઈલ બરામદગી ના
2: सवाई माधोपुर पुलिस द्वारा समस्त सवाई माधोपुर में जितने भी हमारे मोबाइल फोन CAI पोर्टल पे जितने गुमशुदगी दर्ज कराई थी उनमें से करीब 260 मोबाइल फोन को हमने बरामद किया है तथा हमारा आगे भी सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जिसका भी फोन खोया है वो CAIR पोर्टल पे अपने मोबाइल को जरूरी दर्ज कराए। इसमें जो हमारी मुख्य भूमिका रही है इसका पूरा श्रेय जाता है सवाई माधोपुर पुलिस की साइबर सेल की टीम को।
1: अरे बात खेल कूदरी जापान माय चल रहा एशियाई खेला माय बोझ उंचावण री होड़ भारोत्तोलन माय भारत री मीराबाई चानू 49 किलोग्राम वर्ग माय चांदी रो तमगो जीत लीनो है। भारत रा जय मीणाई आज सॉफ्ट टेनिस रा एकल मुकाबला माय कांसा रो तमगो जीत अर इतिहास बना दीनो। निशानेबाजी री स्कीट होड़ रा महिला अर पुरुष वर्ग माय भारत ने कांसा रा तमगा मिलिया। अनंत जीत सिंह नरुका मेराज अहमद खान अर भवतेक सिंह गिल री टीम 346 अंक हासिल कर अरकांसा रोतम को जीतियो। महिला वर्ग में माहेश्वरी सिंह परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लो री तिकड़ी देश सारू कांसा रो एक और तमगो हासिल कीनो। भारत हाल ताई सोनारो 1 चांदीरा 5 और कांसारा 6 तमगा समेत कुल 12 तमगा हासिल कर लीना है। प्रदेश में चौमासारी बिरखा लगभग बंद हुए जावण पाछे पारो ओजू चढ़वा लग्यो है। जैसलमेर में लाडला कुछ दिनों तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आरएसआर दर्ज करियो जा रियो है। काल सबों बत्तो तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस में पीछियो। बीकानेर बाड़मेर और चूरू में दिन रे भगत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे करीब रिकॉर्ड करीचियो। मौसम विभाग रे मुजब जोधपुर जयपुर अजमेर और पिलानी समेत घनखर ठोणा तापमान सामान्य ऊंचो चाल रियो है। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ली रहो। प्रदेश माय आवता पंचायत चुनाव माय प्रधान जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों री आरक्षण लॉटरी आज निकाली छी। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कहो पेंशन प्रक्रिया ने आसान बनावन सारू डिजिटल PPO जारी करण री कोशिश करी जा रही है। आयुर्वेद दिवस रे मौके प्रदेश माय नेरी नेरी थोड़ा स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता कार्यक्रम रखी छिया। और एशियाई खेलों रा पांचवा दिन भारत 5 तमगा जीतिया। नामी वेटलिफ्टर मीराबाई चानू चांदी रो तमगो जीतियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के ठीक 7 बजे है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती।

परी व्यवसाय पर चर्चा। तो देखिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुर्गी पालन का भारतीय कृषकों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि इस व्यवसाय में कम खर्चे की आवश्यकता होती है और आमदनी भी अच्छी और जल्दी होती है। मुर्गी से प्राप्त खाद कृषि के लिए वरदान है। घर की महिलाएं एवं बच्चे भी इस कार्य को कर सकते हैं और घर की आमदनी बढ़ा सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, मुर्गी पालन द्वारा आमदनी के अतिरिक्त मनुष्य के भोजन में अंडे एवं मांस द्वारा पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होने के कारण भी इस व्यवसाय की अत्यंत उपयोगिता है। लेकिन सबसे बड़ी बात हमारी आती है उन्नत नस्ल की। देसी मुर्गियों की उत्पादन क्षमता बहुत कम होने के कारण उन्नत नस्ल की मुर्गियां पालन लाभदायक होता है। उचित नस्ल का चुनाव करते समय उसके अंडा उत्पादक क्षमता, शारीरिक वृद्धि दर, वयस्क वजन, मृत्यु दर, इन सब का ध्यान हमें रखना चाहिए। और देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में आंगन में मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त अधिक उत्पादन वाली कई नस्लों का जो है विकसित किया गया है। इन सभी नस्लों को देसी मुर्गी को आधार मान करके तैयार किया गया है। इनमें निर्भीक, श्यामा, उपकारी, हितकारी, वनराजा, ग्रामप्रिया, गिरिराजा, ये सब प्रमुख हैं। ये देश के विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए गाँव में आंगन में मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त हैं और इनकी उत्पादन क्षमता देसी मुर्गियों के मुकाबले 3 से 4 गुना अधिक होती है। अंडों का आकार बड़ा, वजन भी अधिक होता है और मृत्यु दर भी कम होती है, तथा खराब आहार व प्रबंध स्थिति के बावजूद भी इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अब बात करें आवास व्यवस्था की, तो देखिए, मुर्गियों का दड़बा बनाते समय यहाँ ध्यान रखने की एक वयस्क मुर्गी को 2 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता होती है। दड़बा जमीन से थोड़ा ऊपर ढलान वाली जगह बनाना चाहिए, ताकि बरसात में अंदर पानी न भर सके और साफ सुथरा, हवादार, नमी रहित, सूखा होना चाहिए। मुर्गी घर की लंबाई पूर्व पश्चिम में होनी चाहिए, ताकि मुर्गियों को धूप व प्रकाश मिल सके। और देखिए, प्रकाश की व्यवस्था उचित रहती है। दड़बे की सफाई रोज करनी चाहिए, तथा समय समय पर जो कीटाणुनाशक दवा है उसका भी हमको छिड़काव करना चाहिए। और देखिए, 20 मुर्गियों के लिए 8 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 5 फीट ऊंचा दड़बा हमको बनाना चाहिए। इस दड़बे में एक दरवाज़ा, 2 तथा 2 और जाली की खिड़कियां होनी चाहिए, ताकि स्वच्छ हवा अंदर आ सके। दड़बे में फर्श कच्चा या पक्का रख सकते हैं, परंतु फर्श पर चावल की भूसी, गेहूं का भूसा या सूखी घास 3 से 5 सेंटीमीटर बिछावन या बिछानी चाहिए। समय समय पर इसे हमको पलटते रहना भी चाहिए। अब बात करें आहार की, तो देखिए, संतुलित आहार मुर्गी पालन से अधिक उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि मुर्गियों को संतुलित आहार दिया जाए। मुर्गियों को उनकी आयु, विकास के स्तर, उत्पादन के हिसाब से दाना दिया जाना चाहिए। आमतौर पर मुर्गियों का दाना बनाने के बारे में मुर्गी पालक किसी बात का विचार नहीं करते, बस थोड़ी सी मक्का, खली, चोकर या अन्य उपलब्ध अनाजों को मिलाकर के मुर्गी आहार तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार से तैयार आहार से अच्छा उत्पादन नहीं हो पाता और मुनाफा भी नहीं मिलता। संतुलित आहार को मक्का, चावल, बाजरा, ये सब अनाज का दलिया, चोकर, चावल की फलेस, खल, खनिज लवण मिश्रण आदि को उचित अनुपात में मिला करके घर पर ही तैयार किया जा सकता है। बाजार में विभिन्न आयु के पक्षियों के लिए तैयार दाना उपलब्ध होता है। चूजों को 8 सप्ताह की उम्र तक भरपेट संतुलित आहार देना चाहिए, ताकि उनकी बढ़वार अच्छी हो सके। 8 सप्ताह बाद में दिन में उन्हें बाहर खुला छोड़ देना चाहिए और दिन भर वे घर के आंगन तथा खेतों में अन्न के दाने और बीज, कीड़े मकोड़े, घास की कोमल पत्तियां एवं घर के झूठन खा करके अपना पेट भर सकें। भोजन की उपलब्धता मौसम एवं खेतों पर खड़ी फसल के अनुसार 8 सप्ताह के बाद में पक्षियों को 35 से 40 ग्राम दाना प्रति पक्षी के हिसाब से प्रतिदिन देना चाहिए। दाना हमेशा किसी बर्तन में ही दें। फर्श पर दाना खिलाने से दाना खराब और व्यर्थ में बर्बाद भी हो जाता है। मुर्गी पालन व्यवसाय से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रबंध व्यवस्था की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और देखिए, रोग नियंत्रण की यदि हम बात करें, तो मुर्गी पालक को सबसे ज़्यादा भय मुर्गियों की बीमारियों से रहता है।
बीमारियों से न केवल

ग्राम भारती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और दूर दराज के ढाणियों में रहने वाले भाई बंधुओं को सभी को शंभु भाई की ओर से घनी घनी राम राम। और देखिए किसान भाइयों, आज हम अपनी चौपाल में लेके आए हैं मुर्गी पालन एक लाभ।

मुर्गियों को मृत्यु होती है, बल्कि इसका बुरा असर चूजों के उत्पादन विकास और मुर्गियों की उत्पादकता पर भी पड़ता है। और देखिए, बीमारी के कारण की यदि हम बात करें तो बीमारियां कीटाणुओं द्वारा जैसे वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और प्रोटोजोआ, फफूंदी, इन सब के द्वारा फैलती है। जब मुर्गियां बीमारी से ग्रस्त होती जाती हैं तो बीमार मुर्गियों से बीमारी के कीटाणु बीट, मुंह की लार, जख्म, खून चूसने वाले जीवों द्वारा बाहर आते हैं और ये कीटाणु दूसरी स्वस्थ मुर्गियों में फैलते हैं।

0: ती हैं तो बीमार मुर्गियों से बीमारी के कीटाणु बीट मुंह की लार जख्म खून सूंघने वाले जीवों द्वारा बाहर आते हैं और ये कीटाणु दूसरी स्वस्थ मुर्गियों में फैलते हैं। तो मुर्गियों में बीमारी के लक्षण की यदि हम बात करें तो बीमार चूजे या मुर्गियां एक स्थान पर एकत्र होने लगती हैं और कुछ मुर्गियां आंखें बंद करके तथा सिर झुकाकर बैठ जाती हैं। बीमार मुर्गियां दाना पानी कम खाती हैं, पानी पीना बिल्कुल बंद कर देती हैं। कुछ बीमारियों के दौरान मुर्गियां ज़्यादा पानी पीती हैं। बीमारी के दौरान मुर्गियों के पंख ढीले होकर के लटक जाते हैं और मुर्गियों के पर की सजावट असंतुलित हो जाती है। कभी कभी पैर खराब हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप मुर्गियाँ जो है लंगड़ाते हुए चलती हैं, खड़े होने में असमर्थ हो जाती हैं और वह ज़्यादातर बैठी रहती हैं। पेचिस की बीमारी होने पर बीट का रंग हरा पीला सफ़ेद या लाल हो जाता है। मुर्गियों का वजन कम हो जाता है, अंडा उत्पादन कम या बंद हो जाता है। और देखिए मुर्गियों की कलंगी सूख जाती है या उसमें सूजन आ जाती है और उसका रंग बदल जाता है और उनकी चमक कम हो जाती है। मुर्गियों के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, नाक आँख मुँह से पानी निकलने लगता है। तो ये सब जब लक्षण दिखाई दें तो मानो कि ये सब बीमारियाँ जो हैं ये मुर्गियों को होने वाली हैं। तो बीमारियों को रोकथाम के लिए कुछ बीमारियां माता पिता से अंडों के माध्यम से चूजों में आ जाती हैं, इसलिए चूजा उत्पादन के लिए स्वस्थ मुर्गी से प्राप्त अंडों का प्रयोग करें, अन्यथा चूजे विश्वसनीय हैचरी से ही खरीदें। उचित आवास, बीमारियों के रोकथाम के लिए मुर्गियों के लिए उचित आवास व्यवस्था बहुत जरूरी है। तो इन सब का आप ध्यान रखें और समय समय पर बचाव के लिए टीके लगाएं। रोग से बचाव और रोकथाम के लिए मुर्गियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए और अनेक बीमारियों के लिए बचाव के टीके उपलब्ध हैं, जैसे रानीखेत, मेरेक्स, चेचक, इन सब के लिए। तो किसान भाइयों, इस तरह से हम यदि मुर्गी पालन करेंगे, समय समय पर उनका देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाएँ। डॉक्टर निहाल सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अलवर से ये भेंट वार्ता, तो लीजिए सुनते हैं।
1: पशुपालक भाइयों, राम राम। आज हम आपको जानकारी दिलवाते हैं पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में। जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर निहाल सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग अलवर। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार, पशुपालक भाइयों को नमस्कार।
1: तो देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे पशुपालक भाई हैं, उनको आप जानकारी दें आपके पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में, जिनमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है मंगला पशु बीमा योजना, ये क्या है, किस तरह से चलाई जा रही है आपके विभाग के द्वारा, इसके बारे में बताएं।
2: बिल्कुल पशुपालक भाइयों, जैसा कि आपने सुना भी है, मंगला पशु बीमा योजना चल रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में सरकार के द्वारा निशुल्क बीमा किया जाता है पशुओं का। उसमें एक जनाधार कार्ड पर दो पशुओं का बीमा किया जाता है। पहले जब शुरुआत की थी योजना की, उस समय उसमें दो पशुओं को लॉटरी के द्वारा चयन किया जाता, पहले आवेदन किया था फिर लॉटरी। लेकिन अभी पहले आओ पहले पाओ का सिस्टम कर रखा है। किसी प्रकार की कोई भी पशुपालक अपने, या तो एक गाय एक भैंस है, या दो भैंस है, या दो गाय है, और बकरी भेड़ की यदि बात करें तो एक यूनिट माना जाता है 10 बकरियों को या 10 भेड़ों को, तो उनमें 10 का किया जाता है। इसी प्रकार ऊँटों के लिए भी 10 ऊँटों को कर रखा है।
1: डॉक्टर साहब, अब हमारे पशुपालक भाई हैं, उनको हम बताएं आपके विभाग के द्वारा मोबाइल वेटनरी यूनिट चलाई जा रही है, इससे हमारे पशुपालक भाई हैं वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
2: मोबाइल वेटनरी यूनिट की बहुत बढ़िया सुविधा विभाग द्वारा पशुपालक भाइयों को प्रदान की जा रही है। इसमें 1962 एक नंबर होता है, उस पर आपको कॉल करना होता है और सुबह आप जल्दी ही उस पर कॉल कर दें तो उसे आपके घर पर ही मोबाइल वेटनरी यूनिट आपके पास में आएगी और जो इलाज है वो पूरा इलाज करके जाएगी। इससे जिन गांवों में जहां पर हमारे हॉस्पिटल नहीं हैं, जहां पर हमारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं पर्याप्त रूप से, वहां उन गांवों को जोड़ा गया है और बहुत बढ़िया सेवा मिल रही है। इससे आप यह कृत्रिम गर्भाधान भी करवा सकते हैं और पशुओं का इलाज भी करवा सकते हैं।
1: डॉक्टर निहाल सिंह जी, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, ये क्या है और इसका हमारे पशुपालक भाई हैं वो कैसे लाभ ले।
2: पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में विभाग द्वारा ज्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। क्योंकि हमारे जो गरीब पशुपालक भाई हैं उनके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने पशुओं का इलाज अच्छे से करवा सकें। इसके लिए विभाग द्वारा निशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की गई है जो कि पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना में पशु चिकित्सालय नजदीकी पशु चिकित्सालय में उपलब्ध होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अब हमारे पशुपालक भाई उनको आप जानकारी दें।

0: यानी कि नंदीशाला योजना क्या है और इससे वो किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं?
1: गौशाला योजना है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, क्योंकि गौशाला से हमें काफी सारे फायदे हैं। आज हम देखें कि जैसे कि गाय हैं, काफी ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं, जिससे किसानों को की फसलों को भी नुकसान होता है, तो उससे हमें ये फायदा होगा। गौशाला में सरकार के द्वारा 50 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से टोटल 270 दिन का बड़े पशुओं में जो 3 वर्ष से बड़े हैं उनको सहायता राशि दी जाती है, और 25 रुपए के हिसाब से जो छोटे पशु हैं यानी कि 3 वर्ष से छोटे हैं उनको 25 रुपए के हिसाब से सहायता राशि 270 दिन के लिए जाती है, और जो अंधे विकलांग कैटेगरी के जो पशु हैं उनको पूरे 12 महीने की सहायता राशि दी जाती है। गौशाला के लिए हमें एक समिति बनानी होती है, जिसको रजिस्ट्रार ऑफिस सोसाइटी एक्ट 1958 या किसी ट्रस्ट या गौशाला जो एक्ट है 1960 उसमें हमें उसका पंजीयन कराना होता है। तो इससे हमें हमारा जो गौवंश है, जो निराश्रित गौवंश है, जो सड़कों पर घूम रहा है, उसको हम गौशाला में भेज सकते हैं, और जो गौशाला पात्र गौशाला है यानी कि जिनको अनुदान मिलता है, जो सहायता राशि मिलती है, उनको 10% गौवंश उनकी क्षमता के अनुसार 10% गौवंश प्रत्येक वर्ष लेने का सहमति पत्र उनको पशुपालन विभाग में दिया जाता है। यानी कि जो गौवंश कोई हाईवे पे घूम रहा है या कहीं सड़क पर घूम रहा है तो उसको पुलिस के माध्यम से आप गौशाला में गौवंश को भी सहायता मिलेगी। और अभी जो सरकार की तरफ से गौ विकास योजना के नाम से वहाँ पर जो गौशाला जिनके पास में 20 वर्ष की लीज डीड है जमीन की, या उनके जमीन स्वयं की है गौशाला की, उनमें विकास योजना भी चलाई जा रही है। उनमें अभी जैसे बायोगैस प्लांट है वो भी लगाए जा रहे हैं, ताकि जो बायोगैस से का उत्पादन बढ़ेगा गैस का, तो उसका गौशाला एक तरह से आत्मनिर्भर बन सकती है। इस तरह से काफी योजनाएं हैं, जो में काफी सारी स्कीम है गौशाला के अंदर भी जो चलाई जा रही है।
0: डॉक्टर साहब, अंत में हमारे किसान भाइयों को या पशुपालक भाइयों को बताएं कि सेक्स ऑर्टेड सीमन है ये क्या है, और इससे हमारे पशुधन में किस तरह से विकास हमारे पशुपालक भाइयों को कर सकते हैं?
1: सेक्स ऑर्टेड सीमन का भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले हमारे जो बैल हैं वो बहुत ही कीमती होते थे, क्योंकि हमारी जो खेती है प्राचीन रूप से बैलों पर ही आधारित थी और वो एक तरह से बहुत ही उपयोगी थे। लेकिन अभी समय के साथ साथ में जैसे ही आधुनिक समय में अभी ट्रैक्टर से खेती होने लगी है, तो हमारे जो बछड़े हैं उनकी उपयोगिता कम हो गई है। इसलिए जो कंसेप्ट आया है सेक्स ऑर्टेड सीमन, तो इस सेक्स ऑर्टेड सीमन में ये होता है कि 90% चांस है कि इसे बछड़ी ही पैदा होगी। तो जो पहले 50-50% चांस थे कि 50% बछड़ा हो सकता है, 50% बछिया होगी, अब इसमें 90% ये है कि बछिया ही पैदा होगी, जो कि हमारे लिए उपयोगी है। तो ये 70 रुपए में किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों के लिए उपलब्ध है। इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वैसे मार्केट में 700 रुपए करीब मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से 70 रुपए में ही उपलब्ध होता है। इसलिए सभी से यही निवेदन है कि सभी सेक्स ऑर्टेड सीमन का फायदा उठाएं।
0: आपके विभाग के द्वारा ये सेक्स ऑर्टेड सीमन है जो हर पशु चिकित्सा केंद्र होता है उस पर नियमित रूप से कितना वितरित किया जा रहा है?
1: बिल्कुल, अभी वहाँ पर सभी जगह धीरे धीरे बढ़ा करके 100% जो सेक्स ऑर्टेड सीमन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। शुरू में 2 लाख एक्स्ट्रा का था पूरे राजस्थान में, उसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरा की पूरी तरह सेक्स ऑर्टेड सीमन ही सप्लाई किया जा रहा है।
0: डॉक्टर साहब, अब हमारे पशुपालक भाई, उनको आप जानकारी दें पशुधन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, किसान भाई हैं या पशुपालक भाई हैं वो किस तरह से लाभ ले सकते हैं?
1: जैसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, ऐसे ही पशुपालक भाइयों को भी गवर्नमेंट PKCC यानी कि पशुधन क्रेडिट कार्ड के नाम से उनका भी क्रेडिट कार्ड बनता है, और उनकी जो कीमत होती है उसके आधार पर डॉक्टर से सर्टिफाइड करा करके उनका क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, और उसमें जो ब्याज दर होती है वही जिस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड में होती है उसी अनुसार उसमें भी ब्याज दर होती है, ताकि जिनके पास में जमीन नहीं है, जो किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, उनसे अब पशुओं का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही अच्छा विकल्प है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड है जो बहुत अच्छा विकल्प है, इसलिए सभी पशु किसान क्रेडिट कार्ड जरूर बनवाएं।
0: जी देखिए डॉक्टर साहब, आपने पशुपालन विभाग के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके माध्यम से पशुपालक भाइयों से जुड़ने का मौका मिला और उनको हमने जानकारी उपलब्ध कराई। धन्यवाद।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुनी है भेंटवार्ता। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत, हनुमान साय शर्मा का गाया हुआ। तो लीजिए सुनते हैं ये लोकगीत।
1: ठीक है, लेकिन क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी है तो

0: अनिल जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: तो किशन भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। आइए चलते हैं अब जानकारी की ओर, खनिज मिश्रण का पशुपालन में महत्व। तो देखिए किसान भाइयों, भारत में पशुपालन छोटे व बड़े दोनों स्तर पर सबसे ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ व्यवसाय है। भारत में व्यवसायिक या छोटे स्तर पर दूध उत्पादन किसानों की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाता है। दूध उत्पादन में लाभ मुख्य रूप से तीन कारक जैसे पशु की नस्ल, पशु प्रबंधन, पशु पोषण पर निर्भर करता है। दुधारू पशुओं के विकास दर एवं उत्पादकता वृद्धि में पशु पोषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो आहार है ये सुनिश्चित करता है कि पशु अपना वांछित शारीरिक वजन पाले, अधिक दूध उत्पादन करे, स्वस्थ रहे। दुधारू पशुओं पर होने वाले कुल खर्च में से 70% भाग अकेले उसके आहार पर होता है, जिससे क्या होता है कि उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। डेयरी पशुओं के चारे और आहार में दुग्ध उत्पादन और प्रजनन के लिए जरूरी सभी खनिज शामिल नहीं होते। चारे और आहार में खनिजों का स्तर क्षेत्र से क्षेत्र में बदलता है। दुधारू पशुओं जैसे गाय है, भैंस, इन सबको कई तरह के खनिज पोषक तत्वों के शरीर के विकास एवं जनन हेतु आवश्यक होती है। खनिज तत्व जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है वो मुख्य खनिज तत्व कहलाते हैं, और जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म खनिज तत्व कहते हैं। मुख्य खनिज तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन एवं सल्फर को सम्मिलित किया गया है। एवं सूक्ष्म आवश्यक खनिज तत्वों में आयरन, जिंक, मैग्नीज, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट एवं सेलेनियम को सम्मिलित किया गया है। और वह खनिज तत्व जो सामान्य चारे में प्रचुर मात्रा में नहीं होते उन्हें खनिज मिश्रण के द्वारा प्रदान

किया जा सकता है। खनिज मिश्रण केवल उन्हीं खनिज तत्वों की पूर्ति करता है जो चारे में अपर्याप्त होते हैं। आवश्यक खनिज तत्व शरीर में विभिन्न तरीकों से कार्य करता है, हड्डियों तथा दांतों की दृढ़ता और शक्ति प्रदान करता है। ये शरीर में कई कार्बनिक यौगिकों जैसे प्रोटीन, वसा को ऊतकों, अंगों और रक्त कोशिकाओं और अन्य मुलायम ऊतकों के अवयव भी होते हैं। रक्त एवं शारीरिक द्रवों में घुलनशील लवणों के रूप में भी ये विभिन्न कार्यों में योगदान देते हैं। कुछ खनिज तत्व विषैले भी होते हैं, जिनको तादाद से अधिक ग्रहण करते हैं वे बीमारी या मृत्यु तक के शिकार हो जाते हैं। तांबा, सेलेनियम और मोलिब्डेनम और क्रोमियम आदि। खनिज मिश्रण के फायदे की यदि हम बात करें तो देखिए, बछड़ों बछड़ियों में विकास दर को बढ़ाता है, नर एवं मादा में प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, प्रजनन अंतराल को कम करता है, दुग्ध उत्पादन व रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है। पशु शरीर के लिए खनिज लवण की आवश्यकता यदि हम बात करें तो 400 किलोग्राम शरीर भार एवं 10 किलोग्राम दूध देने वाले पशु को हम औसत रूप से शारीरिक रखरखाव के लिए 18 से 20 ग्राम कैल्शियम, 14 से 15 ग्राम फास्फोरस और 8 से 10 ग्राम नमक दें। दूध उत्पादन के लिए 28 ग्राम कैल्शियम, 20 ग्राम फास्फोरस और 15 ग्राम नमक दें। कुल मिलाकर के 50 ग्राम कैल्शियम और 35 ग्राम फास्फोरस और 25 ग्राम हमको नमक देना चाहिए। और देखिए किसान भाइयों, हम यदि मान लो अपने जो पशु हैं उन पशुओं के खनिजों के कार्य और कमी से होने वाले रोग की यदि हम बात करें तो दांतों, हड्डियों के निर्माण एवं दूध उत्पादन में आदि अति आवश्यक होते हैं। अत्यधिक कैल्शियम की कमी से पशुओं में दुग्ध ज्वर हो जाता है। अधिक दुधारू पशुओं में इसकी कमी से अस्थायी हाइपोकैल्शियम हो जाता है। और फास्फोरस, गर्भवती स्तनपान कराने वाली गाय और फास्फोरस की कमी अधिक होती है। इससे क्या है, प्रजनन, दुग्ध और मांस उत्पादन तथा भूख में कमी आ जाती है तथा पशुओं में फीका रोग भी हो जाता है। तो इस तरह से कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो इन रोगों का भी ध्यान रखते हुए समय समय पर उनका उपचार कराएं ताकि हमारे पशु स्वस्थ रहें और अच्छा दूध दे पाएँ, ताकि हमें अच्छा लाभ हो। और आइए अब चलते हैं आज के मौसम की ओर। आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री नीरज भगत। और किसान भाइयों, आप घड़ी की सुई इशारा दे रही है आपसे अनुमति लेने का, तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। जय जवान, जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं कुमार सानू महालक्ष्मी लेयर की आवाज़ में कयामत फिल्म से गीत।
1: तेरे बिना ऐसे जिए जा रहा हूं मैं, लगता है जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं।

0: बलवान तो किसान बलवान। आपको काम अपनी माँ पर करना है, हमारी माँ हमें उसके घर में नौ माँ रखती है। और
1: अलका याग्निक की आवाज़ में लीजिए, अब सुनते हैं राज फिल्म से गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत सिसरावाला है नदीम शवन ने।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं कोयला फिल्म से गीत। गीतकार है इंदीवर और संगीत से सवारा है राजेश रोशन ने।

कुमार सानू की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं साजन की बाहों में फिल्म से गीत। गीतकार है समीर और संगीत से सवारा है नदीम शवन ने।

अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं शोल्डर फिल्म से। अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में लीजिए सुनते हैं शोल्डर फिल्म से गीत। गीतकार है समीर और संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

दलेर मेहंदी अलका याग्निक की आवाज़ में लीजिए, सुनते हैं अर्जुन पंडित फिल्म से गीत। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत से सवारा है दिलीप सेन, समीर सेन ने।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, फिल्म संगीत या आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज आप सुनेंगे इंदिरा शर्मा व सखियों की आवाज़ में गाए लोकगीत।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: प्रदर्शन जारी है। आज पूल बी के मैच में भारत ने थाईलैंड को 20-1 से हराया। इस जीत के साथ ही
1: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं वैष्णवी
1: मुख्य समाचार। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी फैसले पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमेरिका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर

0: कार्रवाई करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी।
1: ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला एक सटीक निर्देशित ग्लाइड बॉम्ब है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। ये लंबी दूरी से दुश्मन के हवाई ठिकानों को निष्क्रिय करने में सक्षम है और इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने देश में ही डिजाइन और विकसित किया है। इसमें 60% सामग्री स्वदेशी होगी। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसके वायुसेना में शामिल किए जाने से उसकी परिचालन क्षमता और बढ़ जाएगी। इससे देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूती मिलेगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@airnewshindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
3: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: इससे पहले राष्ट्रपति वडोदरा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पिछले 12 वर्ष में 23,000 से अधिक पदोन्नतियों को स्वीकृति दी है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को काम के लिए एक बेहतर और अनुकूल माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। माई भारत प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत युवाओं की संख्या 3 करोड़ से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवा सीखने, स्वयं सेवा, नेतृत्व, नागरिक भागीदारी और युवा केंद्रित गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है।

0: समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में आज अटल इनोवेशन मिशन की।
1: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और एमएसएमई में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
2: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो। इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में स्कूल छात्र सार्थक गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से अटल इनोवेशन मिशन के अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है।
3: पिछले 3 वर्षों से अटल टिंकरिंग लैब्स का हिस्सा बनना मेरे लिए एक बहुत ही खास लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। इस दौरान मैंने सिर्फ नई टेक्नोलॉजीज नहीं बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना सीखा, नए आइडियाज पर काम करा और अपने हाथों से प्रोटोटाइप्स बनाए।
1: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवन संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा है। इसके आज रात तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: एमडी ने दक्षिणी जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी दी गई है। उम्मीद है कि डीप डिप्रेशन आज रात और कल सुबह के बीच कलिंगपट्टनम के पास से गुजरेगा और कोरापुट और रायगढ़ समेत दक्षिणी उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भुवनेश्वर में हालात का जायजा लिया और प्रशासन को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, जबकि प्रभावित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कल आंधी चल सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में आज 2 महिलाओं समेत 3 शीर्ष माओवादी कमांडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के अनुसार ये तीनों पिछले 2 दशकों से अधिक समय से माओवादी आंदोलन में सक्रिय थे और कथित तौर पर लगभग 80 हिंसक घटनाओं से जुड़े हुए थे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस कल कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के रविवलसा के पास रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 4 विद्यार्थी मारे गए और 1 अन्य घायल हो गया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री नायडू ने अधिकारियों से दुर्घटना के बारे में जानकारी ली और घायलों को बेहतर उपचार की व्यवस्था करने

0: का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं। जबरन गुमशुदगी के मामलों में कथित तौर पर वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर आंदोलन को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ है विशेष शुक्ला।
1: एशियाई खेलों में रोशोबिना देवी वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया।
2: बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि एशियन गेम्स में मेरा मेडल नहीं थे, पर आज फाइनली मुझे मिल गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद में काफी इंजुरी हुई थी, तो यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल होते। मैं इधर आके मैंने सिल्वर मेडल जीते, तो इससे अच्छा खुशी क्या हो सकता है।
1: वहीं जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी सिंह, परिणाश धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह नरुका, महराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। भारत एक स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य सहित 12 पदकों के साथ 13वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में इस वर्ष बिहार की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को दर्शाने वाले 65 स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें मधुबनी और मिथिला चित्रकला, सिक्की और मंजूषा कला, ऐतिहासिक व्यक्तित्व तथा राज्य से जुड़े धार्मिक स्थल शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने की अमेरिकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को दोहराया। भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन के जम्मू कश्मीर के संदर्भ को खारिज किया, कहा इसका भारत के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियारों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 800 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया। भाजपा ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारी की घोषणा की। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा कम दबाव का क्षेत्र और करीब आया। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में तेज बारिश हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India reiterates its interests and concerns with the United States regarding act imposing tariffs on countries buying Russian oil and gas. New Delhi rejects Organization of Islamic Cooperation's Jammu and Kashmir reference, says it has nothing to do with internal matters of India. Defence Ministry signs over 810 crore rupees contract with Bharat Dynamics Limited for 160 satellite smart anti-airfield weapons for Indian Air Force. BJP announces party in-charges and co-in-charges for all 36 states and union territories. Deep depression over Bay of Bengal intensifies. Heavy rains lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games, Indian men's badminton team settled for bronze, taking overall tally to 12 medals, including one gold. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the sanctioning Russia and Iran last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister S. Jaishankar, UAE Foreign Minister Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, and French Foreign Minister Jean-Noël Barrot

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जन्नत फिल्म से केके की आवाज में सईद कादरी के बोल, प्रीतम का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: यह है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, उन्हें कूदे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

23 सितंबर 1943 को जन्मी अभिनेत्री तनुजा का शुमार सिनेमा की बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में होता है। तनुजा की मां शोभना समर्थ, बहन नूतन तो अपने दौर की सुविख्यात अभिनेत्रियां रही हैं। तनुजा की बड़ी बेटी काजोल भी आज की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में शामिल है। उनकी छोटी बेटी तनिषा का रुझान भी फिल्मों में है। 1950 में बेटी नूतन के लिए शोभना समर्थ ने निर्माण किया था फिल्म हमारी बेटी का, जिसमें तनुजा ने बाल कलाकार के रूप में काम किया। लेकिन फिल्म हमारी बेटी शोभना समर्थ की दोनों बेटियों के लिए कोई करिश्मा नहीं कर पाई। 1960 में शोभना समर्थ ने एक और फिल्म बनाई छबीली, जिससे तनुजा ने बतौर अभिनेत्री औपचारिक शुरुआत की अभिनय की। फिल्म छबीली के निर्माण से थोड़ा पहले ही तनुजा विदेश से लौटी थी इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन भाषा का कोर्स करके। तनुजा को हिंदी की तब काम चलाऊ जानकारी ही थी, लेकिन अपनी लगन से तनुजा ने हिंदी पर भी अच्छा खासा अधिकार पा लिया। एक वयस्क अभिनेत्री के रूप में उनकी चर्चित फिल्म थी हमारी याद आएगी।

0: फिल्म हमारी याद आएगी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 60 के दशक की शुरुआत में अभिनेत्री तनुजा का करियर बन ही रहा था। शुरुआत की ज्यादातर भूमिकाएं सपोर्टिंग रोल की थीं। इस तरह के रोल उन्होंने जिन फिल्मों में किए वो थीं नई रोशनी, जुआरी, ज्वेल थीफ और सपनों का सौदागर। फिल्म दो दुनी चार में तनुजा ने किशोर कुमार के साथ बखूबी निभाई अपनी भूमिका।
1: बून बराबर बोना सा फन्नाकत लपका, पैर के अंगूठे से उछला, टखनों से घुटनों पर उठा, पेट से आया, नाक पकड़ कर खुला फैला, फन फैला कर सर पे चढ़ गया।
2: क्या
1: गुस्सा, ऐसे गुस्सा

1969 में तनुजा जितेंद्र के साथ आई जीने की राह में, और इस फिल्म ने तनुजा को स्टार डम तक पहुंचाने की राह बनाई।

0: नाक।
1: उस दौर के हार्ट थ्रॉब राजेश खन्ना के साथ 1972 में तनुजा ने एक और बेहतरीन फिल्म में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। फिल्म थी मेरे जीवन साथी।

0: 1972 में तनुजा के जीवन साथी बने शोमू मुखर्जी। उनकी फिल्म एक बार मुस्कुरा दो में तनुजा ने अभिनय किया था। 5 अगस्त 1974 को उनकी जिंदगी में आई बेटी काजोल। राजेश खन्ना के साथ तनुजा ने फिल्म हम शक्ल और हाथी मेरे साथी में भी काम किया। हाथी मेरे साथी तनुजा की सुपरहिट फिल्म रही।
1: सुन जा आ ठंडी हवा।

हिंदी के अलावा बांग्ला सिनेमा में भी तनुजा ने अपनी उल्लेखनीय पहचान बनाई। उत्तम कुमार, चिरंजीत, रॉबी घोष, सौमित्र चैटर्जी और विक्टर बैनर्जी जैसे अग्रणी अभिनेताओं के साथ तनुजा ने बांग्ला फिल्मों में भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। फिल्म अनुभव तनुजा की एक और चर्चित फिल्म थी जिसे निर्देशित किया था बासु भट्टाचार्य ने। फिल्म अनुभव को तनुजा जी के फ्लैट में ही शूट किया गया था। तीन पात्रों की इस कहानी में तनुजा के अलावा सुप्रसिद्ध अभिनेता संजीव कुमार और जाने माने रंगकर्मी दिनेश ठाकुर ने काम किया था। इस फिल्म में तनुजा ने अपनी भूमिका को बहुत असरदार ढंग से निभाया।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
4: कहीं बेख्याल हो।
5: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल।

0: रफ्तार 26 आईजी नगोया।
1: Intensity, integrity and intelligence. These are the three I's which the Indian contingent needs at the Asian Games, and they have been displaying these attributes with their tremendous performances. Hello and welcome to the Asian Games Aichi Nagoya 2026 report on Akashvani. My name is Abhinav Punchi and I'll be taking you through all the action from the Asian Games today. And here are the headlines. It was another exciting day as our nation won 5 medals. Mirabai Chanu starring with the silver, ending her Asiad medal drought. While 4 bronzes came from Jayameena in soft tennis, the men's badminton team, the women's skeet shooting team and the men's skeet shooting team. There was disappointment though as the star-studded 10-meter women's air pistol contingent ended medalless. However, Wushu athlete Roshabina Devi meanwhile is on the cusp of history as she looks to convert her 2023 Asiad silver to gold tomorrow after winning her semi-final today. In Kabaddi, there were wins for both the men's and women's teams. While the Indian women's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
2: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सॉन्ग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं

0: के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
1: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Roshivana Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
1: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jaimina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Mina's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashwani.
3: बिल्कुल भरोसा था और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीय की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वाज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टाइम नाउ टू हेड टू द शूटिंग रेंज, वेयर शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट from a mixed day for the Indian contingent.
4: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्की टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्की टीम की, राजा ढिल्लों, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्की टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, महराज अहमद खान और भौतेक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लों भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लों, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena.
4: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुष

0: के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमेव से खेलेंगे।
1: Time now for all the action from the Indian contingent from table tennis. Sakshi Manwal has a report.
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Huan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last eight. Manu Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last eight. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Huai Man of China, while the

0: Manusha and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last eight. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wong Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
2: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल. इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटम सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई. राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्टियोम से हुआ. यहाँ भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए. इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया. वहीं बात करें महिलाओं की व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरीम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी.
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वो ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे. Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
0: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yu Kui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया. मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था. दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया. इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की. अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की. पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की. भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया. पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी. इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की. बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है. अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा. वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी. इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है.
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Manwal has a report.
0: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया. भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे. इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं. यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है. हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया.
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Manwal will

0: Tell us how they fared.
1: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Aichi, Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
0: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
2: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है. एशियन गेम्स में भारतीय रोअर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है. पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची. लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई. क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई. अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं. डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा.
0: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे. साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड.
1: India's men's kayak 4-500 meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh, Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oinam combined for a timing of 1:29.447 in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2:02.538. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempa Dehil, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1:41.141 and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2:08.713 and qualified for the semi-finals.
0: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
3: फुर्ती संतुलन और किक के खेल सेपेक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ. भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था. भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया. पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी. उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया. लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा. फिलीपींस ने वापसी करते हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया. इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया. भारत का टीम रेगु अभियान यहीं समाप्त हो गया, लेकिन सेपक टैक्रो के अन्य इवेंट्स में अभी संभावनाएं बाकी हैं.
0: Well, you've heard all the special reports. So, where is India in the medal standing? Well, Vijeta Chaturvedi will just tell us.
3: भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य पदक जीत लिए हैं. क्रिकेट में 1 स्वर्ण पदक, शूटिंग में 4 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, वेटलिफ्टिंग में 1 रजत, बैडमिंटन में 1 कांस्य, मिक्स्ड मार्शल आर्ट में 1 ब्रॉन्ज और सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है. इस तरह आज के मुकाबले खत्म होते होते भारत ने पदक तालिका में 13वां स्थान प्राप्त किया.
0: So 24th September Thursday, what does that have in store for us from Japan? Well, Rosha Bina Devi is going to go for gold in Wushu. She's going to be in action against Zhang Zhao in the women's 60kg Wushu Sando competition. And don't count out our rowing contingent. They are all in action. There's men's single sculls finals, men's double sculls finals. We have women's four finals as well in rowing, as well as lightweight men's double sculls finals and men's quadruple sculls finals. All gold medal events.

जब तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारी स्थिर शांत भंगिमाएं देखकर लगता है आहा, क्या अद्भुत, क्या ओजपूर्ण, शांत चित, प्रकाशवान तुम्हारा प्यार है। जब तुम कहते हो तुम्हें मुझसे प्यार है अथा प्यार, तो प्रतीत होता है कि दीपोत्सव की कोई सांझ हो जैसे, जो तुम्हारी आंखों में ठहर गई है। हाँ, तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं तब।

कभी कभी हम वो किताब बन जाते हैं जिसके पहले पन्ने पर प्रेम लिखा होता है, हाँ प्रेम, और आखिरी पन्ने पर प्रतीक्षा, सिर्फ प्रतीक्षा। बीच के पन्ने जुड़ते बिखरते रहते हैं, यहाँ वहाँ गिरते पड़ते रहते हैं। कहीं लिखी होती है खामोशी, कहीं डरावने एहसास, कहीं घायल मन और कहीं अधूरी ख्वाहिशें। यानी दर्द में लिपटी हुई एक किताब हो जाते हैं हम। हाँ, एक किताब हो जाते हैं हम तब।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
0: 26 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से यह वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह से के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉ जयशंकर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में विफल रहा है। L69 परामर्शी मंत्री स्तरीय बैठक एक उच्च स्तरीय राजनयिक बैठक है जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए के से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाले सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के बड़ौदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की

0: नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केप डाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम्ब वुशू के फाइनल में पहुंच गई है। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुनेत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।